सुप्रभात एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948, आषाढ़ मास के 17वीं तिथि, तदनुसार 8 जुलाई ईस्वी सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: समाचार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास शांति स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बहरीन सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। श्री जयशंकर ने कल अपनी दो दिन की बहरीन यात्रा समाप्त की। यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा और क्राउन प्रिंस तथा प्रधानमंत्री सलमान बिन हमद अल खलीफा से मुलाकात की। इस दौरान विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की। यह बैठक प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ पीके मिश्रा की अध्यक्षता में सेवा तीर्थ में हुई। बैठक में 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री मिश्रा ने निर्देश दिया कि स्थिति की निरंतर निगरानी की जानी चाहिए और संवेदनशील जिलों पर मानसून या विलंबित मानसून के प्रभाव का आकलन राज्यों के समन्वय से किया जाना चाहिए जिससे आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं या घटती हैं तो घरेलू पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सकारात्मक वृद्धि होने की उम्मीद है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन 2026 में श्री पुरी ने कहा कि भारत ने राजनयिक जुड़ाव यथासमय नीतिगत हस्तक्षेप घरेलू उत्पादन में वृद्धि और आयात में विविधता के माध्यम से हाल के दशकों में सबसे चुनौतीपूर्ण वैश्विक ऊर्जा संकटों में से एक का सफलतापूर्वक सामना किया। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से कथित वित्तीय लेन देन अवैध रूप से धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी विमानन क्षेत्र में कार्यरत निजी कंपनी केयरवेल समूह की कंपनियों उसके निदेशकों और एक कथित चुनावी ट्रस्ट से जुड़े परिसरों पर की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi has called for a stronger India-Indonesia strategic partnership, saying it will contribute not only to the prosperity of the two nations, but also to regional and global peace and stability. Addressing the Indonesian Parliament in Jakarta yesterday, Mr. Modi said, India follows path of development, not expansionism.
1: Bharat vistarvad nahi, vikasvad ki niti par chalta hai, aur isliye hum Bharat mein kehte hain, सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
2: Earlier, Prime Minister Modi held delegation-level talks with his Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta to review the full spectrum of bilateral ties and provide fresh momentum to the comprehensive strategic partnership between the two countries. The two leaders also witnessed the exchange of memoranda of understanding aimed at enhancing collaboration in areas of mutual interest. The Prime Minister's office PMO held a high-level review meeting yesterday to review possible impact of El Nino on various sectors and preparedness measures. The meeting was held under the chairmanship of Principal Secretary to Prime Minister Dr. P.K. Mishra at the Seva Tirth. Secretaries and senior officials of more than 15 ministries were present at the meeting. Dr. Mishra directed that the overall situation should be continuously monitored and the impact of the monsoon or delayed monsoon on vulnerable districts must be assessed in coordination with states so that remedial action can be taken up when necessary. During the meeting, officials of the IMD presented the overall rainfall situation in June and July till yesterday. Director General of Meteorology updated on the status of monsoon coverage in the country and the possible impact of El Nino. The first week of July has shown above normal monsoon. Weak to moderate El Nino is expected in July and August. Secretary Agriculture made a detailed presentation on the preparedness for possible impact of El Nino during the Kharif season. Department of Drinking Water and Sanitation informed of their monitoring of the situation in the districts and stable situation as on date. Department of Health and Family Welfare has put in place advisories for heat waves and monitoring of heat waves, high humidity and dengue outbreaks. Department of Consumer Affairs shared status of retail prices and adequacy of buffer of rice, wheat and pulses. Department of Rural Development briefed on work started since 1st July under Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission and 1 crore person days have been generated so far. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has stated that the India-Bahrain cooperation continues to deepen. Dr. Jaishankar concluded his two-day visit to Bahrain yesterday. During the visit, Dr. Jaishankar had an audience with Bahrain's King Hamad bin Isa Al Khalifa in the presence of Crown Prince and Prime Minister Prince Salman bin Hamad Al Khalifa. He also had a separate call on Deputy Prime Minister Sheikh Khalid bin Abdullah Al Khalifa. During these meetings, the External Affairs Minister conveyed the greetings of President Draupadi Murmu, Prime Minister Narendra Modi, and reaffirmed India's commitment to further deepening the long-standing and friendly bilateral partnership with Bahrain. He thanked the leadership of Bahrain for ensuring the safety, security, and well-being of the Indian community in the kingdom. The External Affairs Minister is currently on an 11-day trip to Qatar, Bahrain, Kuwait, Oman, New York, and Brussels. In football, Switzerland defeated Colombia 4-3 in a penalty shootout in Vancouver to reach the quarterfinals of FIFA World Cup for the first time since 1954. In another round of 16 match, Argentina defeated Egypt 3-2 in Atlanta. Argentina was trailing by 2 goals till 78th minute when the defending champions pulled off a stunning comeback with Cristiano Ronaldo scoring the first goal at 79 minutes. The equaliser came through Messi in 83 minutes while Enzo Fernandez completed the turnaround with the winner in the extra time. In men's cricket, England defeated India by 125 runs in the third T20 International at Trent Bridge in Nottingham last night. Chasing a target of 202 runs set by England, India lost wickets in quick succession and were all out with a paltry score of 76 in 11.4 overs. And that is the end of this news bulletin.

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 6:10 हो रहे हैं। अब आइए सुनवाते हैं खेती की बातें। इस कार्यक्रम के तहत श्रोताओं आज आप जानकारी प्राप्त करेंगे बागवानी फसलों के प्रकार एवं देखभाल विषय पर। जानकारी दे रहे हैं संजीव मेहता।

खेती की बातें कार्यक्रम सुनने वाले सभी ग्रामीण भाई बहनों को प्रवीण सेठी का जोहार। श्रोता मित्रों, खेती की बातें कार्यक्रम के तहत आज हम सुनेंगे

किसान भाइयों, आज हम कार्यक्रम खेती की बातें में बागवानी फसलों के प्रकार एवं देखभाल विषय की चर्चा करेंगे। किसान भाइयों, बागवानी फसलें उच्च मूल्य वाली कृषि जिनमें फल, सब्जी, फूल और मसाले आदि आते हैं, ये स्वास्थ्य और आय के लिए महत्वपूर्ण हैं। इनमें मुख्य रूप से फलों में आम, केला और सब्जियों में आलू, टमाटर, जबकि फूलों में गुलाब और गेंदा। वहीं मसाले वाली बागवानी फसलों में काली मिर्च शामिल हैं। इनकी देखभाल में उन्नत नर्सरी, सूक्ष्म सिंचाई, खाद पानी और कीट नियंत्रण आवश्यक होते हैं। किसान भाइयों, वैसे बागवानी में उगाई जाने वाली फसलों में आम, केला, पपीता, अमरूद और नींबू भी हैं, जबकि सब्जियों में आलू, प्याज, टमाटर, फूल गोभी, पत्ता गोभी, पालक आदि हैं। वहीं फूलों में गुलाब, गेंदा, चमेली, आर्किड, रजनीगंधा। मसाले वाली बागवानी फसलों में काली मिर्च के अलावा इलायची, हल्दी, अदरक और काजू भी शामिल हैं, जबकि बागवानी में उगाई जाने वाली औषधीय पौधों में तुलसी, एलोवेरा, मेथा आदि शामिल हैं। अब आइए जानते हैं इनकी देखभाल हम कैसे करें। किसान भाइयों, सबसे पहले हमें नर्सरी से स्वस्थ और रोग मुक्त पौधे लेने चाहिए, जिसके लिए हाईटेक नर्सरी या उचित पौधशाला का ही चयन करें, क्योंकि ज्यादातर रोग वहीं से आते हैं। जिसके बाद हमें फसलों की सिंचाई पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जिसके लिए हमें ड्रिप या सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का उपयोग करना चाहिए, जो सीधे जड़ों में पानी पहुंचाते हैं। इससे पानी की बर्बादी कम होती है। इसके बाद हमें फसलों के पोषण पर ध्यान देने की जरूरत है, जिसके लिए घुलनशील उर्वरक का चयन करना चाहिए, जो पौधों को आवश्यक पोषक तत्व सटीक मात्रा में देते हैं। ये बेहतर विकास और उत्पादन के लिए आवश्यक होता है। किसान भाइयों, फलों के पेड़ों में अच्छी गुणवत्ता और अधिक पैदावार के लिए समय समय पर छंटाई, कटाई भी हमें करना जरूरी है। बागवानी के फसलों को कीट से रक्षा और रोग प्रबंधन की भी जरूरत होती है, जिसके लिए समय समय पर फसलों का निरीक्षण करें और आवश्यकता अनुसार जैविक या रासायनिक कीटनाशकों का व्यवहार भी करते रहना चाहिए। और सबसे जरूरी बातों की चर्चा, फलों को खराब होने से बचाने के लिए रजोनिवृत्ति और गैर रजोनिवृत्ति वाले फलों को अलग अलग तकनीक से संभालना चाहिए। तो किसान भाइयों, इन सारी बातों का ध्यान रखकर आप अपने बागवानी में सफल खेती कर सकते हैं।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

आज का चिंतन, आपने अपने आप को इतना मजबूत बना लीजिए कि कोई कठिनाई आपके इरादों को डिगा ना सके। श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। अब आइए सुनवाते हैं कार्यक्रम वंदना। इस कार्यक्रम में सबसे पहले सुनवा रहे हैं ये देशभक्ति गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से कार्यक्रम वंदना। इस कार्यक्रम में आइए अब सुनवाते हैं भक्ति रचनाएं। प्रथम स्वर है लता मंगेशकर का।

अभी आप सुन रहे थे हरि ओम शरण के स्वर में ये भक्ति गीत। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र और सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

अभी आप सुन रहे थे वाणी जयराम और साथियों को। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जमशेदपुर और सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदना। इस कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति है उषा मंगेशकर के स्वर में।

उषा मंगेशकर और साथियों के गाए इस भक्ति गीत के साथ ही श्रोताओं, हमारा आज का कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस।

श्री राम के मुंह से अपने लिए विप्रवर संबोधन सुनकर मुनि परशुराम को लगा कि उनका निरादर हो रहा है। ऐसा जान श्री राम ने उन्हें समझाया कि यदि ब्राह्मण कहकर सचमुच ही मुनि का निरादर करना उनका अभीष्ट होता तो संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसके सामने वो यूं नतमस्तक होते। युद्ध की ललकार सुनकर तो वो काल से भी लड़ सकते हैं। क्षत्रिय होकर जो युद्ध से डर गया वो तो कुल कलंकी है, किंतु सच तो यह है कि ब्राह्मण वंश की ऐसी प्रभुता है कि जो वास्तव में भय रहित होता है वो भी आपसे डरता है। रघुवंश मणि के कोमल किंतु गूढ़ वचन सुनकर मुनि परशुराम की बुद्धि पर पड़ा पर्दा जैसे अचानक ही उठ गया। उन्होंने श्री राम के पौरुष और पराक्रम की परीक्षा करने के उद्देश्य से विष्णु के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए उन्हें देना चाहा कि तभी धनुष अपने आप ही श्रीराम के पास चला गया। स्तब्ध आश्चर्यचकित परशुराम के सारे संदेह जैसे क्षण भर में मिट गए। उन्होंने श्री राम के प्रभाव को समझ लिया और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति और जय जयकार करने लगे।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार।

0: मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
2: श्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच सदियों पुराने संबंध समान लोकतांत्रिक मूल्य आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एक तरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु को इंडोनेशिया में परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बहरीन सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। श्री जयशंकर की बहरीन यात्रा कल सम्पन्न हो गई। यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन के सुल्तान हमद बिन ईसा अल खलीफा और शहजादे तथा प्रधानमंत्री सलमान बिन हमद अल खलीफा से मुलाकात की। इस दौरान विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं प्रेषित की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की। ये बैठक प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्र की अध्यक्षता में सेवा तीर्थ में हुई। बैठक में 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री मिश्र ने निर्देश दिया कि स्थिति की निरंतर निगरानी की जानी चाहिए और संवेदनशील जिलों पर मॉनसून या विलंबित मॉनसून के प्रभाव का आकलन राज्यों के समन्वय से किया जाना चाहिए। इससे आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा सकेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं या घटती हैं तो घरेलू पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सकारात्मक वृद्धि होने की उम्मीद है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन में श्री पुरी ने कहा कि भारत ने राजनयिक जुड़ाव यथासमय नीतिगत हस्तक्षेप घरेलू उत्पादन में वृद्धि और आयात में विविधता के माध्यम से हाल के दशकों में सबसे चुनौतीपूर्ण वैश्विक ऊर्जा संकटों में से एक का सफलतापूर्वक सामना किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से कथित वित्तीय लेनदेन अवैध धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर तलाशी ली। ये तलाशी विमानन क्षेत्र में कार्यरत निजी कंपनी केयरवेल समूह की कंपनियों उसके निदेशकों और एक कथित चुनावी ट्रस्ट से जुड़े परिसरों पर की गई। अमरीका ने ईरान पर ताजा हमले किए हैं। ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य में 3 व्यापारिक जहाजों पर हुई कार्रवाई के बाद किए गए। अमरीका ने कहा कि होर्मुज में ईरान का वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने के बाद ये हमले किए गए। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अंतिम 16 में स्विट्जरलैंड ने कोलंबिया को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। वैंकूवर में दोनों टीम निर्धारित समय में कोई गोल नहीं कर सकी। इसके बाद स्विट्जरलैंड ने पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से जीत दर्ज की। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन तक उत्तरी आंतरिक कर्नाटक सौराष्ट्र कच्छ विदर्भ राजस्थान और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ भागों में भारी वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दक्षिण पश्चिम मानसून गुजरात के शेष भागों और राजस्थान तथा हरियाणा के कुछ और क्षेत्रों में पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आइए अब आपको जानकारी दे दें आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। अब से थोड़ी देर बाद यानी 7:10 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत में गजलें। 7:20 का हमारा समय होता है लोकगीतों का और 7:35 पर आप सुनते हैं कार्यक्रम सुरांजलि। स्वास्थ्य चर्चा, इस कार्यक्रम का प्रसारण समय होता है सुबह के 7:50 पर। सुबह 8:00 समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा और 8:15 पर आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज़ यहीं से। 8:30 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित किया जाएगा और 8:45 पर आप आनंद ले सकते हैं फिल्म संगीत का। सुबह 9:00 हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया जाएगा। 9:05 पर श्रोताओं आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरांजलि में आज एक ही फिल्म से गाने। 9:30 का हमारा समय होता है शास्त्रीय संगीत का। सुबह 10:00 हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया जाएगा। यहीं से आप सुनेंगे 10:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 10:10 पर विश्व दर्पण। पर हम आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। सुबह 11:00 हिंदी में समाचार और 11:05 पर कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर की प्रस्तुति होगी। दोपहर 12:00 आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली।

लिसें और 12:05 का हमारा समय होगा भावगीत का। 12:30 पर श्रोताओं आप सुनते हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। दोपहर के 1 बजे हिंदी में समाचार, 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 1:10 पर प्रादेशिक समाचार का प्रसारण होगा। 1:20 और दोपहर 2:30 पर आप आनंद ले सकते हैं फिल्म संगीत का। दोपहर के 2 बजे मिड डे न्यूज, 2:15 पर दोपहर समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। 2:55 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रांची से। अपराह्न के 3 बजे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का प्रसारण होगा और 3:30 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत। 3:45 का हमारा समय होता है लोक गीतों का। संध्या 4 बजे एवं 5 बजे समाचार मुख्यांश आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। 4:02 पर आज आप सुनेंगे इस्पात, संस्कृति और सपनों का शहर जमशेदपुर की बहुरंगी पहचान। ये रूपक आज आप सुन सकते हैं संध्या 4:02 पर। 4:30 पर हम आपको सुनाएंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम संध्या 5 बजे और 5:02 पर आप सुनेंगे युवा साथियों को संबोधित कार्यक्रम युवाणी। 5:30 का समय होगा कल कारखाने का। संध्या 6 बजे हिंदी में समाचार, 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 6:20 पर संस्कृत में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे। संध्या 6:10 पर श्रोताओं आप आनंद लेते हैं झारखंड के लोकगीत का। 6:30 का समय होगा घर गृहस्थी का और संध्या 7 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रांची से। 7:10 पर जिले में आजकल की प्रस्तुति होगी और 7:15 पर आप सुनते हैं बांग्ला कार्यक्रम। 7:45 पर आज के दिन हमारे श्रोता सुनते हैं कार्यक्रम जिज्ञासा। रात्रि 8 बजे फिल्म संगीत का प्रसारण होगा। 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी दिल्ली से, यहीं से प्रसारित किया जाता है। रात्रि 9 बजे न्यूज एट नाइट, 9:15 पर स्पॉटलाइट। रात्रि 10 बजे आज आप सुनेंगे उड़िया कार्यक्रम। 10:30 पर शास्त्रीय संगीत का प्रसारण होगा और रात्रि 11 बजे श्रोता सुनते हैं हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से और यहीं से प्रसारित किया जाता है 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार। रात्रि 11:10 पर हमारी आज की सभा संपन्न होगी।

अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। और अब लीजिए सुनवाते हैं सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे फनकार गुलाम अली की गाई गजलें।

गुलाम अली के गाए इस गज़ल के साथ ही श्रोताओं, हमारा आज का सुगम संगीत का ये सफ़र अब यहीं पूरा होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाश

0: aakashwani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: मन की बात, प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
2: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
1: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें। मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
2: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।

सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश, हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फ़ोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है लोक गीतों का कार्यक्रम। लोक गीतों के इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे मगही गीत निशी प्रसाद और साथियों से।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मगही गीत मिसी प्रसाद और साथियों से। इसी के साथ हमारा आज का लोकगीतों का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

इस समय सुबह के 7:35 हो रहे हैं। अब आइए सुनवाते हैं कार्यक्रम सुरांजलि। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे नचिकेता चक्रवर्ती से आधुनिक गान।

नचिकेता चक्रवर्ती के गाए इस आधुनिक गीत के साथ ही श्रोताओं, हमारा आज का कार्यक्रम सुरांजलि अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 MHz पर। और अब लीजिए सुनवाते हैं स्वास्थ्य चर्चा। स्वास्थ्य चर्चा के आज के इस अंक में आप सुनेंगे भेंट वार्ता काला मोतिया एक जानकारी। भेंट वार्ताकार है डॉक्टर रूबी पांडे, जिनसे बातें कर रहे राजेश कुमार।

0: श्रोताओं, स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत आज हम बातें करेंगे काला मोतिया के बारे में, जो आंखों की एक बीमारी है। ये काला मोतिया होता क्या है, इसका क्या असर हमारी आंखों पर पड़ता है और क्या इसके परिणाम हो सकते हैं, इन सारी बातों पर प्रकाश डालने के लिए आज हमारे साथ हैं नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रूबी पांडे। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि काला मोतिया है क्या?
1: काला मोतिया, जिसे आप कहें कि आंख की बीमारी है, ज्यादा अच्छा होगा इसे कहना कि ये आंख की गंभीर बीमारी है जो गुप्त रूप से आंखों को गंभीर नुकसान पहुंचा देती है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें धीरे धीरे मरीज अंधेपन की ओर चला जाता है और उसे पता नहीं लगता। इसकी जांच के लिए मरीज को व्यक्तिगत रूप से कोई तकलीफ नहीं, कोई लक्षण नहीं मिलता। इसमें मरीज को डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, खास करके 40 वर्ष के बाद। और आंख में जो एक तरल पदार्थ होता है, जिसका एक सामान्य दबाव आंख में बना रहता है, इसके बढ़ जाने की वजह से अगर ये दबाव अनियंत्रित रूप से ज्यादा दिनों तक बढ़ा रहे, तब ये हमारे आंख की संवेदनशीलता को कम कर देता है और धीरे धीरे हमारी रोशनी कम होने लगती है। खास करके उन लोगों को विशेष ध्यान देने की जरूरत है जिन्हें मधुमेह या डायबिटीज की बीमारी है, या जिन्हें हाई मायोपिया, या जिनको कभी कोई चोट लगी हो आंख में, या कोई ऑपरेशन हुआ हो। ऐसे मरीजों को विशेष ध्यान देना चाहिए, या जिनके परिवार में पहले से काला मोतिया का शिकायत हो, उन लोगों को विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए।
0: ये किसी खास उम्र के लोगों में

0: ज्यादा होता है या किसी को भी ये हो सकता है?
1: नहीं, किसी को भी हो सकता है, जन्मजात भी हो सकता है, और ये बुढ़ापा तक भी पहली बार आक्रमण करता है।
0: अगर कोई काला मोतिया का शिकार है तो उसकी आंखों में दूरगामी असर क्या होता है?
1: देखिए, अगर वो कोई शिकार है तो उसकी जितनी रोशनी चली गई है वो तो कभी नहीं लौटेगी। इलाज और चिकित्सा जांच का यही एक मकसद होता है, यही हमारे उद्देश्य है कि जो रोशनी बची हुई है वर्तमान में उसे हम सुरक्षित रख सके।
0: लोगों को कैसे पता चले कि वो काला मोतिया के शिकार हो रहे हैं?
1: कोई ऐसा विशिष्ट लक्षण तो नहीं है, हल्की फुल्की आंखों में दर्द, भारीपन होना, ये महज एक सब छोटा लक्षण हो सकता है, फिर भी इसे विशिष्ट लक्षण नहीं मानना चाहिए। वो डॉक्टर के पास 40 वर्ष के बाद सभी को एक बार अपने आंख का प्रेशर जांच करा ही लेना चाहिए। उसके बाद आगे डॉक्टर ही बतला सकते हैं कि ये आंख संभावित है, ये आंख।
0: आप हमारे श्रोताओं को क्या सलाह देंगे ताकि वो अपनी आंखों को सुरक्षित रख सके और उन्हें काला मोतिया जैसी बीमारी ना हो सके?
1: मैं पहले भी कही हूँ कि जिनके परिवार में किसी को काला मोतिया हुआ हो तो वो इस बारे जाकर के इस बात की संभावना अपने डॉक्टर को, आंख के डॉक्टर को जाकर बताएं कि ऐसे ऐसे हमारे परिवार में है। दूसरा, कि जिन्हें डायबिटीज है, जिनका चश्मा, मोटापा जैसे हाई मायोपिया है उन लोगों को, या चोट चपेट की कोई पुराना इतिहास रहा हो आंखों में, या कोई दूसरा आंख का ऑपरेशन हुआ हो, बस ये लोग ज्यादा संभावित है।
0: काला मोतिया को और किसी नाम से भी जाना जाता है क्या?
1: हाँ, काला मोतिया को शहरों में जैसे लोगों से सुनते होंगे ग्लाउकोमा, या देश के कुछ हिस्सों में इसे संभलवाई भी कहते हैं। इसका उपचार में दवा भी होता है और ऑपरेशन भी होता है, लेकिन सबका मकसद एक ही होता है। जो रोशनी चली गई है उसके बारे कुछ नहीं कर सकते हैं, बची हुई रोशनी को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है, जो चला गया उसका इलाज नहीं।
0: डॉक्टर साहिबा, आपने काला मोतिया के बारे में उपयोगी जानकारियां दी। उम्मीद है हमारे श्रोता इसका लाभ जरूर उठाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

अभी आप सुनते थे भेंटवार्ता काला मोतिया एक जानकारी। भेंटवार्ताकार थी डॉक्टर रूबी पांडे, जिनसे बातें कर रहे थे राजेश कुमार। इसी के साथ हमारा आज का स्वास्थ्य चर्चा का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.4 MHz पर।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: सुनो ना,
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है, हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700-001-4242।
1: ओ, 8700-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700-001-4242 पर।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: मन की बात प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
1: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
0: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
1: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।

सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश, हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज़।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। इस खतरे से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के प्रभाव की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्रालयों से राज्यों के साथ मिलकर काम करने को कहा। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस से जुड़े बैंक खातों में वित्तीय अनियमितताओं के सिलसिले में कोलकाता में कई स्थानों पर छापेमारी की। होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर हमलों के बाद अमरीका ने ईरान पर हमले किए। ईरानी तेल पर प्रतिबंधों में छूट भी वापस ली। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार आतंकवाद से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित प्रयासों का आह्वान किया है। जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोयो सुबियांतो के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंतर्गत नामित आतंकवादियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया। एक रिपोर्ट।
1: दोनों नेताओं ने आतंकवाद और सख्त उग्रवाद की रोकथाम और इसका मुकाबला करने में सहयोग को और गहरा करने पर सहमति व्यक्त की। इसमें आतंकवाद के वित्त पोषण पर अंकुश लगाने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धन शोधन विरोधी और आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने वाले मानकों के कार्यान्वयन को मजबूत करने, आतंकवादी समूह द्वारा उभरती प्रौद्योगिकियों का दुरुपयोग को रोकने और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से नफरत फैलाने से निपटने के उपाय शामिल है। उन्होंने आतंकवाद विरोधी सहयोग समझौता ज्ञापन के शीघ्र संपन्न होने का भी स्वागत की। इस पर जल्दी हस्ताक्षर होने का उम्मीद है। दोनों देश ने आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराधी का रोकथाम, साइबर सुरक्षा, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा उद्योग, समुद्र सुरक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में दोनों नेताओं ने विकसित भारत 2047 विजन और सहयोग बढ़ाने के लिए तीसरे भारत इंडोनेशिया सुरक्षा संवाद का स्वागत किया। इंडोनेशिया के इंडोनेशिया इमास 2045 एजेंडा के बीच समानताओं का भी उल्लेख किया। बंदास गुप्ता, जकार्ता, इंडोनेशिया।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। जकार्ता में इंडोनेशिया के सांसदों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने साझा सभ्यतागत विरासत, लोकतांत्रिक मूल्यों और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण पर आधारित द्विपक्षीय संबंधों के एक नए युग का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने भारत को लोकतंत्र की जननी बताते हुए कहा कि भारत इंडोनेशिया के साथ लोकतांत्रिक संबंध मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने भारत की विकास यात्रा और 2047 तक विकसित भारत तथा 2045 तक स्वर्णिम इंडोनेशिया की परिकल्पनाओं के बीच तालमेल का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने व्यापार, निवेश, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने का भी आह्वान किया।
2: यहाँ इंडोनेशिया में आप एमास 2045 के महत्वाकांक्षी विजन पर चल रहे हैं और भारत में हम विकसित भारत 2047 का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अपने इन लक्ष्यों को हासिल करने में हम एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। हम दुनिया की सबसे यूथफुल सोसाइटीज हैं। हम दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में है। हम दोनों मेजर मैरिटाइम पावर्स हैं। हम ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ योग्याकार्ता में प्रम्बानन मंदिर का दौरा करेंगे। 9वीं शताब्दी में निर्मित प्रम्बानन मंदिर इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है और दक्षिण पूर्व एशिया की उत्कृष्ट स्थापत्य कलाकृतियों में से एक है। मूल रूप से इस परिसर में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव को समर्पित 240 छोटे छोटे मंदिर हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री अपनी तीन देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपने तीन दिन के दौरे के दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी प्रवासी भारतीयों की एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री माननीय एंथनी अल्बनीज के बीच होने वाली द्विपक्षीय वार्ता से दोनों देशों के संबंधों को नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक सहयोग जैसे कई प्रमुख क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की संभावना है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2025 में 33 अरब अमेरिकी डॉलर का आंकड़ा पार कर चुका है। अब दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 100 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए दोनों देशों की साझेदारी अब डिजिटल और उभरती प्रौद्योगिकियों पर भी केंद्रित हो रही है। इसका प्रमुख उदाहरण एयरट्रक द्वारा भारत में AI तैयार डेटा सेंटरों के विकास के लिए 30 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता है। वहीं 4.5 अरब अमरीकी डॉलर की प्रोजेक्ट सेरेस उर्वरक परियोजना मेक इन इंडिया और मेक इन ऑस्ट्रेलिया के सफल तालमेल का सशक्त उदाहरण है। मेलबर्न से सुहास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं नवीन सक्सेना।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में

0: प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के विभिन्न क्षेत्रों पर संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए कल उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्र की अध्यक्षता में ये बैठक सेवा तीर्थ में हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
1: डॉक्टर पीके मिश्रा ने कहा कि स्थिति की लगातार निगरानी की जानी चाहिए और संवेदनशील जिलों पर मॉनसून या विलंबित मॉनसून के प्रभाव का आकलन राज्यों के समन्वय से किया जाना चाहिए, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि पशु चारे की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए जाएं। संवेदनशील जिलों में पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता पर भी श्री मिश्रा ने बल दिया। बैठक के दौरान मौसम विभाग के अधिकारियों ने कल तक जून और जुलाई में हुई कुल वर्षा की जानकारी दी। कृषि मंत्रालय के सचिव ने खरीफ मौसम के दौरान अल नीनो के संभावित प्रभाव से निपटने की तैयारियों की विस्तृत जानकारी दी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जिलों में स्थित कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए अल नीनो के जोखिमों के प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी की हैं। संवेदनशील राज्यों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड कवरेज के लिए अभियान शुरू किए गए हैं और कृषि वित्तीय सेवा और सहकारिता विभागों को समयबद्ध तरीके से अधिकतम लाभ निश्चित करने का सुझाव दिया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने लू, उच्च आर्द्रता और डेंगू के प्रकोप की निगरानी के लिए सलाह जारी की है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने चावल, गेहूं और दालों के खुदरा मूल्यों और बफर स्टॉक की पर्याप्तता की स्थिति की जानकारी दी। ग्रामीण विकास विभाग ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन के तहत 1 जुलाई से शुरू किए गए कार्यों की जानकारी दी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से संबंधित वित्तीय लेनदेन, अवैध रूप से धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर छापेमारी की है। एक रिपोर्ट।
2: प्रवर्तन निदेशालय की शुरुआती जांच के अनुसार संदिग्ध गतिविधियों के लिए विमानन और यात्रा कंपनियों के जरिए से 1.5 करोड़ रुपए से अधिक का हस्तांतरण किया गया। ईडी ने बताया कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच तृणमूल कांग्रेस के खातों से निजी विमानन कंपनी और उसकी संबद्ध इकाई को लगभग 160 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए। निजी कंपनी ने 2023 से इस वर्ष के बीच एक अन्य नवगठित संबद्ध इकाई को 82 करोड़ से अधिक का हस्तांतरण भी किया। ईडी ने कहा कि एम्ब्रियर लेगेसी 600 विमान और अगस्ता 109 SP हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए निजी कंपनी की एक संबद्ध इकाई को बड़ी राशि हस्तांतरित की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन खरीदों के लिए 112 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ईडी ने आरोप लगाया कि अगस्ता हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए कुछ विदेशी धन का भी उपयोग किया गया, जबकि अधिकांश धनराशि सीधे तृणमूल कांग्रेस के खातों से प्राप्त की गई। मामले की जांच जारी है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: अमेरिका ने ईरान पर फिर हमले किए हैं। ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य में 3 व्यापारिक जहाजों पर ईरान की कार्रवाई के बाद किए गए। अमेरिका ने कहा कि होर्मुज में ईरान का वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने के बाद ये हमले किए गए हैं।
3: अमेरिका के एक अधिकारी ने बताया कि अमेरिका की सेना ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय निगरानी प्रणालियों, मिसाइलों और ड्रोन प्रक्षेपण स्थलों को भी निशाना बना रही है। ईरान में बंदरगाह सुविधाओं को भी निशाना बनाया जा रहा है। ईरान के उपविदेश मंत्री काजिम गरीब आबादी ने कहा कि अमेरिका के ये ताजा हमले समझौते का उल्लंघन है। अमेरिका ने शत्रुता समाप्त करने के लिए हुए अंतरिम समझौते के तहत ईरानी तेल की बिक्री को अधिकृत करने वाला लाइसेंस भी रद्द कर दिया है। एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि लाइसेंस इसलिए रद्द किया गया क्योंकि होर्मुज में ईरान की कार्यवाही अस्वीकार थी। ईरान के विदेश मंत्रालय ने लाइसेंस रद्द करने के अमेरिका के कदम की निंदा करते हुए कहा कि यह अंतरिम समझौते का उल्लंघन है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और कोलंबिया अतिरिक्त समय के समाप्त होने तक कोई गोल नहीं कर सके। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में स्विट्जरलैंड ने 4-3 से जीत दर्ज की। अंतिम 16 के एक अन्य मैच में अर्जेंटीना ने मिस्र को 3-2 से हरा दिया। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष हिस्सों में पहुंचने की संभावना व्यक्त की है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया की संसद में संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता के अनुसार विकास का मार्ग अपनाता है भारत, विस्तारवाद का नहीं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, इंडोनेशिया के तर्कश में सजेंगे भारत के अस्त्र। ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलें खरीदने का समझौता हुआ। देशबंधु के अनुसार मोदी को मिला इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान। हिंदुस्तान ने साख का सवाल शीर्षक से संपादकीय में दिया है कि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्र की विदाई देर से ही सही पर एक दुरुस्त फैसला है। जो घटित हो चुका है उसका फैसला अब कानून और अदालत को करना है, मगर जो आगत है उसे निष्कलुष रखने का दायित्व ट्रस्ट के कंधों पर ही रहेगा। दैनिक जागरण का शीर्षक है, अहमदाबाद सिलसिलेवार बम धमाकों के 38 दोषियों की मौत की सजा बरकरार। गुजरात हाईकोर्ट ने विशेष कोर्ट का फैसला सही ठहराया, उम्र कैद पाए दोषियों को भी राहत नहीं। पंजाब केसरी के अनुसार गृह मंत्री अमित शाह ने किया 70 लाख पौधारोपण का आगाज, दिल्ली बनेगी और हरी भरी। 300 इलेक्ट्रिक बसों को दिखाई हरी झंडी, एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत गृह मंत्री ने किया दिल्ली रिज के पुनर्जीवन का शुभारंभ। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, क्रायोजेनिक इंजन का इसरो ने सफल परीक्षण किया, गगनयान में भी होगा इस्तेमाल। परीक्षण का उद्देश्य इंजन की उड़ान के लिए पूरी तरह तैयारी का पता लगाना था। अमर उजाला की सुर्खी है, भारी बारिश, दिल्ली जयपुर हाईवे पर सड़क धंसी, 12 किलोमीटर तक लंबा जाम, दोपहर 11:30 बजे 47.5 डिग्री जैसी तपिश। आसमान से राहत बरसते ही शिमला की तरह सुहानी होती गई दिल्ली की शाम।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। इस खतरे से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के प्रभाव की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्रालयों से राज्यों के साथ मिलकर काम करने को कहा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. India and Indonesia strongly condemn terrorism in all its forms and call for decisive and coordinated international efforts to combat this menace. Prime Minister Narendra Modi becomes first Indian Prime Minister to address Indonesian Parliament, calls for deeper strategic partnership between the two countries. Prime Minister's office reviews El Nino impact, asks central ministries to work with states on preparedness measures. ED conducts searches at multiple locations in Kolkata in connection with financial irregularities involving bank accounts linked to Trinamool Congress. US launches strikes against Iran after attacks on vessels in Strait of Hormuz, also revokes its sanctions relief on Iranian oil. And in football, Argentina and Switzerland enter quarterfinals of FIFA World Cup. India and Indonesia have strongly condemned terrorism in all its forms and called for decisive, coordinated international efforts to combat the threat in accordance with international law. In a joint statement issued after bilateral talks between Prime Minister Narendra Modi and Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta, the two leaders urged action against globally proscribed terrorist and terrorist organizations, including those designated under the UN Security Council's 1267 Sanctions Committee. We have more from a correspondent.
6: The two leaders agreed to deepen cooperation in preventing and countering terrorism and violent extremism conducive to terrorism. The cooperation will include measures to curb terror financing, strengthen implementation of internationally agreed anti-money laundering, and countering the financing of terrorism standards, prevent the misuse of emerging technologies by terrorist groups, and tackle online radicalization and recruitment through digital platforms. Reaffirming a zero-tolerance approach to terrorism, the two sides pledged to continue disrupting terror financing networks and enhance bilateral and multilateral cooperation, including through the United Nations and the Financial Action Taken Force FATF. Recognizing the links between terrorism and transnational organized crime, India and Indonesia agreed to strengthen information sharing and exchange of best practices in line with their domestic laws and international obligations. They also welcomed the early

0: रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नैंसी कुमारी। पहले मुख्य समाचार। नई दिल्ली में झारखंड सरकार के दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आज से आगाज। मुख्यमंत्री देश के सामने रखेंगे राज्य का डिजिटल रोडमैप और पहली एआई नीति का ड्राफ्ट। शराब घोटाले में पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव से ईडी की 9 घंटे तक पूछताछ। केंद्रीय एजेंसी को सौंपे कई महत्वपूर्ण दस्तावेज। झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। सेवानिवृत्त शिक्षकों की पारख शिक्षक के रूप में की गई संविदा सेवा भी पेंशन के लिए मान्य। जेपीएससी मुख्य परीक्षा की तिथियों में संशोधन। अब 21 से 23 जुलाई तक होगा आयोजन। जेएसएससी परीक्षा से टकराव के कारण आयोग ने लिया निर्णय। और राज्य में मॉनसून सक्रिय। मौसम विभाग ने धनबाद, बोकारो और हजारीबाग सहित 6 जिलों में जारी किया भारी बारिश का येलो अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज नई दिल्ली में झारखंड का डिजिटल रोडमैप और पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीति 2026 का ड्राफ्ट पेश करेंगे। दो दिवसीय नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन सम्मेलन में राज्य को निवेश का प्रमुख केंद्र बनाने, नई टेक्सटाइल और टूरिज्म पॉलिसी के प्रारूपों पर भी देश विदेश के विशेषज्ञों के साथ सीधी चर्चा की जाएगी। कैबिनेट मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि यह कार्यक्रम राज्य के लिए मील का पत्थर साबित होगा।
1: जो दिल्ली में जो कार्यक्रम रखा गया हो राज्य के लिए मील का पत्थर साबित होगा और ये एक सुखद परिणाम भी सामने आएगा। आप थोड़ा वक्त लें, देखें कि कई ऐसे हम आप सकारात्मक परिणाम निकलेगा।
0: राज्य में जंगली जानवरों के हमले में मौत होने पर अब 10 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। राज्य सरकार की नई मुआवजा नीति 29 जून से प्रभावी हो गई है। रांची डीएफओ श्रीकांत वर्मा ने बताया कि इसके तहत गंभीर रूप से घायलों को 3.25 लाख और आंशिक रूप से घायल नागरिकों को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
2: मुआवजा का नया संकल्प जारी हुआ है 2026 में, उसमें अनेकों एस्पेक्ट्स में बढ़ोतरी है और ये पूरे राष्ट्र में आप देखेंगे तो वन ऑफ द मॉडल स्टेट कहा जा सकता है जहां इस तरह का मुआवजा का प्रावधान है। था कि रिवॉल्विंग फंड नहीं होता था कि उसमें से आप विड्रॉ करके 1 लाख रुपए

0: के लिए मान्य माना है। अदालत ने राज्य सरकार को 8 सप्ताह के भीतर 6% वार्षिक ब्याज के साथ पेंशन व अन्य लाभों के भुगतान का आदेश दिया है। राज्य के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में 2.7 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि उग्रवाद प्रभावित इस क्षेत्र में सड़क बनने से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी और आदिवासी व पिछड़े वर्ग के लोगों तक स्वास्थ्य व शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं बेहतर ढंग से पहुँच सकेंगी। दुमका के सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर राजीव रंजन शर्मा ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कुलपति ने उनका इस्तीफा स्वीकार करते हुए सीसीडीसी डॉक्टर अब्दुल सत्तार को कुलसचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। डॉक्टर शर्मा के इस्तीफे की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है। राज्य पुलिस ने नागरिकों से गुम या चोरी हुए मोबाइल की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार के CEIR पोर्टल का उपयोग करने की अपील की है। नागरिक पोर्टल पर मोबाइल की जानकारी और पुलिस शिकायत अपलोड कर फोन ब्लॉक करा सकते हैं। फोन मिलने पर इसे इसी पोर्टल से अनब्लॉक भी किया जा सकता है, जिससे इसका दुरुपयोग रुकेगा। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग ने संयुक्त असैनिक सेवा मुख्य परीक्षा की तिथियां बदल दी है। अब यह परीक्षा 21 से 23 जुलाई तक होगी। JSSC परीक्षा से टकराव के कारण यह बदलाव किया गया है। इसके अलावा बैकलॉग मुख्य परीक्षाएं 25 से 27 जुलाई और 1 से 3 अगस्त तक आयोजित की जाएंगी। झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष प्राणेश सोलोमन और ज्योति सिंह मथारू ने गुमला में जन सुनवाई कर अल्पसंख्यक स्कूलों और मदरसों की समस्याएं सुनी। आयोग की टीम ने कल्याण छात्रावासों का निरीक्षण कर मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया। आयोग के उपाध्यक्ष प्राणेश सोलोमन ने कहा कि जन सुनवाई में शिक्षकों के रिक्त पदों का मामला प्रमुखता से सामने आया है। उन्होंने जिला शिक्षा विभाग को लंबित मामलों का जल्द समाधान करने का निर्देश दिया है।
1: एक्चुअली अभी हम लोग पूरे राज्य में ज्यादा के हर जिला में माइनॉरिटी के एजुकेशनल स्टेटस का जानकारी ले रहे हैं। उनके और कच्चे की क्या स्थिति वहाँ पढ़ाई, माइनॉरिटी जो हॉस्टल है उन लोग का क्या स्थिति है। इसी क्रम में हम लोग समीक्षा कर रहे हैं सब जिला में, ताकि हम लोग को राज्य स्तरीय को बैठक हम लोग करना है बहुत जल्द है उसके लिए, ताकि हम रिपोर्ट प्रांश के सदस्य जानकारी ले सके कि हमारे माइनॉरिटी के स्कूल में क्या संचालन में क्या दिक्कतें हो रही है।
0: वहीं कटकम साड़ी पुलिस ने गुप्त सूचना पर डांड गांव से 25 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 3 तस्करों को दबोचा है। हजारीबाग पुलिस ने गिद्दी थाना क्षेत्र में कुख्यात अपराधी राहुल दुबे गैंग के 2 सदस्यों को लोडेड पिस्टल और स्कॉर्पियो के साथ गिरफ्तार किया है। SP अमन कुमार ने बताया कि पुलिस ने पीछा कर इन्हें पकड़ा।
1: अभी हम लोग पूरे राज्य में ज्यादा के हर जिला में
2: हजारीबाग जिले में राहुल दुबे गैंग के द्वारा कई घटनाएं यहां पर हाल में की जा रही थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए उसी क्रम में 6-7 की रात्रि को सूचना प्राप्त हुई कि 2 अपराधी जो दुबे गैंग के हैं वो मांडू जाने वाले रास्ते में स्कॉर्पियो गाड़ी से मूवमेंट कर रहे हैं। उसको लेकर चेकिंग लगाई गई और जो उतर के उससे भागे उसको पकड़ा गया। इनके पास से हथियार और गोली बरामद की गई।
0: गुमला जिले के पालकोट में अज्ञात अपराधियों ने एक ज्वेलरी दुकान के संचालक मनीष सोनी से हथियार के बल पर करीब 25 से 30 लाख रुपए के आभूषण लूट लिए। विरोध करने पर अपराधियों ने हवाई फायरिंग की और फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच और सघन तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। राज्य में मॉनसून सक्रिय होने से मौसम केंद्र रांची ने आज 6 जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है। धनबाद, बोकारो और हजारीबाग समेत अन्य प्रभावित इलाकों में बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की आशंका है। प्रशासन ने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। विश्व वॉलीबॉल दिवस के अवसर पर रांची विश्वविद्यालय के सिंथेटिक मैदान में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी

खिलाड़ियों को सम्मानित और प्रोत्साहित किया गया। खेल समन्वयक डॉक्टर राजेश गुप्ता और राष्ट्रीय खिलाड़ी व प्रशिक्षक विजय वर्मा ने खिलाड़ियों को निरंतर अभ्यास की सलाह दी और उन्हें हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव से ईडी की पूछताछ की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, ईडी ने पूछा, शराब नीति से किसे फायदा हुआ? रामेश्वर उरांव बोले, जानकारी नहीं। प्रभात खबर की सुर्खी है, पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित 7304 पदों पर नियुक्ति के लिए होगी विशेष परीक्षा, जेएसएससी को भेजा गया प्रस्ताव। हिंदुस्तान के शब्द हैं, मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे, आज निवेशकों से करेंगे संवाद। दैनिक जागरण लिखता है, पेंशन के लिए बैंक का चक्कर लगा रहे वृद्ध की मौत, सीएम के आदेश पर जांच शुरू। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नई दिल्ली में झारखंड सरकार के दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आज से आगाज। मुख्यमंत्री देश के सामने रखेंगे राज्य का डिजिटल रोडमैप और पहली एआई नीति का ड्राफ्ट। शराब घोटाले में पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव से ईडी की 9 घंटे तक पूछताछ, केंद्रीय एजेंसी को सौंपे कई महत्वपूर्ण दस्तावेज। झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सेवानिवृत्त शिक्षकों की पारा शिक्षक के रूप में की गई संविदा सेवा भी पेंशन के लिए मान्य। जेपीएससी मुख्य परीक्षा की तिथियों में संशोधन, अब 21 से 23 जुलाई तक होगा आयोजन। जेएसएससी परीक्षा से टकराव के कारण आयोग ने लिया निर्णय। और राज्य में मॉनसून सक्रिय, मौसम विभाग ने धनबाद, बोकारो और हजारीबाग सहित 6 जिलों में जारी किया भारी बारिश का येलो अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचार। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

श्रोताओं, वक्त बदल जाता है, मौसम बदल जाते हैं और कभी कभी लोग भी बदल जाते हैं, लेकिन अगर कुछ नहीं बदलता तो वो है किसी सच्चे दिल का इंतज़ार। मोहब्बत में एक ऐसा भी मुकाम आता है जहाँ कोई उम्मीद ना होने पर भी आंखें बस पल के बिछाए राह तकती रहती हैं।

मौसम में जब थोड़ी सी खनक हो और दिल में किसी की यादों की धड़कन, तो जुबा पर मोहब्बत के तराने अपने आप आ जाते हैं। सच्ची मोहब्बत वो नहीं जो सिर्फ दूर से की जाए, बल्कि वो है जब दो दिल एक दूसरे के इतने करीब आ जाए कि दुनिया की सारी दूरियां मिट जाएं।

दोस्तों, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। कभी कोई साथ छोड़ देता है तो कभी हालात बदल जाते हैं, लेकिन ज़िंदगी का कारवां कभी नहीं रुकता। वक्त बदलेगा, मौसम बदलेगा और खुशियां फिर लौट कर आएंगी।

फिल्म संगीत के आज के इस कार्यक्रम में श्रोताओं, आपने जिन फिल्मों के गाने सुने वो फिल्में थी एतबार वक्त और बहारें फिर भी आएंगी। आवाज़ें आशा भोसले, भूपेंद्र सिंह, महेंद्र कपूर और साथियों की थी। गीतकार थे हसन कमाल, साहिल लुधियानवी और सेवन रिजवी। संगीत निर्देशन था बप्पी लहरी, रवि और ओपी नैयर का। इस गाने के साथ ही हमारा आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार आतंकवाद से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित प्रयासों का आह्वान किया। जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबायो सुबियांतो के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंतर्गत नामित आतंकवादियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। जकार्ता में इंडोनेशिया के सांसदों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने साझा सभ्यतागत विरासत, लोकतांत्रिक मूल्यों और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण पर आधारित द्विपक्षीय संबंधों के एक नए युग का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने भारत को लोकतंत्र की जननी बताते हुए कहा कि भारत इंडोनेशिया के साथ लोकतांत्रिक संबंध मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने भारत की विकास यात्रा और 2047 तक विकसित भारत तथा स्वर्णिम इंडोनेशिया की परिकल्पनाओं के बीच तालमेल का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने व्यापार, निवेश, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया।
1: यहाँ इंडोनेशिया में आप एमास 2045 के महत्वाकांक्षी विजन पर चल रहे हैं और भारत में हम विकसित भारत 2047 का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अपने इन लक्ष्यों को हासिल करने में हम एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। हम दुनिया की सबसे यूथफुल सोसाइटीज हैं। हम दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में है। हम दोनों मेजर मैरिटाइम पावर्स हैं। हम ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ योग्यकार्ता में प्रम्बानन मंदिर का दौरा करेंगे। 9वीं शताब्दी में निर्मित प्रम्बानन मंदिर इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है। मूल रूप से इस परिसर में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव को समर्पित 240 छोटे बड़े मंदिर हैं। भारत और इंडोनेशिया ने प्रम्बानन मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए कल एक महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की। प्रधानमंत्री तीन देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के विभिन्न क्षेत्रों पर संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए कल एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्र की अध्यक्षता में ये बैठक सेवा तीर्थ में हुई। बैठक में 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिव

और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से संबंधित वित्तीय लेनदेन, अवैध रूप से धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों में छापेमारी की। छापेमारी विमानन क्षेत्र में कार्यरत निजी कंपनी केयरवेल समूह की कंपनियों, उसके निदेशकों तथा एक कथित चुनावी ट्रस्ट से जुड़े परिसरों की गई। मामले की जांच जारी है। अमरीका ने ईरान पर फिर हमले किए हैं। ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य में 3 व्यापारिक जहाजों पर ईरान की कार्रवाई के बाद किए गए। अमरीका की केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि होर्मुज में ईरान द्वारा निर्दोष नागरिकों द्वारा संचालित वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने के बाद ये हमले किए गए। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा कि अमरीका के ये हमले समझौते का उल्लंघन है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्विट्जरलैंड कोलंबिया को हराकर 1954 के बाद पहली बार विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। वहीं राउंड ऑफ 16 के अन्य मैच में अर्जेंटीना ने मिस्र को 3-2 से हरा दिया। क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष हिस्सों में पहुंचने की संभावना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी देर में श्रोताओं, हम आपको सुनवाते हैं सुरंजना।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: नमस्कार जमशेदपुर, नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
3: ज्ञान विज्ञान,
4: इतिहास के पन्नों से,
3: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
2: मौसम का मिजाज,
3: अपने शहर की खबरें,
4: बातों मुलाकातों के साथ
2: सुरीला मनोरंजन
3: और भी बहुत कुछ।
2: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में दिन के 11:05 से 12 तक
4: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
2: नमस्कार जमशेदपुर।
0: हेलो मन भावन, आप सुनेंगे नए अंदाज में मेरे यानी निमिषा के साथ। प्रत्येक रविवार दिन के 11 आकाशवाणी जमशेदपुर के विविध भारती केंद्र से 100.8 मेगाहर्ट्ज पर। आपके फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक बुधवार दोपहर 12 से 12:30 के बीच। हमारा टेलीफोन नंबर है 2960445 और कोड है 0657। तो आप भी जुड़ जाइए हेलो मन भावन कार्यक्रम से।
5: डॉक्टर,
6: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम।
5: हेलो डॉक्टर,
6: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 से एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960445 और

0: बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ। हेलो डॉक्टर,
1: जलवायु और नवाचार, यह यूनेस्को का संदेश है। आज दुनिया की लगभग एक तिहाई बिजली अक्षय ऊर्जा से आती है। नई खोज और बेहतर टेक्नोलॉजी की वजह से पवन और सौर ऊर्जा का तेजी से विकास हुआ है, क्योंकि ये सस्ती पड़ती है। कई इलाकों में हाइड्रो पावर अब भी महत्वपूर्ण है, जबकि जियोथर्मल और बायोमास जैसे स्रोत भी अक्षय ऊर्जा के विकल्प देते हैं। जब दुनिया जीवाश्म ईंधन छोड़ रही है, तो हमें उत्सर्जन कम करने और मजबूत टिकाऊ ऊर्जा प्रणालियां बनाने के लिए अक्षय ऊर्जा में निवेश करना जरूरी है। यहाँ एक रोचक तथ्य है, साफ ऊर्जा स्रोत्र अब दुनिया की बिजली का लगभग एक तिहाई हिस्सा दे रहे हैं। यह दिखाता है कि नई खोज बदलाव ला सकता है।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। और अब हम हाजिर हैं कार्यक्रम सुरंजना लेकर। आज के कार्यक्रम सुरंजना में श्रोताओं आप सुनेंगे एक ही फिल्म के गाने। दोस्तों, प्यार, तकरार, अलगाव और फिर अपनों को पाने की कश्मकश जिंदगी के इन्हीं खूबसूरत रंगों को समेटे साल 1995 में एक फिल्म आई थी, अकेले हम अकेले तुम। तो आज के सफर में आइए सुनवाते हैं एक ही फिल्म से ये गाना, फिल्म अकेले हम अकेले तुम का

दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं। सच में जब दिल में बेइंतहा मोहब्बत हो तो शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती।

जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, लेकिन जब पहली बार किसी से सच्चा प्यार होता है तो पूरी कायनात खूबसूरत लगने लगती है।

श्रोताओं, आज हमने फिल्म अकेले हम अकेले तुम के गानों के जरिए प्यार, जुदाई और अपनों के साथ के उस खूबसूरत दौर को एक बार फिर जिया। विदा लेने का वक्त आ गया है, लेकिन विदा लेने से पहले सुनवाते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत।

0: अकेले हम अकेले तुम, आपने सुना है इस फिल्म का गाना। आवाज़ें थी उदित नारायण, आदित्य नारायण, कुमार सानू, अलका याग्निक और अनु मलिक के। गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी और संगीत निर्देशन था अनु मलिक का। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुरंजना। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: मन की बात, प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
4: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
3: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें। मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
4: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
0: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। अब आइए सुनवाते हैं शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में श्रोताओं, आज आप सुनेंगे राग मिश्र शिवरंजनी पर आधारित संतूर वादन पंडित शिव कुमार शर्मा सिंह।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे राग मिश्र शिवरंजनी पर आधारित संतूर वादन पंडित शिव कुमार शर्मा से। इसी के साथ हमारा आज का शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार आतंकवाद से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित प्रयासों का आह्वान किया। जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबायो सुबियांतो के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंतर्गत नामित आतंकवादियों और आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। जकार्ता में इंडोनेशिया के सांसदों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने साझा सभ्यतागत विरासत, लोकतांत्रिक मूल्यों और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण पर आधारित द्विपक्षीय संबंधों के एक नए युग का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने भारत को लोकतंत्र की जननी बताते हुए कहा कि भारत इंडोनेशिया के साथ लोकतांत्रिक संबंध मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने भारत की विकास यात्रा और 2047 तक विकसित भारत तथा 2045 तक स्वर्णिम इंडोनेशिया की परिकल्पनाओं के बीच तालमेल का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने व्यापार, निवेश, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया।
1: यहाँ इंडोनेशिया में आप एमास 2045 के महत्वाकांक्षी विजन पर चल रहे हैं और भारत में हम विकसित भारत 2047 का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अपने इन लक्ष्यों को हासिल करने में हम एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। हम दुनिया की सबसे यूथफुल सोसाइटीज हैं। हम दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में हैं। हम दोनों मेजर मैरिटाइम पावर्स हैं। हम ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ योग्यकार्ता में प्रम्बानन मंदिर का दौरा करेंगे। 9वीं शताब्दी में निर्मित प्रम्बानन मंदिर इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है। मूल रूप से इस परिसर में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव को समर्पित 240 छोटे बड़े मंदिर हैं। भारत और इंडोनेशिया ने प्रम्बानन मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए कल एक महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की। प्रधानमंत्री तीन देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अलनीनो के विभिन्न क्षेत्रों पर संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए कल उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्र की अध्यक्षता में ये बैठक सेवा तीर्थ में हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि धैर्य किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि ये देश को सबसे कठिन चुनौतियों के बीच भी एकजुट रहने की प्रेरणा देता है। संस्कृत

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। इस खतरे से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर बल दिया। होर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों पर हमलों के बाद अमरीका ने ईरान पर फिर हमले किए। ईरानी तेल पर प्रतिबंधों में छूट भी वापस ली। और अर्जेंटीना तथा स्विट्जरलैंड फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार आतंकवाद से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित प्रयासों का आह्वान किया। जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोयो सुबियांतो के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंतर्गत नामित आतंकवादियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ ठोस कार्रवाई का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
1: दोनों नेताओं ने आतंकवाद और उग्रवाद की रोकथाम और इसका मुकाबला करने में सहयोग को और गहरा करने पर सहमति व्यक्त की। इसमें आतंकवाद के वित्त पोषण पर अंकुश लगाने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धन शोधन विरोधी और आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने वाले मानकों के कार्यान्वयन को मजबूत करने, आतंकवादी समूह द्वारा उभरती प्रौद्योगिकियों का दुरुपयोग को रोकने और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से नफरत फैलाने से निपटने के उपाय शामिल है। उन्होंने आतंकवाद विरोधी सहयोग पर समझौता ज्ञापन के शीघ्र संपन्न होने का भी स्वागत की। इस पर जल्दी हस्ताक्षर होने का उम्मीद है। दोनों देश ने आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराधी का रोकथाम, साइबर सुरक्षा, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा उद्योग, समुद्र सुरक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में दोनों नेताओं ने विकसित भारत 2047 विजन और सहयोग बढ़ाने के लिए तीसरे भारत इंडोनेशिया सुरक्षा संवाद का स्वागत किया। इंडोनेशिया के इंडोनेशिया इमास 2045 एजेंडा के बीच समानताओं का भी उल्लेख किया। संदीप दास गुप्ता, जकार्ता, इंडोनेशिया।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। जकार्ता में इंडोनेशिया के सांसदों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने साझा सभ्यतागत विरासत, लोकतांत्रिक मूल्यों और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण पर आधारित द्विपक्षीय संबंधों के एक नए युग का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने भारत को लोकतंत्र की जननी बताते हुए कहा कि भारत इंडोनेशिया के साथ लोकतांत्रिक संबंध मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने भारत की विकास यात्रा और 2047 तक विकसित भारत तथा 2045 तक स्वर्णिम इंडोनेशिया की परिकल्पनाओं के बीच तालमेल का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि निवेश, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने का भी आह्वान किया।
2: यहाँ इंडोनेशिया में आप एमास 2045 के महत्वाकांक्षी विजन पर चल रहे हैं और भारत में हम विकसित भारत 2047 का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अपने इन लक्ष्यों को हासिल करने में हम एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। हम दुनिया की सबसे यूथफुल सोसाइटीज हैं।

0: दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में है। हम दोनों मेजर मैरिटाइम पावर्स है। हम ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ योग्यकार्ता के प्रम्बानन मंदिर जाएंगे। 9वीं शताब्दी में निर्मित प्रम्बानन मंदिर इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर और दक्षिण पूर्व एशिया की उत्कृष्ट स्थापत्य कलाकृतियों में से एक है। भारत और इंडोनेशिया ने प्रम्बानन मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए कल एक महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री तीन देशों के दूसरे दौरे के दूसरे चरण में आज मेलबर्न जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच को भी संबोधित करेंगे। इस बीच ऑस्ट्रेलिया में
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री माननीय एंथनी अल्बनीज के बीच होने वाली द्विपक्षीय वार्ता से दोनों देशों के संबंधों को नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक सहयोग जैसे कई प्रमुख क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की संभावना है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2025 में 33 अरब अमरीकी डॉलर का आंकड़ा पार कर चुका है। अब दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 100 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए दोनों देशों की साझेदारी अब डिजिटल और उभरती प्रौद्योगिकियों पर भी केंद्रित हो रही है। इसका प्रमुख उदाहरण एयरट्रक द्वारा भारत में AI तैयार डेटा सेंटरों के विकास के लिए 30 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता है। वहीं 4.5 अरब अमरीकी डॉलर की प्रोजेक्ट सेरेस उर्वरक परियोजना मेक इन इंडिया और मेक इन ऑस्ट्रेलिया के सफल तालमेल का सशक्त उदाहरण है। मेलबर्न से सुहास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं नवीन सक्सेना।
1: हमारी संवाददाता ने बताया है कि न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति की अनूठी छटा देखने को मिलती है।
3: पिछले 26 वर्षों से भारतीय देवी देवताओं की प्रतिमाओं, पूजा सामग्री, रंग बिरंगे भारतीय परिधानों और पारंपरिक वस्तुओं के माध्यम से स्थानीय लोगों को भारतीय संस्कृति से परिचित करा रहा है। आकाशवाणी से बातचीत में स्टोर की संचालिका किम होलोवाइट ने बताया कि बड़ी संख्या में न्यूजीलैंड के लोग हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाओं के साथ साथ भारतीय परिधानों और आध्यात्मिक परंपराओं में भी गहरी रुचि दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म का शांति, प्रेम और सकारात्मकता का संदेश लोगों को विशेष रूप से आकर्षित करता है। ऑकलैंड से मंजू मीणा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमरीका ने ईरान पर फिर हमले किए हैं। ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य में तीन व्यापारिक जहाजों पर ईरान की कार्रवाई के बाद किए गए।
4: अमरीका के एक अधिकारी ने बताया कि अमरीका की सेना ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय निगरानी प्रणालियों, मिसाइलों और ड्रोन प्रक्षेपण स्थलों को भी निशाना बना रही है। ईरान में बंदरगाह सुविधाओं को भी निशाना बनाया जा रहा है। ईरान के उपविदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा कि अमरीका के ये ताजा हमले समझौते का उल्लंघन है। अमरीका ने शत्रुता समाप्त करने के लिए हुए अंतरिम समझौते के तहत ईरानी तेल की बिक्री को अधिकृत करने वाला लाइसेंस भी रद्द कर दिया है। एक अमरीकी अधिकारी ने कहा कि लाइसेंस इसलिए रद्द किया गया क्योंकि होर्मुज में ईरान की कार्यवाही अस्वीकार थी। ईरान के विदेश मंत्रालय ने लाइसेंस रद्द करने के अमेरिका के कदम की निंदा करते हुए कहा कि यह अंतरिम समझौते का उल्लंघन है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: संयुक्त राष्ट्र के अनुसार सतत विकास लक्ष्य हासिल करने की समय सीमा में अब केवल 4 वर्ष शेष हैं। एक रिपोर्ट।
4: अमेरिका के एक अधिकारी ने बताया कि अमेरिका की सेना ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय निगरानी प्रणालियों, मिसाइलों और ड्रोन प्रक्षेपण स्थलों को भी निशाना बना रही है। ईरान में बंदरगाह सुविधाओं को भी निशाना बनाया जा रहा है। ईरान के
5: विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2026 के अनुसार वर्ष 2015 में 2030 सतत विकास कार्य योजना को अपनाने के बाद निवेश, बेहतर नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ने विश्व भर में अरबों लोगों के जीवन में सुधार हुआ है। लगभग 100 करोड़ लोगों को सुरक्षित पेयजल और 120 करोड़ लोगों को सुरक्षित रूप से प्रबंधित स्वच्छता की सुविधा मिली है। रिपोर्ट के अनुसार 2015 और 2024 के बीच नए HIV संक्रमणों में 30% की कमी आई है और

अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और कोलंबिया अतिरिक्त समय के समाप्त होने तक कोई गोल नहीं कर सके। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में स्विट्जरलैंड ने 4-3 से जीत दर्ज की। अंतिम 16 के एक अन्य मैच में अर्जेंटीना ने मिस्र को 3-2 से हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। इस खतरे से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर हमले के बाद अमेरिका ने ईरान पर हमले किए। ईरानी तेल पर प्रतिबंधों में छूट भी वापस ली। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित विश्व दर्पण। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। और अब लीजिए सुनवाते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में श्रोताओं आप आनंद लेंगे सुमधुर गीतों का। पहला नगमा सुनवा रहे हैं आशीष कौर की आवाज में फिल्म बैड बॉय से। शब्बीर अहमद के रचे इस गीत को संगीतबद्ध किया है हिमेश रेशमिया ने।

और अब लीजिए सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत थैंक गॉड फिल्म से। योहिनी जुबीन नौटियाल और सूर्या रघुनाथन की ये आवाज़ें हैं, रमेश रश्मि विराग की रचना है और संगीत तनिष्क बागची का है।

0: आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे?
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।

0: मन की बात प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
1: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
0: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
1: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
2: हेलो डॉक्टर,
3: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम।
2: हेलो डॉक्टर,
3: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-296-0445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-296-0445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
2: हेलो डॉक्टर।

सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र और इस सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। गीतों भरे सफर को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको सुनवाते हैं दर्शन रावल, ज्योता गांधी और रोचक कोहली का गाया फिल्म धड़क 2 का ये गीत। संगीत रोचक कोहली और शरण रावत का है और इस गीत को रचा है

रेड टू, आप सुन रहे थे इस फिल्म का गाना जुबिन नौटियाल की आवाज़ में। गीतकार थे मनोज मुंतशिर और संगीत निर्देशन था रोचक कोहली का। अब आइए सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत गदर टू फिल्म से। आवाज़ें नीति मोहन, विशाल मिश्रा, शहनाज अख्तर, शाहिल अख्तर और मिथुन की हैं।

आप सुन रहे थे महालक्ष्मी अय्यर का गाया फिल्म 1920 एविल रिटर्न्स फिल्म का ये गीत शकील आजमी की रचना थी और धुन चिरंतन का था। कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनवाते हैं विक्की विद्या का वो वाला वीडियो फिल्म से ये गीत। गीतकार हैं प्रिया शरिया, संगीत निर्देशन सचिन जिगर का है, आवाज़ें शिल्पा राव और सचेत टंडन की है।

0: पूरा होता है।
1: हमारा अगला कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर आप सुनेंगे इसी चैनल पर।
0: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार आतंकवाद से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित प्रयासों का आह्वान किया। जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुब्यांतो के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसके बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंतर्गत नामित आतंकवादियों और आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। जकार्ता में इंडोनेशिया के सांसदों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने साझा सभ्यतागत विरासत, लोकतांत्रिक मूल्यों और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण पर आधारित द्विपक्षीय संबंधों के एक नए युग का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने भारत को लोकतंत्र की जननी बताते हुए कहा कि भारत इंडोनेशिया के साथ लोकतांत्रिक संबंध मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने भारत की विकास यात्रा और 2047 तक विकसित भारत तथा 2045 तक स्वर्णिम इंडोनेशिया की परिकल्पनाओं के बीच तालमेल का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने व्यापार, निवेश, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया।
2: यहाँ इंडोनेशिया में आप एमास 2045 के महत्वाकांक्षी विजन पर चल रहे हैं और भारत में हम विकसित भारत 2047 का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अपने ही लक्ष्यों को हासिल करने में हम एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ योग्यकार्ता में प्रांबानन मंदिर का दौरा करेंगे। 9वीं शताब्दी में निर्मित प्रांबानन मंदिर इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है। मूल रूप से इस परिसर में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव को समर्पित 240 छोटे बड़े मंदिर हैं। भारत और इंडोनेशिया ने प्रांबानन मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए कल एक महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की। प्रधानमंत्री तीन देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अलनीनो के विभिन्न क्षेत्रों पर संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए कल एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्र की अध्यक्षता में ये बैठक सेवा तीर्थ में हुई। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से कथित वित्तीय लेनदेन, अवैध रूप से धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों में छापेमारी की। छापेमारी विमानन क्षेत्र में कार्यरत निजी कंपनी केयरवेल समूह की कंपनियों, उसके निदेशकों और एक कथित चुनावी ट्रस्ट से जुड़े परिसरों पर की गई। मामले की जांच जारी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भारत की मानवीय सहायता को स्वीकार करने के लिए वेनेजुएला का धन्यवाद किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जायसवाल ने कहा कि ये राहत अभियान दोनों देशों के बीच गहरी मित्रता को दर्शाता है। भारत ने विनाशकारी दोहरे भूकंपों के बाद वेनेजुएला की मदद के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया था। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी दिन के दौरान तेज वर्षा की संभावना है। गुजरात क्षेत्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में गरज के साथ आंधी की संभावना है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में आज सुबह बारिश हुई। केरला में 11 जिलों में तेज वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वायनाड जिले में बारिश की तीव्रता में कमी आई है, हालांकि जिलों में येलो अलर्ट जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने

कहा है कि धैर्य किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि ये देश को सबसे कठिन चुनौतियों के बीच भी एकजुट रहने की प्रेरणा देता है। संस्कृत का एक प्रेरक कथन साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि धैर्य किसी राष्ट्र को निरंतर प्रगति, समृद्धि और आत्मनिर्भरता की ओर ले जाता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। दिन के 11:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर।

0: Hood.
1: नमस्कार, जमशेदपुर के इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हमारा और आपका साथ रहेगा पूरे 55 मिनट तक। तो स्वीकार कीजिए श्वेता का नमस्कार।

श्रोताओं, हर साल आज के दिन राष्ट्रीय ब्लूबेरी दिवस मनाया जाता है। ब्लूबेरी में एंटीऑक्सीडेंट के साथ ही पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा पाई जाती है। ब्लूबेरी दिवस मनाने के पीछे का उद्देश्य ब्लूबेरी से होने वाले फायदों के बारे में जागरूक करना है। अपनी बेहतरीन स्वाद के अलावा ब्लूबेरी फाइबर से भरपूर होती है, कोलेस्ट्रॉल कम करने से लेकर दिल के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखता है ब्लूबेरी। रिसर्चर्स का दावा है कि हर दिन ब्लूबेरी खाने से किसी की जीवन शैली में पॉजिटिव चेंजेस आ सकता है। ब्लूबेरी कैलोरी में कम और पोषक तत्वों से भरपूर होता है। ये एंटीऑक्सीडेंट भोजन का सबसे अच्छा स्रोत है। ब्लूबेरी डीएनए लॉस को भी कम करती है, जो उम्र बढ़ने और कैंसर को बचाने में मदद कर सकती है। तो इस पौष्टिक फल का आनंद उठाकर कोई भी राष्ट्रीय ब्लूबेरी दिवस मना सकता है। वैसे श्रोताओं, जुलाई के पूरे महीने राष्ट्रीय ब्लूबेरी माह के रूप में मनाया जाता है। तो अगली बार जब किसी से मिलने जाइए तो कंफ्यूज्ड मत हो कि खाने पीने में क्या लेकर जाए। ब्लूबेरी है ना।

श्रोताओं, गणित 2.0 दिवस यानी मैथ्स 2.0 डे हर साल 8 जुलाई को मनाया जाता है। ये दिन गणित और तकनीक के अनूठे मेल को समर्पित है। ये बताता है कि कैसे आधुनिक तकनीक जैसे कंप्यूटर, स्मार्टफोन गणित के नियमों का उपयोग करके हमारी जिंदगी को आसान और बेहतर बनाती है। ये दिन साल 2009 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य लोगों को ये सिखाना है कि गणित केवल किताबों का विषय नहीं है, असल जिंदगी में हम हर दिन इसका इस्तेमाल करते हैं। फोन और कंप्यूटर के सभी प्रोग्राम गणित की भाषा पर चलते हैं। गणित 2.0 दिवस पर इस विषय के महत्व को स्वीकार करें और लोगों को सिखाएं कि वे बिना किसी उलझन के रोजमर्रा की जिंदगी में गणित का उपयोग कैसे कर सकते हैं।

राघव, तनिष्क बागची और असीस कौर की आवाजों में आप सुन रहे थे तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। गाने के बोल लिखे तनिष्क बागची ने और धुन बनाई तनिष्क बागची और राघव ने।

श्रोताओं, बारिश का मौसम राहत तो देता है, लेकिन इस दौरान आंखों के संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है। साफ सफाई को लेकर थोड़ी सी लापरवाही फंगल इन्फेक्शन, एलर्जी और कंजक्टिवाइटिस जैसी समस्याओं का कारण बन सकती है। इसलिए मॉनसून में आंखों की विशेष देखभाल जरूरी है। और सबसे आम समस्या कंजक्टिवाइटिस या आई फ्लू है। इससे आंखों में जलन, खुजली, चुभन और लालिमा हो सकती है। कई बार पलकों में सूजन आ जाती है और आंखों में चिपचिपा स्राव निकलने लगता है, जिससे सुबह उठने पर पलकें आपस में चिपकी हुई महसूस होती हैं। इसके अलावा आंखों से लगातार पानी आना, तेज रोशनी में परेशानी होना और सूजन बने रहना भी इसके लक्षण हैं। समय पर इलाज न मिलने पर संक्रमण आंखों की सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके लिए विशेष ध्यान रखना जरूरी है। आंखों की स्वच्छता बहुत जरूरी है। इस मौसम में तेज हवाओं और धूल के कारण आंखों में जलन या संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। बाहर निकलने के समय सनग्लास या सेफ्टी ग्लास पहनना बहुत जरूरी रहता है। और आंखों में खुजली या जलन होने पर उन्हें गंदे हाथों से रगड़ना नहीं चाहिए, इससे संक्रमण बढ़ सकता है। आंखों को छूने से पहले हाथों को अच्छी तरह धोना जरूरी है। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से भी संक्रमण फैल सकता है। बारिश के मौसम में फंगल संक्रमण के खतरे को देखते हुए कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल कम से कम करना बेहतर है। यदि लेंस लगाना जरूरी हो तो सफाई का पूरा ध्यान रखें। चश्मा पहनने वालों को भी उसे साफ रखना चाहिए। और बारिश के मौसम में जहां तक हो सके स्विमिंग करना अवॉइड करें। स्विमिंग पूल में बैक्टीरियल संक्रमण का खतरा हो सकता है। आंख में किसी भी तरह की समस्या होने की स्थिति में यथाशीघ्र आई स्पेशलिस्ट को दिखाएं और उनके द्वारा लिए एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा लें। सेल्फ मेडिकेशन या केमिस्ट से पूछकर दवाई लेकर इलाज ना करें। कई बार स्टेरॉइड, आई ड्रॉप्स डालने या ठीक मेडिसिन न लेने से संक्रमण के कारण कॉर्नियल अल्सर होने का खतरा रहता है।

हम साथ साथ हैं इस फिल्म का गाना अभी आप सुन रहे थे। आवाजें थीं अलका याग्निक, हरिहरन, कविता कृष्णमूर्ति, कुमार सानू, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की। गाने के बोल लिखे आर किरण ने और धुन बनाई राम लक्ष्मण ने।

श्रोताओ, आपको याद है 90 के दशक की शुरुआत में सलमान खान ने फिल्म लव में बतौर एक्टर काम किया था। इस फिल्म की एक्ट्रेस थी रेवती, जो साउथ सिनेमा से बॉलीवुड में आई थी। बॉलीवुड में कई फिल्मों में वो नजर आई। आज वो 60 साल की हैं और आज भी फिल्मों में एक्टिव हैं। तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ समेत रेवती ने हिंदी सिनेमा में भी कई फिल्मों में काम किया है। इसमें डरना मना है, अब तक 56, फिर मिलेंगे, निशब्द, टू स्टेट्स, मेजर, टाइगर 3 और द स्टोरी टेलर शामिल हैं। बतौर डायरेक्टर रेवती मित्र, माय फ्रेंड, फिर मिलेंगे, केरल कैफे, मुंबई कटिंग और सलाम बैंकी डायरेक्ट कर चुकी हैं। आइए सुनते हैं लव फिल्म का गाना जो अभिनेत्री रेवती पर फिल्माया गया है। इसे गाया है चित्रा और एसपी बाला सुब्रमण्यम ने, बोल है मजरू सुल्तानपुरी के और धुन बनाई है आनंद मिलिंद ने।

0: मुझे प्यार।
1: अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
3: मन की बात, प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
4: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
3: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें। मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
4: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।

आते रहे। ऐसे ही एक एक्टर जगदीप भी थे, जिन्होंने अपनी कॉमेडी से लाखों लोगों का दिल बहलाया। 15 अगस्त 1975 को रिलीज हुई थी फिल्म शोले, और इस फिल्म में सूरमा भोपाली का किरदार निभाने वाले एक्टर जगदीप ने 1939 से लेकर 2020 तक एक शानदार जिंदगी जी है। बीआर चोपड़ा की अफसाना फिल्म से जगदीप ने बाल कलाकार के रूप में अपने अभिनय की शुरुआत की। 2 बीघा जमीन फिल्म जगदीप के जीवन का टर्निंग पॉइंट था। जगदीप ने कई फिल्मों में हीरो के रूप में भी अभिनय किया था। फिल्म भाभी में उनकी सहनायिका प्रसिद्ध अभिनेत्री नंदा थी। इस फिल्म का ये गाना बहुत

जगदीप ने कई फिल्मों में एक से बढ़कर एक हास्य अभिनेता के करियर को जीवंत किया। फिल्म शोले के सुरमा भोपाली के किरदार को उन्होंने अमर कर दिया। जगदीप ने अपने करियर में 400 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। 8 जुलाई 2020 को जगदीप का निधन हो गया। जगदीप के सैकड़ों किरदार आज भी लोगों के जहन में जिंदा हैं।

कभी कभी इस फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाजें थी लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। गाने के बोल लिखे साहिर लुधियानवी ने और धुन बनाई खयाम ने। श्रोताओं, इस गाने में नजर आई नीतू सिंह। बॉलीवुड की 1960 और 1970 के दशक की प्रमुख अभिनेत्रियों में से एक नीतू सिंह का जन्म 8 जुलाई 1958 को नई दिल्ली में एक सिख परिवार में हुआ था। बेहद कम उम्र में पिता के निधन के बाद नीतू सिंह परिवार के साथ मुंबई शिफ्ट हो गईं और बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्मों में काम करने लगीं। बाल कलाकार के रूप में नीतू सिंह ने अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत 1966 में आई फिल्म सूरज से की थी। इसके बाद उन्होंने कई और फिल्मों में काम किया जिसमें 10 लाख और दो कलियां शामिल है। बाल कलाकार के रूप में उनकी दो कलियां फिल्म सबसे लोकप्रिय रही। इसमें उनके डबल रोल को बहुत पसंद किया गया। इसके बाद नीतू सिंह ने मुख्य अभिनेत्री के रूप में फिल्म रिक्शावाला से फिल्मों में पदम रखा। कभी कभी, यादों की बारात, दीवार, खेल खेल में, काला पत्थर, अमर अकबर एंथनी, रफू चक्कर, दूसरा आदमी, इन सभी फिल्मों की बदौलत वो 70 के दशक की सबसे लोकप्रिय और सफल अभिनेत्रियों में से एक बन गई। नीतू सिंह ने अपने करियर में लगभग 80 से अधिक फिल्मों में काम किया है। नीतू सिंह आज भी चरित्र भूमिकाओं में फिल्मों में सक्रिय हैं।

जानी दुश्मन। इस फिल्म का गाना भी आप सुन रहे थे। आवाजें थी मोहम्मद रफी और आशा भोसले की। गाने के बोल लिखे वर्मा मलिक ने और धुन बनाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इसी के साथ कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर से श्वेता को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

पुनः प्रसारण विशेष। कुछ कहानियाँ केवल सुनी नहीं जाती, वे मन में उतरकर प्रेरणा बन जाती हैं। काली माटी की मिट्टी से आधुनिक भारत के स्वप्निल नगर तक की यात्रा, इस्पात की चमक, संस्कृति की सुगंध, विज्ञान का विश्वास, खेलों का उत्साह और इंसानियत की अनुपम पहचान। यदि आप इस अद्भुत राष्ट्रीय प्रस्तुति को सुनने से चूक गए हों या एक बार फिर उस गौरवपूर्ण यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हों, तो अवश्य सुनिए इस्पात, संस्कृति और सपनों का शहर, जमशेदपुर की बहुरंगी पहचान। ये विशेष रेडियो रूपक गत 5 जुलाई को रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में देश भर के आकाशवाणी केंद्रों से प्रसारित किया गया था। अब इसका विशेष पुनः प्रसारण होगा बुधवार 8 जुलाई 2026 शाम 4 बजे आकाशवाणी जमशेदपुर के प्राइमरी चैनल FM 102.4 MHz पर। आइए सुनिए उस शहर की प्रेरक गाथा, जहां इस्पात केवल कारखानों में नहीं बल्कि लोगों के सपनों और हौसलों में भी ढलता है। आकाशवाणी जमशेदपुर, आपके अपने शहर की आवाज़।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 12 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकर्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबानन मंदिर का दौरा किया। प्रधानमंत्री का पारंपरिक वाद्य यंत्रों की मधुर धुन और शास्त्रीय नृत्य के साथ स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के तहत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। संयुक्त बयान में राष्ट्रपति प्रबोवो ने कहा कि प्रांबानन भारत और इंडोनेशिया के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत बंधन का प्रतीक है। उन्होंने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
1: यहाँ पर आकर के करीब करीब 1200 साल पुराना ब्रह्मा विष्णु महेश इन यादों को साथ जुड़ी हुई एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ।
0: प्रधानमंत्री तीन देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करते हुए खुले समुद्र में सतत मत्स्य पालन के लिए प्राधिकार पत्र तथा उड़ीसा गहरे समुद्री मत्स्य पालन मिशन का दस्तावेज कल उड़ीसा के भुवनेश्वर में जारी करेंगे। मत्स्य पालन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 1000 मत्स्य किसान और मछुआरे भाग लेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया है कि शोपिया के चानापोरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया है। ये सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का संयुक्त अभियान था। आकाशवाणी से बातचीत में पुलिस महानिरीक्षक वीके बर्डी ने बताया कि घटनास्थल से हथियारों और गोला बारूद के साथ एक शव भी बरामद हुआ है और उसकी पहचान की जा रही है। केरलम सरकार ने वायडनास भूस्खलन के मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा कि वायनाड घटना की विस्तृत जांच के बाद ही फिर से काम शुरू होगा। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की दो टीमें अभी भी दुर्घटना स्थल पर मौजूद हैं। 5 लोग अब भी लापता हैं और तलाशी अभियान जारी है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से राज्य में तेज बारिश और बाढ़ को लेकर बातचीत की। श्री शाह ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार संकट से निपटने में महाराष्ट्र सरकार की हर संभव सहायता करेगी। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के कई हिस्से तेज वर्षा से प्रभावित हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी आज मूसलाधार वर्षा हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में दिन के दौरान तेज वर्षा की संभावना है। गुजरात क्षेत्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में गरज के साथ आंधी की संभावना है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में आज सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। केरल में 11 जिलों में तेज वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वायनाड जिले में बारिश की तीव्रता में कमी आई है, हालांकि जिले में येलो अलर्ट जारी है। होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हाल के हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के 80 से अधिक ठिकानों पर ताजा हवाई हमले किए। अमेरिका की केंद्रीय कमान सेंटकॉम ने कहा है कि हमलों में ईरानी वायु रक्षा प्रणाली, कमान और नियंत्रण केंद्रों, तटीय रडार स्थलों, जहाजरोधी मिसाइल प्रणालियों और होर्मुज जलडमरू मध्य तथा उसके आसपास स्थित इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की 60 से अधिक नौकाओं को निशाना बनाया गया। ईरान ने हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि बंदर अब्बास, केशम और में विस्फोटों की आवाजें सुनी गई। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने श्री अमरनाथ यात्रा के लिए आज एक नया परामर्श जारी किया है। इसके अंतर्गत तीर्थयात्रियों से पंजीकरण प्रक्रिया और सुरक्षा दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, इस समय आप हैं आकाशवाणी जमशेदपुर के साथ। दिन के 12:05 हो चुके हैं।

प्रस्तुत है फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भावगीत। भावगीत कार्यक्रम के श्रोताओं को श्वेता का नमस्कार। उस अजनबी से राब्ते बढ़ते गए कुछ इस कदर, दिल भी धड़कने सा लगा है अब उसी के नाम पर।

भावगीत कार्यक्रम का आज का सफर बस यहीं तक। चलते चलते आपको बताते चलें, कार्यक्रम में आज आपने जिन फिल्मों के गाने सुने उनके नाम हैं राब्ता, टू स्टेट्स, काबिल और अजहर। इन गानों के लिए आवाजें थीं अरिजीत सिंह, चिन्मयी श्रीप्रदा, जुबीन नौटियाल, पलक मुच्छाल और अंतरा मित्रा की। गाने के बोल लिखे थे इरशाद कामिल, अमिताभ भट्टाचार्य, नासिर फराज और मनोज यादव ने। इन गानों को संगीत से सजाया प्रीतम, शंकर एहसान लॉय और राजेश रोशन ने।

हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अगला कार्यक्रम सुनेगा बस थोड़ी ही देर में।

पुनः प्रसारण विशेष। कुछ कहानियाँ केवल सुनी नहीं जाती, वे मन में उतरकर प्रेरणा बन जाती हैं। काली माटी की मिट्टी से आधुनिक भारत के स्वप्निल नगर तक की यात्रा, इस्पात की चमक, संस्कृति की सुगंध, विज्ञान का विश्वास, खेलों का उत्साह और इंसानियत की अनुपम पहचान। यदि आप इस अद्भुत राष्ट्रीय प्रस्तुति को सुनने से चूक गए हों या एक बार फिर उस गौरवपूर्ण यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हों, तो अवश्य सुनिए इस्पात, संस्कृति और सपनों का शहर जमशेदपुर की बहुरंगी पहचान। ये विशेष रेडियो रूपक गत 5 जुलाई को रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में देश भर के आकाशवाणी केंद्रों से प्रसारित किया गया था। अब इसका विशेष पुनः प्रसारण होगा बुधवार 8 जुलाई 2026 शाम 4 बजे आकाशवाणी जमशेदपुर के प्राइमरी चैनल FM 102.4 MHz पर। आइए सुनिए उस शहर की प्रेरक गाथा जहां इस्पात केवल कारखानों में नहीं बल्कि लोगों के सपनों और हौसलों में भी ढलता है। आकाशवाणी जमशेदपुर, आपके अपने शहर की आवाज़।

प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं विदुषी किशोरी अमोनकर का ख्याल गायन। राग है गौड़ सारंग।

आप सुन रहे थे विदुषी किशोरी अमोनकर का ख्याल गायन, राग था गौड़ सारंग। अब आइए सुनते हैं पंडित भीमसेन जोशी का ख्याल गायन, राग है भीम पलासी।

आप सुन रहे थे पंडित भीमसेन जोशी का ख्याल गायन, राग था भीम पलासी। अब आइए सुनते हैं शहनाई पर बजाया बनारसी धुन। कलाकार हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 1 बजने को है अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, जहां से आप सुनेंगे बारी बारी से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 1:10 से सुनेगा प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रांची से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इंडोनेशिया के योग्यकार्ता स्थित प्रामानन मंदिर में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग उनके लिए विशेष महत्व रखता है और इसके विकास की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी उन्हीं पर है। श्री मोदी ने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ महादेव के आशीर्वाद से उन्हें हमेशा मार्गदर्शन मिला है। उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर और उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के पुनर्निर्माण का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें इन परियोजनाओं में योगदान का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
1: यहाँ पर आकर के करीब करीब 1200 साल पुराना ब्रह्मा विष्णु महेश इन यादों को साथ जुड़ी हुई एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ।
0: प्रधानमंत्री तीन देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। भारत वस्तु समझौते से संबंधित 13वीं आसियान भारत व्यापार संयुक्त समिति की नई दिल्ली में बैठक की मेजबानी कर रहा है। इसका उद्देश्य आसियान भारत व्यापार समझौते की समीक्षा को आगे बढ़ाना है। संयुक्त समिति की बैठक और उससे जुड़ी बैठकें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से 10 जुलाई तक जारी रहेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि संयुक्त समिति ने उप समितियों को उनके संबंधित कार्यक्षेत्र के लिए रणनीतिक मार्गदर्शन दिया और उनसे लंबित मुद्दों को शीघ्र अंतिम रूप देने को कहा है। इन बैठकों से भारत और आसियान के बीच सहयोग और आपसी समझौता मजबूत होगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करते हुए खुले समुद्र में सतत मत्स्य पालन के लिए प्राधिकार पत्र तथा ओडिशा गहरे समुद्री मत्स्य पालन मिशन का दस्तावेज कल ओडिशा के भुवनेश्वर में जारी करेंगे। मत्स्य पालन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 1000 मत्स्य किसान और मछुआरे भाग लेंगे। जम्मू कश्मीर के शोपिया के चानपोरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। ये सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का संयुक्त अभियान था। आकाशवाणी से बातचीत में पुलिस महानिरीक्षक वीके बर्डी ने बताया कि घटनास्थल से हथियारों और गोला बारूद के साथ एक शव बरामद हुआ और उसकी पहचान की जा रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से राज्य में तेज बारिश और बाढ़ को लेकर बातचीत की। श्री शाह ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार संकट से निपटने में महाराष्ट्र सरकार की हर संभव सहायता करेगी। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के कई हिस्से तेज वर्षा से प्रभावित हैं। केरलम सरकार ने वायनाड भूस्खलन के मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा कि वायनाड घटना की विस्तृत जांच के बाद ही फिर से काम शुरू होगा। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की दो टीम अभी भी दुर्घटना स्थल पर मौजूद हैं। 5 लोग अब भी लापता हैं और तलाशी अभियान जारी है। इस बीच केरलम में 11 जिलों में तेज वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वायनाड जिले में बारिश की तीव्रता में कमी आई है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा हो सकती है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में आज सुबह बारिश हुई। होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हाल के हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के 80 से अधिक ठिकानों पर ताजा हवाई हमले किए। अमेरिका की केंद्रीय कमान सेंटकॉम ने कहा है कि हमलों में ईरानी वायु रक्षा प्रणाली, कमान और नियंत्रण केंद्रों, तटीय रडार स्थलों, जहाजरोधी मिसाइल प्रणालियों और होर्मुज जलडमरू मध्य तथा उसके आसपास स्थित इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की 60 से अधिक नौकाओं को निशाना बनाया गया। ईरान ने हमलों की पुष्टि करते हुए कहा है कि बंदर अब्बास, केशम और सिरिक में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज 0.8% की गिरावट दर्ज की गई। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi today said that he considers it his good fortune to have had repeated opportunities to connect with Lord Shiva at various sacred sites. Addressing at the Prambanan Temple in Yogyakarta, Indonesia, the Prime Minister said he was born in Vadnagar, home to Hatkeshwar Mahadev, and that

नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नैन्सी कुमारी। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने शुरू की प्रगति परियोजना, झारखंड समेत 8 राज्यों के 20 लाख किसानों को मिलेगा सीधा लाभ। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ आज रांची को देंगे बड़ी सौगात, 2 करोड़ रुपए से अधिक की विकास योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। मुख्यमंत्री मैया

0: योजना के तहत रांची जिले की 3.5 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में 3 महीने की राशि एक मुश्त हस्तांतरित। कोडरमा थर्मल पावर प्लांट को डीवीसी के स्थापना दिवस पर मिले 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ उत्पादन स्टेशन और ग्रीन प्लांट ऑफ द ईयर से सम्मानित। और जमशेदपुर के चर्चित डीडी बार हत्याकांड में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, मैनेजर समेत 3 और आरोपी हथियार के साथ गिरफ्तार। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल समेत 8 राज्यों में प्रगति परियोजना की शुरुआत की है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य देश के 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20 लाख किसानों को सशक्त बनाना है।
1: प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण भारत की कृषि तेजी से बदल रही है। विकसित भारत के लिए विकसित कृषि, समृद्ध गांव, समृद्ध किसान, उसमें सरकार अपने सारे प्रयत्न कर रही है, लेकिन सरकार के साथ अगर बाकी संगठन भी जुड़ते हैं तो काम और तेजी से आगे बढ़ता है। और प्रगति कार्यक्रम के अंतर्गत ये तय किया है कि अभी तक 26,000 कृषि उद्यमी ट्रेंड करके, छोटे छोटे कृषि उद्यमी इन्होंने तैयार किए हैं जो एक गाँव में काम करते हैं और गाँव की कृषि को बदलने के लिए 100-200 किसान को साथ जोड़ते हैं।
0: रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ आज रांची में 2 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। वे आज मधुकम में 1,87,00,000 रुपए की लागत से बनने वाली आरसीसी नाली और सड़क कालीकरण का शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा हातमा में 34,00,000 रुपए की लागत से आयुष्मान आरोग्य मंदिर की आधारशिला रखेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने नई दिल्ली में आज से आयोजित 2 दिवसीय नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन सम्मेलन को राज्य में निवेश बढ़ाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बढ़ाया है। पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की इस पहल से देश विदेश के बड़े निवेशकों को आकर्षित करने और युवाओं के लिए रोजगार सृजन में मदद मिलेगी।
2: हम लोगों ने तो देखा है हाथी उड़ाने वाली सरकार भी, हम लोगों ने देखा है नौकरियों देने के नाम पर करोड़ों करोड़ों की लूट हुई और नौकरियां मिलती थी एटीएम में गार्ड। तो पहली बार एक ईमानदार सरकार पिछले 6-6.5 वर्षों में और जिस सोच के साथ माननीय हेमंत जी आगे बढ़ रहे हैं, निसंदेह झारखंड राज्य अग्रणी राज्य, जो अगुआ राज्य है, विकसित राज्य है, उस श्रेणी में अग्रिम पंक्ति में हो गया।
0: वहीं भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने पलटवार करते हुए कहा कि ध्वस्त कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार के बीच सरकार दिल्ली में सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट कर रही है।
3: यहाँ के स्थानीय आदिवासी मूलवासियों को रोजगार मिले, लेकिन मुख्यमंत्री जी इससे पहले डावोस, स्वीडन, स्पेन और इंग्लैंड की यात्रा कर आए थे, करोड़ रुपए फूके गए थे उस यात्रा में, 1,00,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आने की बात हुई थी। तो मुख्यमंत्री जी को इस समिट के पहले, जो इनकी पहले की यात्रा है जिसमें करीब 20 करोड़ रुपया फूका गया है, उसका श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि क्या क्या इन्वेस्टमेंट आया।
0: रांची जिले की 3,66,000 से अधिक महिला लाभुकों के बैंक खातों में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 3 महीने की राशि एक मुश्त भेज दी गई है। आधार आधारित डीबीटी के माध्यम से प्रत्येक लाभुक को 7,500 रुपए मिले हैं। इस मद में कुल 274 करोड़ रुपए से अधिक का पारदर्शी भुगतान किया गया है। दामोदर वैली कॉरपोरेशन के 79वें स्थापना दिवस पर कोडरमा थर्मल पावर प्लांट को सर्वश्रेष्ठ उत्पादन स्टेशन और ग्रीन प्लांट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कोलकाता में आयोजित कार्यक्रम में परियोजना प्रमुख संजय कुमार ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रांची में MRMR 2.0 अभियान के तहत राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों ने तसर उत्पादन की नवीन तकनीकों, डिजिटल मॉनिटरिंग और गुणवत्ता सुधार पर विचार विमर्श किया। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। धनबाद के केंदुआडीह में भूधसान और गैस रिसाव को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ी बैठक की है। उपायुक्त आदित्य रंजन ने कहा कि बंद पड़ी धनबाद बोकारो मुख्य सड़क को खोलने से पहले BCCL, IIT और सिम्फर की निगरानी में वैज्ञानिक जांच कराएगा।
4: घटना है ये भूदशांत की या गैस निकलने की, ये बहुत पुरानी घटना है, 1980 से बता रहे हैं।

0: लगातार हो रही है, तो डेंजर जोन तो है, तो इसमें कोई मिडिल पाथ निकलना चाहिए। तो हम लोग यही निर्णय लिए हैं कि जो टेक्निकल एजेंसीज हैं, डीजीएमएसए, आईटीआईएसएम है, सिम्फर है, उनके भी एक्सपर्ट थे, तो उन लोगों ने सबने मिलकर एक ओपिनियन दिया है कि हम लोग एक एसओपी देंगे, जिस एसओपी के तहत पीसीसीएल और जिला प्रशासन मिलकर उस जगह को चेक करेगा।
1: जमशेदपुर के चर्चित डीडी बार हत्याकांड में पुलिस ने मैनेजर समेत तीन और आरोपियों को गिरफ्तार किया है और एक नाबालिग को निरुद्ध किया है। एसएसपी एहतिशाम वकारिब ने बताया कि इनकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल कुल्हाड़ी, चापड़ और गुप्ती जैसे घातक हथियार बरामद किए गए हैं। इस मामले में अब तक 8 आरोपी पकड़े जा चुके हैं।
2: पूर्व में 5 अभियुक्त को भेजा गया है और आज 4 अभियुक्त को भेजा जा रहा है। जो हमारी एसआईटी बनी थी वो लगातार इस पे काम कर रही है पिछले 1 वीक से, और इसमें हमें लगातार सफलता मिली है, जिसमें अब तक जो भी नामजद अभियुक्त थे गिरफ्तार किए गए हैं, 2 बच गए हैं जिनकी शीघ्र गिरफ्तारी हो जाएगी।
1: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.6% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 465 अंक फिसल कर 77,716 पर, जबकि निफ्टी 141 अंक गिरकर 24,258 पर था। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,35,300 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,38,000 रुपये प्रति किलो है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के विभिन्न क्षेत्रों पर संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए कल उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पीके मिश्र की अध्यक्षता में यह बैठक सेवा तीर्थ में हुई। हमारी संवाददाता ने बताया कि बैठक में 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
3: डॉक्टर पीके मिश्रा ने कहा कि स्थिति की लगातार निगरानी की जानी चाहिए और संवेदनशील जिलों पर मॉनसून या विलंबित मॉनसून के प्रभाव का आकलन राज्यों के समन्वय से किया जाना चाहिए, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि पशु चारे की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए जाएं। संवेदनशील जिलों में पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता पर भी श्री मिश्रा ने बल दिया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जिलों में स्थित कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए अल नीनो के जोखिमों के प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी की हैं। संवेदनशील राज्यों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड कवरेज के लिए अभियान शुरू किए गए हैं और कृषि वित्तीय सेवा और सहकारिता विभागों को समयबद्ध तरीके से अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने का सुझाव दिया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने लू, उच्च आर्द्रता और डेंगू के प्रकोप की निगरानी के लिए सलाह जारी की है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: हॉकी इंडिया के महासचिव और हॉकी झारखंड के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह ने कल राज्य के खेल मंत्री सुदिव्य कुमार से मुलाकात की। खेल मंत्री के आवास पर हुई इस बैठक में झारखंड में हॉकी के विकास और स्थानीय खिलाड़ियों को बेहतर विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर चर्चा की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने शुरू की प्रगति परियोजना, झारखंड समेत 8 राज्यों के 20,00,000 किसानों को मिलेगा सीधा लाभ। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ आज रांची को देंगे बड़ी सौगात, 2 करोड़ रुपए से अधिक की विकास योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत रांची जिले के 3.5 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में 3 महीने की राशि एक मुश्त हस्तांतरित। कोडरमा थर्मल पावर प्लांट को डीवीसी के स्थापना दिवस पर मिले 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ उत्पादन स्टेशन और ग्रीन प्लांट ऑफ द ईयर से सम्मानित। और जमशेदपुर के चर्चित डीडी बार हत्याकांड में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, मैनेजर समेत 3 और आरोपी हथियार के साथ गिरफ्तार। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा।

हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुनेगा बस थोड़ी ही देर में।

0: पुनः प्रसारण विशेष। कुछ कहानियाँ केवल सुनी नहीं जाती, वे मन में उतरकर प्रेरणा बन जाती हैं। काली माटी की मिट्टी से आधुनिक भारत के स्वप्निल नगर तक की यात्रा, इस्पात की चमक, संस्कृति की सुगंध, विज्ञान का विश्वास, खेलों का उत्साह और इंसानियत की अनुपम पहचान। यदि आप इस अद्भुत राष्ट्रीय प्रस्तुति को सुनने से चूक गए हो या एक बार फिर उस गौरवपूर्ण यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हो तो अवश्य सुनिए इस्पात, संस्कृति और सपनों का शहर, जमशेदपुर की बहुरंगी पहचान। ये विशेष रेडियो रूपक गत 5 जुलाई को रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में देश भर के आकाशवाणी केंद्रों से प्रसारित किया गया था। अब इसका विशेष पुनः प्रसारण होगा बुधवार 8 जुलाई 2026 शाम 4 बजे आकाशवाणी जमशेदपुर के प्राइमरी चैनल FM 102.4 MHz पर। आइए सुनिए उस शहर की प्रेरक गाथा जहां इस्पात केवल कारखानों में नहीं बल्कि लोगों के सपनों और हौसलों में भी ढलता है। आकाशवाणी जमशेदपुर, आपके अपने शहर की आवाज।
1: नमस्कार जमशेदपुर। नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
2: ज्ञान विज्ञान,
3: इतिहास के पन्नों से,
2: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
1: मौसम का मिजाज,
2: अपने शहर की खबरें,
3: बातों मुलाकातों के साथ
1: सुरीला मनोरंजन
2: और भी बहुत कुछ।
1: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में दिन के 11:05 से 12 बजे तक
3: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
4: नमस्कार जमशेदपुर।
5: हेलो डॉक्टर,
1: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम।
5: हेलो डॉक्टर,
1: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 MHz पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
5: हेलो डॉक्टर।

सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश, हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फ़ोन नंबर है 06572960445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।

प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आइए आपको सुनवाते हैं फिल्म अभिनेत्री नीतू सिंह पर फिल्माए कुछ प्यारे से गाने। आइए सबसे पहले सुनते हैं दूसरा आदमी फिल्म का ये गाना।

झूठा कहीं का, इस फिल्म का गाना भी आप सुन रहे थे। आवाजें थी आशा भोसले और किशोर कुमार की। गाने के बोल लिखे गुलशन बावरा ने और धुन बनाई आरडी वर्मा ने। और अब आइए सुनते हैं काला पत्थर फिल्म का गीत। आवाजें हैं लता मंगेशकर, एस के माहन, महेंद्र कपूर और मोहम्मद रफी की। गीतकार हैं साहिर लुधियानी और संगीतकार राजेश रोशन।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत, और फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं अभिनेत्री नीतू सिंह पर फिल्माए कुछ प्यारे से गाने। कार्यक्रम में समय हो चला है अंतराल का, बने रहिए आकाशवाणी जमशेदपुर के साथ।

क्या आपने कभी सोचा है कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? आइए हम मौसम और जलवायु के बीच अंतर के बारे में जानते हैं। मौसम होता है रोजमर्रा की स्थिति, जैसे आज बारिश हो रही है या कल धूप निकलेगी। लेकिन जलवायु का दायरा बड़ा होता है, यह 30 सालों में मौसम का सामान्य स्तर होता है। मौसम और जलवायु दोनों को मापने के लिए एक ही उपकरण का उपयोग किया जाता है, तापमान, बारिश, हवा, आर्द्रता और दबाव। लेकिन हम मौसम का अनुमान सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही लगा सकते हैं, जबकि जलवायु हमें दीर्घकालिक रुझान देखने में मदद करती है। यहाँ एक रोचक तथ्य है। दुनिया का सबसे पुराना तापमान रिकॉर्ड नेदरलैंड्स में बना, वो भी सन 1700 में।

0: पुनः प्रसारण विशेष। कुछ कहानियाँ केवल सुनी नहीं जाती, वे मन में उतर कर प्रेरणा बन जाती हैं। काली माटी की मिट्टी से आधुनिक भारत के स्वप्निल नगर तक की यात्रा, इस्पात की चमक, संस्कृति की सुगंध, विज्ञान का विश्वास, खेलों का उत्साह और इंसानियत की अनुपम पहचान। यदि आप इस अद्भुत राष्ट्रीय प्रस्तुति को सुनने से चूक गए हों या एक बार फिर उस गौरवपूर्ण यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हों, तो अवश्य सुनिए इस्पात, संस्कृति और सपनों का शहर, जमशेदपुर की बहुरंगी पहचान। ये विशेष रेडियो रूपक गत 5 जुलाई को रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में देश भर के आकाशवाणी केंद्रों से प्रसारित किया गया था। अब इसका विशेष पुनः प्रसारण होगा बुधवार 8 जुलाई 2026 शाम 4 बजे आकाशवाणी जमशेदपुर के प्राइमरी चैनल FM 102.4 MHz पर। आइए सुनिए उस शहर की प्रेरक गाथा, जहां इस्पात केवल कारखानों में नहीं बल्कि लोगों के सपनों और हौसलों में भी ढलता है। आकाशवाणी जमशेदपुर, आपके अपने शहर की आवाज।
1: अब आइए सुनते हैं खेल खेल में इस फिल्म का गाना। आवाजें हैं आशा भोसले और किशोर कुमार की। गीतकार है गुलशन बाबरा और संगीतकार आरडी बर्मन।

कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं यादों की बारात, फिल्म का गाना। आवाजें हैं आशा भोसले और किशोर कुमार की। गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार आर डी बर्मन।

इसी गाने के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 2 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे मिड डे न्यूज और फिर दोपहर समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: Devotees have been advised to complete the advance registration and undertake the yatra only on the date mentioned in their permit. Tatkal or on-the-spot registration is available only in limited numbers and subject to availability, the administration clarified. Unregistered pilgrims have been urged not to proceed towards the yatra route and wait for their confirmed travel date. In Jammu and Kashmir, police said that one terrorist has been killed in an encounter with security forces in Chernapura area of Shopian. Police said that the operation was conducted jointly with the army and the CRPF. Iran has launched retaliatory strikes on U.S. military installations following the U.S. attacks on its Hormozgan province and the port city of Mashhad. According to Iranian media, the Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC Navy and Aerospace Forces carried out a joint missile and drone operation targeting 85 U.S. military facilities. The reported targets included Salman Port, the U.S. 5th Fleet headquarters in Bahrain, and the Al El Salem Air Base in Kuwait. Iranian media also quoted an IRGC spokesperson as saying that the country's air defense systems had shot down a U.S. MQ-9 drone over Bushehr province. Earlier, the U.S. carried out a fresh round of airstrikes on Iran, targeting more than 80 locations in response to Iran's latest attacks on commercial ships passing through the Strait of Hormuz. Global crude oil prices rose more than 2% today as renewed hostilities between the United States and Iran threatened to shatter the fragile ceasefire that had brought some relief to global energy markets. Brent crude was trading nearly 2.3% up at $75.87 per barrel. West Texas Intermediate crude was trading 2.2% up at $71.96 per barrel when reports last came in. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.8% down in the afternoon session today amid renewed geopolitical tensions in the West Asia. The Sensex plunged 590 points to 77,591, while the Nifty shed 185 points to 24,213 when reports last came in. And in football, Switzerland beat Colombia 4-3 in a penalty shootout in Vancouver to reach the quarterfinals of FIFA World Cup for the first time since 1954. With this win, Argentina will play against Switzerland in the quarterfinals. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi visits UNESCO World Heritage Site of Prambanan Temple in Yogyakarta, says India's participation in temple's conservation reflects shared cultural legacy of the two countries. Prime Minister Modi concludes his Indonesia visit, leaves for Australia to participate in 3rd India-Australia Annual Summit. Two-day BRICS Women Ministerial Meeting begins in Kochi to strengthen cooperation on women's empowerment and sustainable development. Union Home Minister Amit Shah speaks to chief ministers of flood-affected states and assures all possible assistance from the centre. IMD forecasts heavy rainfall and thunderstorms over central and eastern parts of the country. Iran targets American military sites in Bahrain and Kuwait after a wave of US strikes. Global oil prices jump over 2%. And Switzerland beat Colombia 4-3 in penalty shootout to set up quarterfinals against Argentina in FIFA World Cup. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग्यकर्ता में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल प्रांबानन मंदिर में पूजा अर्चना की। कहा मंदिर के संरक्षण में भारत की भागीदारी दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा संपन्न, तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना। महिलाओं के सशक्तिकरण और सतत विकास के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए कोची में ब्रिक्स देशों की महिला मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा और आंधी तूफान का अनुमान। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में 2% से अधिक की बढ़ोतरी। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने पेनल्टी शूटआउट में कोलंबिया को 4-3 से हराया। क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना से मुकाबला होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्याकर्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबनन मंदिर का दौरा किया। प्रधानमंत्री का पारंपरिक वाद्य यंत्रों की मधुर धुन और शास्त्रीय नृत्य के साथ स्वागत किया गया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के तहत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। संयुक्त बयान में राष्ट्रपति प्रबोवो ने कहा कि प्रांबनन भारत और इंडोनेशिया के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत बंधन का प्रतीक है। उन्होंने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
2: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
1: इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रांबनन मंदिर में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग उनके लिए विशेष महत्व रखता है और इसके विकास की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी उन्हीं पर है। श्री मोदी ने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ महादेव के आशीर्वाद से उन्हें हमेशा मार्गदर्शन मिला है। उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर और उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के पुनर्निर्माण का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें इन परियोजनाओं में योगदान का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
2: एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम, उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ। यहाँ के जीवन में, यहाँ की बातों में, यहाँ की हवा में एक संस्कृति की खुशबू है, वो खुशबू जो हम भारत की धरती पर पल पल अनुभव करते हैं। ये खुशबू हमारी सांस्कृतिक विरासत ये अपने आप में अपनत्व से जोड़ती है।
1: भारत और इंडोनेशिया ने उच्च शिक्षा में सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल घोषणा की कि भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु इंडोनेशिया में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के लिए अब रवाना हो गए हैं। इस यात्रा का उद्देश्य प्रवासी समुदाय पर विशेष ध्यान देते हुए दोनों देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूती प्रदान करना है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मेलबर्न स्थित प्रख्यात फार्मासिस्ट और ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के सदस्य दीपक संघवी ने द्विपक्षीय संबंधों के बारे में अपने विचार साझा किए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय सम्मेलन आज से केरलम के कोची में आज सवेरे शुरू हुआ। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी तथा मंत्रालय में सचिव अनिल मलिक सहित अन्य मंत्री सम्मेलन के मुख्य सत्र में शामिल हुए। मुख्य सत्र के दौरान संयुक्त वक्तव्य जारी किया जाएगा। सम्मेलन में भाग ले रहे मंत्री ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सिलसिले में आयोजित एक प्रदर्शनी का दौरा करेंगे और शिक्षा मंत्री जैसे विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व आधारित विकास में भारत की उपलब्धियों को दर्शाने वाली प्रदर्शनियां भी लगाई गई हैं। भारत वस्तु समझौते से संबंधित 13वीं आसियान भारत व्यापार संयुक्त समिति की नई दिल्ली में बैठक की मेजबानी कर रहा है। इसका उद्देश्य आसियान भारत व्यापार समझौते की समीक्षा को आगे बढ़ाना है। संयुक्त समिति की बैठक और उससे जुड़ी बैठकें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से 10 जुलाई तक जारी रहेंगी। इन बैठकों से भारत और आसियान के बीच सहयोग और आपसी समझौता होगा। वस्त्र मंत्रालय ने राष्ट्रीय नवाचार चुनौती हथकरघा हैकाथॉन 2026 का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य देश के हथकरघा क्षेत्र को मजबूती देने के लिए प्रौद्योगिकी डिजाइन और उद्यमशीलता का उपयोग करना तथा सतत समाधान प्रदान करना है। इस पहल का आयोजन राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के हिस्से के रूप में किया जा रहा है। ऑनलाइन पंजीकरण 20 जुलाई तक खुले हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करते हुए खुले समुद्र में सतत मत्स्य पालन के लिए प्राधिकार पत्र तथा उड़ीसा गहरे समुद्री मत्स्य पालन मिशन का दस्तावेज कल उड़ीसा के भुवनेश्वर में जारी करेंगे। मत्स्य पालन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 1000 मत्स्य किसान और मछुआरे भाग लेंगे।

0: प्राधिकार पत्र वर्ष 2026 के भारतीय ध्वज वाले मत्स्य पोतों द्वारा खुले समुद्र में मत्स्य संसाधनों के सतत दोहन संबंधी दिशा निर्देशों के तहत एक अनिवार्य प्रावधान है। प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली एनसीआर में 5 परिसरों पर तलाशी अभियान चला रहा है। ये छापेमारी सब्सिडी पर मकान खरीदारों को ठगने के 3 मामलों की चल रही जांच के सिलसिले में चलाया जा रहा है। इससे पहले केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की गई जांच में पता चला है कि बिल्डरों ने सब्सिडी योजनाओं के नाम पर मकान खरीदारों और निवेशकों को धोखा दिया है। इससे यह भी पता चला है कि बिल्डरों ने पोजेशन तक कोई ईएमआई नहीं योजना शुरू की है, जिनके तहत घर खरीदारों ने आवास ऋण लेकर फ्लैट बुक किए। हालांकि कई साल बीत जाने के बाद भी उन्हें फ्लैटों का पोजीशन नहीं दिया गया है। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के बरोईपुर में दुष्कर्म और हत्या मामले का मुख्य आरोपी प्रभास मंडल मुठभेड़ में मारा गया है। मंगलवार और बुधवार की रात लगभग 12:45 पर घटना के नाटकीय रूपांतरण के दौरान प्रभास ने पुलिस अधिकारी की बंदूक छीनकर भागने की कोशिश की और एक राउंड गोली चलाई। मुठभेड़ में प्रभास गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल में मृत घोषित किया गया। इस मामले में गिरफ्तार 3 अन्य आरोपी फिलहाल पुलिस हिरासत में हैं। जम्मू कश्मीर के शोपिया के चनापोरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया है। ये सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का संयुक्त अभियान था। आकाशवाणी से बातचीत में पुलिस महानिरीक्षक वीके बर्डी ने बताया कि घटनास्थल से हथियारों और गोला बारूद के साथ एक शव बरामद हुआ और उसकी पहचान की जा रही है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अल नीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। पत्रकारों से बातचीत में श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस वर्ष अप्रैल में ही अल नीनो की चुनौती से निपटने की तैयारी शुरू कर दी थी। उन्होंने ये भी बताया कि अल नीनो निगरानी प्रकोष्ठ और नोडल अधिकारियों के माध्यम से बुवाई, फसल और बाजार की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। श्री चौहान ने कहा कि मॉनसून में देरी के कारण तुअर, सोयाबीन, कपास और अन्य फसलों की बुवाई प्रभावित हुई है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज तेज बारिश, बाढ़ जैसी स्थिति और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शाह ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से राज्य में तेज बारिश और बाढ़ को लेकर बात की। श्री शाह ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार संकट से निपटने में महाराष्ट्र सरकार की हर संभव सहायता करेगी। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के कई हिस्से तेज वर्षा से प्रभावित हैं। गृहमंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से राज्य में तेज बारिश और जलभराव से उत्पन्न स्थिति के बारे में भी बातचीत की और केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। इस बीच केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने वायनाड आपदा के संबंध में उनसे फोन पर बात की। श्री सतीशन ने कहा कि श्री शाह ने स्थिति का जायजा लिया और राहत और पुनर्वास प्रयासों के लिए केंद्र सरकार के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। केरलम के मुख्यमंत्री ने बताया कि गृहमंत्री ने घटना की उच्च स्तरीय जांच की भी आवश्यकता पर बल दिया है। केरलम सरकार ने वायनाड भूस्खलन के मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा कि वायनाड घटना की विस्तृत जांच के बाद ही फिर से काम शुरू होगा। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 2 टीम अभी भी दुर्घटना स्थल पर मौजूद है। 5 लोग अभी भी लापता हैं और तलाशी अभियान जारी है। लद्दाख में स्थानीय मौसम विभाग ने नालों में तेज और अचानक जलधाराओं के खतरे और बाढ़ की आशंका की चेतावनी जारी की है। राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड ने सिक्किम को पश्चिम बंगाल से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 के एक खंड को 11 से 13 जुलाई तक अस्थायी रूप से एक दिन में 5 घंटे के लिए बंद करने की घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड NHIDCL ने आपातकालीन मरम्मत कार्य और वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 20वें माइल बरदांग स्थित NH10 के एक हिस्से को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है। ये मार्ग 11 से 13 जुलाई तक प्रतिदिन सुबह 5 बजे से 10 बजे तक सभी प्रकार के वाहनों के लिए बंद रहेगा। यह बंदी चल रहे आपातकालीन मरम्मत कार्य के कारण आवश्यक है। अधिकारियों ने इस दौरान यातायात जाम और सुरक्षा संबंधी जोखिम की आशंका जताई है। यात्रियों के असुविधा कम करने के लिए NHIDCL ने वाहन चालकों के लिए वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था भी की है। मानुष प्रतिम शर्मा के साथ मोइनक चैटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गांतोक।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने होर्मुज़गान

0: प्रांत और माशहर बंदरगाह पर अमरीकी हमलों के जवाब में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। ईरानी मीडिया के अनुसार इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने मिसाइल और ड्रोन हमले करते हुए अमरीका के 85 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इनमें बहरीन स्थित सलमान बंदरगाह और अमरीका के पांचवें बेड़े का मुख्यालय तथा कुवैत में अली अल सलेम वायुसेना अड्डा शामिल है। एक रिपोर्ट।
1: ईरान के बुशहर प्रांत में अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को भी मार गिराया गया। इस बीच बहरीन के गृह मंत्रालय ने चेतावनी सायरन बजने पर लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा है। इससे पहले हॉर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हाल के हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के 80 से अधिक ठिकानों पर फिर हवाई हमले किए। ईरान की केंद्रीय सैन्य कमान ने इसे आक्रामकता और आतंकवाद का कृत्य बताते हुए जवाबी हमले की चेतावनी दी है। ईरान ने यह भी कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में किसी भी तरह के हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी जाएगी और न ही किसी को इस पर नियंत्रण करने दिया जाएगा। इस बीच अमेरिका ने अंतरिम समझौते के तहत ईरान को दी गई तेल बेचने की छूट रद्द कर दी है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अमरीकी हमले और कार्रवाई द्विपक्षीय समझौतों का गंभीर उल्लंघन है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: और अब मौसम का भी रुख कर लेते हैं। मौसम विभाग ने देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा और बिजली चमकने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 से 3 दिन में उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष भागों सहित पूरे देश में आगे बढ़ने की संभावना है। पश्चिम बंगाल के निचले इलाके, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण कर्नाटक के भीतरी भागों में आज मूसलाधार बारिश हो रही है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह से हल्की बारिश हो रही है, जिससे गर्मी से राहत मिली है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 0.8% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 590 अंक फिसलकर 77,591 पर, जबकि निफ्टी 185 अंक गिरकर 24,213 पर था। और अब खेलों में, अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और कोलंबिया अंतरिक्त समय के समाप्त होने तक कोई गोल नहीं कर सका। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में स्विट्जरलैंड ने 4-3 से जीत दर्ज की। वहीं क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने श्री अमरनाथ यात्रा के लिए आज एक नया परामर्श जारी किया है। इसके अंतर्गत तीर्थयात्रियों से पंजीकरण प्रक्रिया और सुरक्षा दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार निर्धारित दैनिक तीर्थयात्री सीमा लागू रहेगी। श्रद्धालुओं को सलाह दी गई है कि वे अग्रिम पंजीकरण कराएं और यात्रा केवल अपने परमिट में तय तिथि पर ही करें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग्याकर्ता में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल प्रांबनन मंदिर में पूजा अर्चना की। कहा, मंदिर के संरक्षण में भारत की भागीदारी दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा सम्पन्न। तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना। महिलाओं के सशक्तिकरण और सतत विकास के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए कोची में ब्रिक्स देशों की महिला मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा और आंधी तूफान का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

पुनः प्रसारण विशेष। कुछ कहानियाँ केवल सुनी नहीं जाती, वे मन में उतरकर प्रेरणा बन जाती हैं। काली माटी की मिट्टी से आधुनिक भारत के स्वप्निल नगर तक की यात्रा, इस्पात की चमक, संस्कृति की सुगंध, विज्ञान का विश्वास, खेलों का उत्साह और इंसानियत की अनुपम पहचान। यदि आप इस अद्भुत राष्ट्रीय प्रस्तुति को सुनने से चूक गए हो या एक बार फिर उस गौरवपूर्ण यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हो तो अवश्य सुनिए इस्पात, संस्कृति और सपनों का शहर, जमशेदपुर की बहुरंगी पहचान। ये विशेष रेडियो रूपक गत 5 जुलाई को रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में देश भर के आकाशवाणी केंद्रों से प्रसारित किया गया था। अब इसका विशेष पुनः प्रसारण होगा बुधवार 8 जुलाई 2026 शाम 4 बजे आकाशवाणी जमशेदपुर के प्राइमरी चैनल FM 102.4 MHz पर। आइए सुनिए उस शहर की प्रेरक गाथा जहां इस्पात केवल कारखानों में नहीं बल्कि लोगों के सपनों और हौसलों में भी ढलता है। आकाशवाणी जमशेदपुर, आपके अपने शहर की आवाज़।

प्रस्तुत है फिल्म संगीत। जसलीन कौर रॉयल एक गायिका, गीतकार और संगीतकार हैं। ये पंजाबी, हिंदी और अंग्रेजी में गाने गाती हैं। आज इनका जन्मदिन है। इनके उज्जवल भविष्य के लिए इन्हें शुभकामनाएं। इन्होंने अपने गाने प्रीत से सितंबर 2014 में बॉलीवुड में प्रवेश किया, जो कि फिल्म खूबसूरत से था। आइए सुनते हैं डियर जिंदगी फिल्म का गाना। आवाजें हैं जसलीन कौर और अमित त्रिवेदी की। गाने के बोल लिखे कौसर मुनीर ने और धुन बनाई अमित त्रिवेदी ने।

अब आइए सुनते हैं फिल्लौरी फिल्म का गाना। आवाज है जसलीन रॉयल की, गाने के बोल लिखे नीरज राजावत ने और धुन बनाई जसलीन रॉयल ने।

श्रोताओं, अतुल अग्निहोत्री हिंदी फिल्मों के एक अभिनेता, निर्माता और निर्देशक हैं। इन्होंने अपना हिंदी फिल्मों में करियर एक अभिनेता के रूप में शुरू किया था और बाद में दो फिल्मों का निर्देशन किया और एक अच्छे सफल फिल्म निर्माता भी बन गए। इन्हें सबसे अच्छी तरह इनके सर फिल्म में इनकी शुरुआत के लिए जाना जाता है। ये इनके करियर की सबसे अच्छी फिल्म थी जिसमें ये मुख्य भूमिका में नजर आए थे। इसके बाद इनकी कुछ अच्छी फिल्मों में

0: बॉडीगार्ड फिल्म का गाना भी आप सुन रहे थे। आवाजें थी राहत फतेह अली खान और श्रेया घोषाल की। गाने के बोल लिखे शब्बीर अहमद ने और धुन बनाई हिमेश रेशमिया ने।
1: तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं झारखंड के छिपे हुए खूबसूरत नजारों को एक्सप्लोर करने के लिए?
2: बिल्कुल,
1: लेकिन अरुणिमा, इस चिलचिलाती गर्मी और बढ़ती घमौरियों से कैसे बचे, और हमारे इस बिजी मॉडर्न लाइफस्टाइल का क्या सलूशन है?
2: सारे जवाब मिलेंगे रेशमा, सारे जवाब मिलेंगे। साथ ही बात होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की, और आपके और हमारे फ्यूचर की, और हाँ, देश दुनिया की लेटेस्ट करंट अफेयर्स पर भी होगी पैनी नजर। तो ट्यून करना मत भूलना आपके अपने शो युवा वाणी पर अरुणिमा और रेशमा के साथ। सो डू जॉइन अस एंड स्टे ट्यून्ड।
0: श्रोताओं, अतुल अग्निहोत्री ने बतौर निर्माता बॉडीगार्ड और भारत जैसी सफल फिल्में दी। सलमान खान के साथ उनकी जोड़ी को दर्शकों ने सराहा है। ये फिल्में इस बात का सटीक उदाहरण है। आइए सुनते हैं भारत फिल्म का ये गाना।

0: मिठी मिठी चाशनी।
1: भारत फिल्म का गाना भी आप सुन रहे थे, आवाज थी अभिजीत श्रीवास्तव की। गाने की बोली के इरशाद कामिल ने और तर्ज बनाई विशाल शेखर ने। और इसी गाने के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर दिन के 2:55 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची से रिले प्रादेशिक समाचार।

0: प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। जकार्ता में इंडोनेशिया के सांसदों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने साझा सभ्यतागत विरासत, लोकतांत्रिक मूल्यों और भविष्य के लिए एक साझा दृष्टिकोण पर आधारित द्विपक्षीय संबंधों के एक नए युग का आह्वान किया।
1: यहाँ इंडोनेशिया में आप एमास 2045 के महत्वाकांक्षी विजन पर चल रहे हैं और भारत में हम विकसित भारत 2047 का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अपने इन लक्ष्यों को हासिल करने में हम एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। हम दुनिया की सबसे यूथफुल सोसाइटीज हैं। हम दुनिया की

0: तेजी से आगे बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में है। हम दोनों मेजर मैरिटाइम पावर्स है। हम ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज है।
1: जिस जिले में उपायुक्त दीपक दुबे ने जिला अंतर्गत संचालित सर्वजन पेंशन योजना तथा मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों की प्रगति पर चल रहे सत्यापन कार्य की समीक्षा की। उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि 3 दिनों के भीतर सत्यापन कार्य पूरा कर प्रतिवेदन समर्पित करें, ताकि विभागीय निर्देशों के अनुरूप पात्र लाभुकों को पेंशन का भुगतान शीघ्र सुनिश्चित किया जा सके। दुमका के सिद्धो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के 43 कॉलेजों में स्नातक नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन का आज आखिरी दिन है। अब तक 34,000 से अधिक अभ्यर्थी चांसलर पोर्टल पर प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। 11 जुलाई को चयनित विद्यार्थियों की पहली मेधा सूची जारी की जाएगी। दुमका जिले में इस वर्ष कम वर्षा और अल नीनो के प्रभाव की आशंका को देखते हुए विशेष मिलेट जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत मोटे अनाज की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 3,000 रूपये प्रोत्साहन राशि दी जानी है। यह राशि अधिकतम 5 एकड़ और न्यूनतम 10 डिसमिल जमीन में खेती के लिए दी जाएगी। अभियान की शुरुआत दुमका सदर प्रखंड की बेहरा आप पंचायत से की गई है। दामोदर घाटी निगम के 79वें स्थापना दिवस पर कोडरमा थर्मल पावर प्लांट को सर्वश्रेष्ठ उत्पादन स्टेशन और ग्रीन प्लांट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कोलकाता में आयोजित कार्यक्रम में परियोजना प्रमुख संजय कुमार ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची के सांसद संजय सेठ ने आज विधायक नवीन जायसवाल और महापौर रोशनी खलखो के साथ रांची के रातू रोड स्थित ओटीसी ग्राउंड के निकट आधुनिक ट्रैफिक पुलिस पोस्ट का लोकार्पण किया। इस दौरान नव निर्मित ट्रैफिक पुलिस पोस्ट की चाबी पुलिस पदाधिकारियों को सौंपी गई। बोकारो जिले की पुलिस ने साइबर अपराध को अंजाम देने वाले 2 गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने गिरफ्तार गिरोह के पास से कई सिम कार्ड, मोबाइल सहित अन्य सामान बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया कि ये अपराधी बैंक अधिकारी बनकर क्रेडिट कार्ड के नाम पर लोगों को पैसा ठगने का काम करते थे।
2: साइबर क्राइम से संबंधित प्रतिबिंब ऐप द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार साइबर टीम और मेरा तकनीकी शाखा डीएसपी सीसीआर के नेतृत्व में छापेमारी किया गया है। छापेमारी के क्रम में 2 संदिग्ध लोगों को पकड़ा गया है। उससे पूछताछ के बाद साइबर क्राइम से संबंधित कई सारे डॉक्यूमेंट्स और मोबाइल बरामद किया गया है।
1: रामगढ़ जिले के भुरकुंडा थाना क्षेत्र में पुलिस को अवैध हथियार निर्माण के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने हथियार बनाने के उपकरण और अर्धनिर्मित हथियार बरामद किए हैं। पाकुड़ जिले के अमड़ापाड़ा प्रखंड स्थित जेट के टोला गांव में एक विवाहित महिला की हत्या कर दी गई। मामले की सूचना पर अमड़ापाड़ा थाना प्रभारी अनूप रोशन भेंगरा दलबल के साथ पहुंचे। उन्होंने बताया कि पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर जांच करेगी। और हॉकी इंडिया के महासचिव और हॉकी झारखंड के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह ने कल राज्य के खेल मंत्री सुदेव कुमार से मुलाकात की। खेल मंत्री के आवास पर हुई इस बैठक में झारखंड में हॉकी के विकास और स्थानीय खिलाड़ियों को बेहतर विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर चर्चा की गई। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अगला कार्यक्रम सुनने के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं झारखंड के छिपे हुए खूबसूरत नजारों को एक्सप्लोर करने के लिए?
2: बिल्कुल, लेकिन अरुणिमा, इस चिलचिलाती गर्मी और बढ़ती घमौरियों से कैसे बचे, और हमारे इस बिजी मॉडर्न लाइफस्टाइल का क्या सलूशन है?
1: सारे जवाब मिलेंगे रेशमा, सारे जवाब मिलेंगे। साथ ही बात होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की, और

0: आपके और हमारे फ्यूचर की। और हाँ, देश दुनिया की लेटेस्ट करंट अफेयर्स पर भी होगी पैनी नजर। तो ट्यून करना मत भूलना आपके अपने शो युवा वाणी पर अरुणिमा और रेशमा के साथ। सो डू जॉइन अस एंड स्टे ट्यून्ड।
1: प्रस्तुत है NCERT द्वारा।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमदत्ता और डिंपल देवांगन जी ने। लिखते हैं,
2: जिंदगी जितनी सादी होगी परेशानी उतनी ही आधी होगी।
3: वाह क्या बात है, जिंदगी जितनी सादी होगी परेशानी उतनी ही आधी होगी। आगे लिखते हैं,
2: योग जरूर करें और वक्त आने पर एक दूसरे का सहयोग जरूर करें।
3: वाह ये भी एक बड़ी खूबसूरत कविता बन गई। योग जरूर करें और वक्त आने पर एक दूसरे का सहयोग करें। बहुत सुंदर विचार भेजा आपने, धन्यवाद स्वीकार कीजिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
2: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेड़था बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिमबाई मानिकपुरी।
3: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी।
2: ग्राम पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
3: और बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय के साथ साथ बेबी किट्टू ने लिखा है, आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी सादर नमस्कार।
2: हम उमंग कार्यक्रम के नियमित श्रोता हैं। सोमवार से शुक्रवार तक एक एक जानकारी सुनते हैं, समीक्षा भी भेजते हैं। गुजरे सप्ताह आपने 15 जून को केवल नाम पढ़ा लेकिन समीक्षा नहीं पढ़ी।
3: आपके संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि आगे से हम जरूर इस बात का खास ख्याल रखेंगे
2: जी।
3: अगला संदेश हमें मिला है राजा जी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी का।
2: आप सबके संदेशों के लिए धन्यवाद। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी आपकी प्यारी श्रृंखला ये भी जानिए मैं।
3: श्रोताओं इन दिनों हम बात कर रहे हैं पेड़ पौधों के रोचक संसार की
2: जी।
3: कल हमने जाना था कि पेड़ पौधे आपस में किस प्रकार से संचार करते हैं। आज हम जानेंगे पेड़ों के बारे में एक और रोचक बात
2: जी।
3: तो विमलेश जी आपने कल बातचीत में प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी सर जगदीश चंद्र बोस के बारे में कुछ बताया था
2: जी। अजीत जी मैं याद कर रही थी उनके बचपन की एक घटना को। ऐसा कहते हैं कि जब वे बच्चे थे तो एक शाम वे गेंद से खेल रहे थे, गेंद पास की झाड़ियों में फंस गई थी।
3: बालक जगदीश चंद्र बोस ने एक डंडा लिया और लगे झाड़ी को हिलाने
2: जी।
3: वे बहुत प्रयास करते रहे लेकिन गेंद झाड़ी में उलझी रही
2: जी।
3: शाम ढलने लगी थी तभी उनकी माँ ने उन्हें बुलाया और कहा, बेटा पौधों को तंग ना करो, ये उनके सोने का समय है।
2: श्रोताओ यही वो समय था जब बालक जगदीश चंद्र बोस के मन में वैज्ञानिक चेतना जागी। तो श्रोताओ आज हम चर्चा करेंगे कि क्या पेड़ पौधे भी सोते हैं।
3: श्रोताओ इसका उत्तर है जी हाँ, लेकिन हमारी तरह नहीं। वैज्ञानिकों ने शोध करके पाया है कि रात में पेड़ों की गतिविधियां धीमी हो जाती हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं होने के कारण प्रकाश संश्लेषण की गति बहुत कम हो जाती है।
2: पानी और पोषक तत्वों का प्रवाह भी दिन के मुकाबले कम हो जाता है। पेड़ों की स्कैनिंग से ये भी पाया गया है, रात के समय कुछ पेड़ों की शाखाएं और पत्तियां 5 से 10 सेंटीमीटर तक नीचे झुक जाती हैं और सूर्योदय के बाद फिर से ऊपर उठ जाती हैं।
3: अरे वाह ये तो बड़ी रोचक बात है। यही कारण है कि ये कहा जाता है कि पेड़ भी सोते हैं। विमलेश जी आजकल सुना जाने लगा है कि पेड़ों पर रात को तीव्र प्रकाश वाले बल्ब नहीं जलाने चाहिए, ऐसा क्यों कहा जाता है?
2: अजीत जी ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रात में पेड़ों पर बल्ब नहीं जलाने चाहिए।
3: क्यों?
2: इसके कई कारण हैं। पहली बात, इससे पेड़ों की जैविक घड़ी प्रभावित होती है। पेड़ रात और दिन के चक्र के अनुसार काम करते हैं, तेज रोशनी में उन्हें प्राकृतिक रूप से रात होने का संकेत नहीं मिल पाता
3: जी। विमलेश जी श्रोताओं एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि

0: पेड़ पौधों में फूल आने, पत्तियों के झड़ने और निकलने की प्रक्रिया दिन रात की अवधि पर ही निर्भर करती है, जबकि कृत्रिम प्रकाश इन प्रक्रियाओं को बाधित करता है।
1: एक और बात, कृत्रिम प्रकाश से पेड़ों पर रहने वाले पक्षियों और परागण करने वाले कीटों की दिनचर्या भी प्रभावित होती है।
2: जी।
1: सजावट या सुरक्षा कारणों से भी कभी कभार सीमित समय के लिए बत्तियां जलाई जा सकती हैं, लेकिन अच्छा यही है कि जहां तक हो सके उन्हें प्राकृतिक पर्यावरण में ही रहने दिया जाए।
0: जी, तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की रोचक जानकारी। आशा है कि आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि आई है तो लिख भेजिए अपना संदेश। और अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, पेड़ों पर रात को कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं करना चाहिए? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: पेड़ों पर रात को कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं करना चाहिए?
0: श्रोताओं, आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800-440-559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो हमारा पहला कार्यक्रम है खेल संध्या।
1: ये कार्यक्रम हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित है, जिसे एक गीत के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। गीत में बच्चे विशेषकर भारत के पारंपरिक खेलों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उन्हें खेलने कूदने में कितना आनंद आता है।
0: खेल संध्या। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। संध्या को हम खेलने जाते,
3: संध्या को हम खेलने जाते,
0: मित्रों संग आनंद मनाते,
3: मित्रों संग आनंद मनाते,
0: कभी दौड़ना और उछलना,
3: कभी दौड़ना और उछलना,
0: कभी गेंद के खेल खेलना,
3: कभी गेंद के खेल खेलना,
0: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
3: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
0: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
3: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
0: गिल्ली डंडा सबको भाता,
3: गिल्ली डंडा सबको भाता,
0: सतोलिया भी मजा दिलाता,
3: सतोलिया भी मजा।

0: कभी गेंद के खेल खेलना,
1: कभी गेंद के खेल खेलना,
0: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
1: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
0: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
1: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
0: गिल्ली डंडा सबको भाता,
1: गिल्ली डंडा सबको भाता,
0: सतोलिया भी मजा दिलाता,
1: सतोलिया भी

तो बच्चों, अभी आपने सुना ये खेल गीत। अच्छा लगा ना? सच है, मित्रों के साथ खेलने कूदने में कितना मजा आता है ना? खेलने कूदने से व्यायाम तो होता ही है और शरीर में भी चुस्ती फुर्ती आ जाती है। लेकिन भाई, सभी बातों का एक समय होता है, खेलने का समय और खूब मन लगाकर पढ़ने का भी समय। तो समय से खेलिए और समय से पढ़िए। अब आपके लिए एक बड़ी रोचक जानकारी। इस गीत में आपने सुना था, गिल्ली डंडा सबको भाता, सतोलिया भी मजा दिलाता। गिल्ली डंडा तो सबको मालूम है, लेकिन सतोलिया क्या होता है? सतोलिया उत्तर भारत, मुख्यतः राजस्थान का एक पारंपरिक देसी खेल है जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। सतोलिया यानी सात। यह सात कंचों या सात गोल पत्थरों की डिस्क और गेंद से दो टीमों के बीच खेला जाता है। इसमें एक टीम द्वारा सात कंचे या पत्थर एक स्थान पर रखे जाते हैं और दूसरी टीम गेंद से उन्हें मारकर गिराने की कोशिश करती है। यदि कंचे या पत्थर गिर जाते हैं तो जीतने वाली टीम चिल्लाती है, सतोलिया। अब आपके लिए कुछ करने को। मालूम कीजिए कि हमारे देश में और कौन कौन से परंपरागत खेल हैं और उन्हें कैसे खेलते हैं। खेल संध्या, अभी आपने सुना ये प्यारा कार्यक्रम।

0: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी।
1: इस कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों और उनकी परंपराओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है और बताया गया है कि किस प्रकार से उन्होंने आज भी अपनी संस्कृति को बनाए रखा है।
0: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी।

0: कहते हैं अरबों वर्ष पहले पृथ्वी पर जमीन का एक विशाल टुकड़ा था। किसी कारणवश बड़ा भयंकर धमाका हुआ। और जमीन के टुकड़े अलग अलग छिटक गए। उसी से बने द्वीप और महाद्वीप।
1: ऐसा ही एक महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया।

0: ये भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसके पश्चिम और दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में प्रशांत महासागर है और उत्तर में टिमोर और अराफुरा सागर है।
1: क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया भारत से दुगने से भी अधिक है, लेकिन भारत की जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या से लगभग 6 गुना अधिक है।

0: ऑस्ट्रेलिया का अधिकतर भाग सूखा और गर्म है। हमारे देश की गंगा नदी में जितना जल है, ऑस्ट्रेलिया की सारी नदियों में कुल मिलाकर उसका आधा जल भी नहीं है।
1: एक बात और, दक्षिण गोलार्ध में होने के कारण ऑस्ट्रेलिया के मौसम उत्तरी गोलार्ध में स्थित देशों से उल्टे होते हैं। उदाहरण के लिए, जब भारत में गर्मियां होती हैं तो ऑस्ट्रेलिया में जाड़ा होता है, और जब भारत में जाड़ा होता है तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी का मौसम आ जाता है।
0: दुनिया के इस सबसे छोटे महाद्वीप की खोज सन 1770 में एक अंग्रेज नाविक कैप्टन जेम्स कुक ने की थी। इसका मतलब ये नहीं कि ऑस्ट्रेलिया की खोज से पहले वहाँ लोग नहीं रहते थे, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी तो पाषाण युग से रहते चले आ रहे हैं। और शायद तुम्हें ये जानकर हैरानी हो कि उनमें से कुछ के जीने के तरीके में आज भी कोई अंतर नहीं आया।

0: मतलब ये कि आज भी ये शिकार करके अपना पेट पालते हैं। इन्होंने न खेती करना सीखा न पशु पालना। पशु के नाम पर डिंगो नाम का एक कुत्ता पालते हैं जो शिकार के समय भी बराबर इनके साथ रहता है।
1: शिकार करने के लिए ये लोग आज भी पत्थर और लकड़ी के हथियारों का प्रयोग करते हैं। इनका एक हथियार है वो मेरा, जिसकी मदद से ये अपने भाले को 130 मीटर की दूरी तक फेंक सकते हैं।
0: एक और हथियार होता है बूमरैंग, जो घुमावदार होता है। इस हथियार की विशेषता ये है कि अगर शिकारी इसे चतुराई से फेंके और किसी कारणवश वह निशाने पर न लगे तो शिकारी के पास वापस आ जाता है।
1: ऑस्ट्रेलिया के ये आदिवासी सभी तरह के पशु पक्षियों का शिकार करते हैं, जैसे एम्यू पक्षी, सांप, छिपकली, कछुआ, कंगारू आदि।
0: कंगारू, इस शब्द की एक रोचक कहानी है। अंग्रेजों ने जब पहली बार इस विचित्र जीव को देखा तो आदिवासियों से इसका नाम पूछा। आदिवासी अंग्रेजी तो समझते नहीं थे, बस इतना समझ पाए कि गोरे लोग कुछ पूछना चाह रहे हैं। उन्होंने अपनी भाषा में कहा, कंगारू यानी तुम क्या जानना चाहते हो? अंग्रेज समझे कि कंगारू इस विचित्र जीव का नाम है, बस तभी से उसका नाम कंगारू पड़ गया।
1: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों के बारे में इतना जान लेने के बाद ये जानने की भी इच्छा होती है कि शताब्दियां बीत जाने पर भी जिन लोगों की जीवन शैली में कोई परिवर्तन नहीं आया वो देखने में कैसे लगते हैं।
0: इनका रंग गहरा होता है, कद सामान्य, शरीर छरहरा लेकिन गठा हुआ, आंखें छोटी और भीतर को धसी हुई, नाक चौड़ी और चपटी, जबड़ा कुछ बाहर निकला हुआ और बाल घुंघराले।
1: हमारी दृष्टि से भले ही ये लोग पिछड़े हों, लेकिन शारीरिक और बौद्धिक दृष्टि से ये पीछे नहीं। इनकी भाषाएं काफी विकसित हैं और लगभग 500 बोलियां प्रचलित हैं। हाँ, ये बात और है कि इनके यहाँ पढ़ाई लिखाई की कोई व्यवस्था नहीं।
0: तुम सोच रहे होगे कि क्या मजे की बात है, आदिवासी बच्चों को स्कूल नहीं जाना पड़ता, न होमवर्क करना पड़ता है और न ही परीक्षा देनी पड़ती, बस सारा दिन मौज मस्ती करो, खेलो कूदो।
1: हाँ, ये तो है। आदिवासी बच्चों ने अपने मनोरंजन के लिए तरह तरह के खेल बना रखे हैं।
0: ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों का पारिवारिक संगठन बहुत मजबूत होता है। ये सब कुछ मिल बांट कर खाते हैं और प्रेम से रहते हैं। इनके यहाँ छोटे बड़े का कोई भेदभाव नहीं होता, सभी बराबर माने जाते हैं। हाँ, बड़े बूढ़ों और अनुभवी लोगों का आदर अवश्य किया जाता है।
1: इन्हीं बड़े बूढ़ों पर पवित्र स्थलों की जिम्मेदारी होती है। यही लोग धार्मिक अनुष्ठान करवाते हैं और नौजवानों को अपने रीति रिवाजों के बारे में बताते हैं। ऐसे अवसरों पर नृत्य और संगीत अवश्य होता है।
0: हाँ, लेकिन पूरी तैयारी के साथ। स्त्री पुरुष अपने शरीर पर सफेद मिट्टी और गेरू से टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींचते हैं, आकृतियां बनाते हैं, माथे पर रस्सी की पट्टियां बांधते हैं और उनमें पक्षियों के रंग बिरंगे पंख खोस लेते हैं, और फिर होता है सामूहिक नृत्य।
1: ऑस्ट्रेलिया के ये सीधे साधे आदिवासी हंसते खेलते अपना जीवन बसर कर रहे थे, लेकिन फिर अंग्रेजों को इस अद्भुत महाद्वीप का पता चल गया। और उन्होंने वहां अपनी बस्तियां बसानी शुरू कर दी।
0: अंग्रेजों के अलावा अन्य यूरोपीय लोग भी यहां आए।

0: पहले पहल अंग्रेज समुद्र तट पर आकर बसे, फिर उन्होंने अंदर की ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे अंग्रेज आगे बढ़े, वैसे वैसे आदिवासी अंदर के दुर्गम क्षेत्रों में सिमटते गए। बेचारे क्या करते, अपने सीधे साधे हथियारों से अंग्रेजों का मुकाबला थोड़े ही कर सकते थे।
1: अंग्रेजों ने आदिवासी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और वहां खेती बाड़ी शुरू कर दी। कहीं कहीं आदिवासियों ने अपना क्षेत्र खाली करने से इनकार किया तो अंग्रेजों ने छल कपट से काम लिया। ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न नगर इसका जीता जागता उदाहरण है। इस नगर को बसाने के लिए अंग्रेजों ने आदिवासियों से 40,000 हेक्टेयर जमीन ली, और जानते हो उसके बदले में उन्हें क्या दिया?
0: 100 कंबल, 50 चाकू, 50 कुल्हाड़ियां, 40 कैंचियां, 50 शीशे, 20 जोड़ी कपड़े और 2 टन आटा।
1: ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी छोर पर एक छोटा सा द्वीप है, तस्मानिया। ये भी ऑस्ट्रेलिया का एक हिस्सा है। यहाँ के आदिवासियों को भी अंग्रेजों ने उसी तरह धकेलना शुरू किया। अंग्रेज उन्हें खाना कपड़ा तो देते थे, लेकिन बेचारे अंग्रेजों की उतरन पहनकर भी ठंड से नहीं बच पाए। सन 1847 तक इनकी संख्या 2000 से घटकर केवल 47 रह गई, और सन 1869 तक आते आते आखिरी आदिवासी ने भी दम तोड़ दिया। इस तरह पूरी की पूरी एक जाति लुप्त हो गई।
0: आज पशु पक्षियों की दुर्लभ जातियों के संरक्षण को बहुत महत्व दिया जा रहा है। उनके शिकार पर रोक लगा दी गई है, उनके लिए अभयारण्य बनाए जा रहे हैं। लेकिन तस्मानिया के आदिवासियों के बारे में तब किसी ने भी नहीं सोचा।
1: ऑस्ट्रेलिया के इन आदिवासियों की दशा में काफी सुधार हुआ है। उन्हें अब समानता के अधिकार मिल गए हैं। वो वोट दे सकते हैं, अपने प्रतिनिधि को देश की संसद में भेज सकते हैं।
0: यही नहीं, आदिवासियों को भूमि के अधिकार भी मिले हैं। इनके लिए कुछ आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं जहां किसी और का कोई दखल नहीं। ये लोग अपनी मर्जी से जैसे चाहें रह सकते हैं।
1: उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में अर्नहैम लैंड नाम का एक ऐसा ही आरक्षित क्षेत्र है। इसमें ककाटो नाम का एक राष्ट्रीय पार्क भी बनाया गया है। सन 1988 में इस राष्ट्रीय पार्क की फिल्म बनाने के लिए एक अमरीकी दंपति वहां जाकर महीनों रहे थे।
2: हम लोग आपके इस ककाटो पार्क की फिल्म बनाने आए हैं, और उसके लिए पूरे परिवेश को अच्छी तरह जानना समझना बहुत जरूरी है।
3: तब तो आप भी हम गागुजू आदिवासियों जैसे ही हैं। हम लोग अपने आप को प्रकृति का एक हिस्सा मानते हैं।
4: लेकिन मिस्टर नीजी, मनुष्य तो अपने को प्रकृति का मालिक मानता है।
3: नहीं नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, नहीं तो वन देवी नाराज हो जाएंगी। वन देवी ने समुद्र से निकलकर जमीन बनाई, पेड़ पौधे बनाए, जीव जंतु बनाए, मनुष्य को जन्म दिया, और फिर वो भी इन्हीं में समा गई।
2: अच्छा, तो ये सब वन देवी ने किया?
3: यही नहीं, हमारी मिमी देवी ने हमें शिकार करना सिखाया और चित्र बनाना सिखाया।
4: कैसे चित्र?
3: जीव जंतुओं के चित्र, आदमी के चित्र।
2: क्या आप हमें ऐसे कुछ चित्र दिखा सकते हैं?
3: क्यों नहीं, अभी चलिए।
2: चलिए।
3: आरी
2: देखो वेरिंडा, ये अजगर का चित्र।
4: अरे, इसमें तो अजगर की हड्डियों का ढांचा तक दिख रहा है, जैसे ये कोई एक्सरे फोटो हो।
2: और ये देखो, ये गुफा की दीवार पर गेरू से बनी ये मछली।
4: इधर ये कछुए, मेंढक, कंगारू और ये प्लेटिपस के चित्र भी हैं। और ये देखो, आदिवासी का ये चित्र।
2: मिस्टर नीर जी, क्या आप लोग अब भी ऐसे चित्र बनाते हैं?
3: गुफाओं में तो नहीं, हाँ पेड़ों की छाल पर जरूर बनाते हैं। आप कल हमारे कबीले में आइए, मैं आपको अपने भाई से मिलवाऊंगा, बहुत अच्छे चित्र बनाता है।
2: ठीक है, कल सुबह हम वहां आएंगे, अभी इन चित्रों की फिल्म तो उतार लें।
3: हाँ।
5: गुड मॉर्निंग मिस्टर।

0: जी
1: गुड मॉर्निंग आइए आइए आइए।
2: हमारे आने से आपको कोई असुविधा तो नहीं हुई?
1: जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। ये मेरा भाई है इल्किर।
2: अच्छा अच्छा,
1: ये आपकी भाषा नहीं बोल सकता लेकिन आपको चित्र दिखाएगा। कल इसने ये छाल उतारी थी चित्र बनाने के लिए, आप इसे चित्र बनाते देखना चाहते हैं?
3: ये तो बहुत अच्छा होगा, फिर हम उसकी फिल्म भी उतार सकते हैं।
1: जी
2: अरे वाह, ये तो बड़ी तेजी से हाथ चला रहे हैं। देखो वेलिंडा, इनकी कोई गलती भी नहीं हुई और देखो ना, कुछ मिटाना भी नहीं पड़ा।
3: वाकई कमाल है।
1: अभ्यास से गलतियां नहीं होती, हमारे बनाए चित्र तो अब दुनिया भर में बिकते हैं।
2: सचमुच?
3: स्टेन, एक चित्र हम भी खरीद लें?
2: हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं। वो अजगर वाला चित्र बड़ा आकर्षक है।
1: लीजिए ये आपका हुआ।
2: इसकी कीमत?
1: कीमत नहीं लूंगा, हम गगुज्जू आदिवासियों की तरफ से आपको भेंट है।
3: सच?
2: धन्यवाद।
4: ऑस्ट्रेलिया के ये आदिवासी अच्छे चित्रकार तो हैं ही, आज उन्होंने अन्य क्षेत्रों में भी अपना स्थान बना लिया है। वो देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे हैं।
5: लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें ये आधुनिकीकरण पचता नहीं, वो अपनी जीवन पद्धति नहीं बदलना चाहते, और क्योंकि अब उन्हें भूमि के अधिकार मिल गए हैं इसलिए वो अपने क्षेत्र में अपने ढंग से जी सकते हैं। एक तरह से अच्छा भी है, आज हम चाहें तो पाषाण युग की जीवन शैली को प्रत्यक्ष देख तो सकते हैं।
6: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
7: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए।
6: नमस्कार।
8: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
9: आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: सुगम संगीत का कार्यक्रम सुनने का बस थोड़ी ही देर में।
1: तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं झारखंड के छिपे हुए खूबसूरत नजारों को एक्सप्लोर करने के लिए?
2: बिल्कुल।
1: लेकिन अरुणिमा, इस चिलचिलाती गर्मी और बढ़ती घमौरियों से कैसे बचे, और हमारे इस बिजी मॉडर्न लाइफस्टाइल का क्या सलूशन है?
3: सारे जवाब मिलेंगे रेशमा, सारे जवाब मिलेंगे।
1: साथ ही बात होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की, और आपके और हमारे फ्यूचर की, और हाँ, देश दुनिया की लेटेस्ट करंट अफेयर्स पर भी होगी पैनी नजर। तो ट्यून करना मत भूलना आपके अपने शो युवा वाणी पर अरुणिमा और रेशमा के साथ। सो डू जॉइन अस एंड स्टे ट्यून्ड।
0: पुनः प्रसारण विशेष। कुछ कहानियाँ केवल सुनी नहीं जाती, वे मन में उतर कर प्रेरणा बन जाती हैं। काली माटी की मिट्टी से आधुनिक भारत के स्वप्निल नगर तक की यात्रा, इस्पात की चमक, संस्कृति की सुगंध, विज्ञान का विश्वास, खेलों का उत्साह और इंसानियत की अनुपम पहचान। यदि आप इस अद्भुत राष्ट्रीय प्रस्तुति को सुनने से चूक गए हो, या एक बार फिर उस गौरवपूर्ण यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हो, तो अवश्य सुनिए इस्पात, संस्कृति और सपनों का शहर जमशेदपुर की बहुरंगी पहचान। ये विशेष रेडियो रूपक गत 5 जुलाई को रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में देश भर के आकाशवाणी केंद्रों से प्रसारित किया गया था। अब इसका विशेष पुनः प्रसारण होगा बुधवार 8 जुलाई 2026 शाम 4 बजे आकाशवाणी जमशेदपुर के प्राइमरी चैनल FM 102.4 MHz पर। आइए सुनिए उस शहर की प्रेरक गाथा, जहां इस्पात केवल कारखानों में नहीं बल्कि लोगों के सपनों और हौसलों में भी ढलता है। आकाशवाणी जमशेदपुर, आपके अपने शहर की आवाज। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 MHz पर। प्रस्तुत है सुगम संगीत कार्यक्रम। आइए सुनते हैं चंद गजलें। फनकार है गुलाम अली।

0: तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं झारखंड के छिपे हुए खूबसूरत नजारों को एक्सप्लोर करने के लिए?
1: बिल्कुल, लेकिन अरुणिमा, इस चिलचिलाती गर्मी और बढ़ती घमौरियों से कैसे बचे, और हमारे इस बिजी मॉडर्न लाइफस्टाइल का क्या सलूशन है?
0: सारे जवाब मिलेंगे रेशमा, सारे जवाब मिलेंगे। साथ ही बात होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की, और आपके और हमारे फ्यूचर की, और हाँ, देश दुनिया की लेटेस्ट करंट अफेयर्स पर भी होगी पैनी नजर। तो ट्यून करना मत भूलना आपके अपने शो युवा वाणी पर अरुणिमा और रेशमा के साथ। सो डू जॉइन अस एंड स्टे ट्यून्ड।
2: पुनः प्रसारण विशेष। कुछ कहानियाँ केवल सुनी नहीं जाती, वे मन में उतरकर प्रेरणा बन जाती हैं। काली माटी की मिट्टी से आधुनिक भारत के स्वप्निल नगर तक की यात्रा, इस्पात की चमक, संस्कृति की सुगंध, विज्ञान का विश्वास, खेलों का उत्साह और इंसानियत की अनुपम पहचान। यदि आप इस अद्भुत राष्ट्रीय प्रस्तुति को सुनने से चूक गए हों, या एक बार फिर उस गौरवपूर्ण यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हों, तो अवश्य सुनिए इस्पात, संस्कृति और सपनों का शहर जमशेदपुर की बहुरंगी पहचान। ये विशेष रेडियो रूपक गत 5 जुलाई को रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में देश भर के आकाशवाणी केंद्रों से प्रसारित किया गया था। अब इसका विशेष पुनः प्रसारण होगा बुधवार 8 जुलाई 2026 शाम 4 बजे आकाशवाणी जमशेदपुर के प्राइमरी चैनल FM 102.4 MHz पर। आइए सुनिए उस शहर की प्रेरक गाथा, जहां इस्पात केवल कारखानों में नहीं बल्कि लोगों के सपनों और हौसलों में भी ढलता है। आकाशवाणी जमशेदपुर, आपके अपने शहर की आवाज़।

आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है। श्रोताओं, आइए सुनते हैं झारखंड के लोकगीत। आज आपके साथ हूँ मैं अनुपमा, नमस्कार। श्रोताओं, आइए सुनते हैं प्रेम सिंह पूर्ति और साथी के स्वर में ये हो लोकगीत।

श्रोताओं, प्रेम सिंह पूर्ति और साथी के स्वर में गाए इस होलू गीत के साथ ही आज का झारखंड के लोकगीतों का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।

एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। शाम के 4 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची से रिले समाचार मुख्यांश।

अब तक के मुख्य समाचारों के साथ में पूनम करकेट्टा। रांची सांसद संजय सेठ ने आज विधायक नवीन जायसवाल और महापौर रोशनी खलखो के साथ रांची के रातू रोड स्थित ओटीसी ग्राउंड के निकट आधुनिक ट्रैफिक पुलिस पोस्ट का लोकार्पण किया। इस दौरान नवनिर्मित ट्रैफिक पोस्ट की चाबी पुलिस पदाधिकारियों को सौंपी गई। बोकारो जिले के पुलिस ने साइबर अपराध को अंजाम देने वाले दो गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने गिरफ्तार गिरोह के पास से कई सिम कार्ड, मोबाइल सहित अन्य सामान बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया कि ये अपराधी बैंक अधिकारी बनकर क्रेडिट कार्ड के नाम पर लोगों को पैसा ठगने का काम करते थे। दुमका के सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के 43 कॉलेजों में स्नातक नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन का आज आखिरी दिन है। 11 जुलाई को चयनित विद्यार्थियों की पहली मेधा सूची जारी की जाएगी। साहिबगंज जिले में उपायुक्त दीपक दुबे ने जिला अंतर्गत संचालित सर्वजन पेंशन योजना तथा मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों की प्रगति पर चल रहे सत्यापन कार्य की समीक्षा की। उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि 3 दिनों के भीतर सत्यापन कार्य पूरा कर प्रतिवेदन समर्पित करें, ताकि विभागीय निर्देशों के अनुरूप पात्र लाभुकों को पेंशन का भुगतान शीघ्र किया जा सके। दामोदर घाटी निगम के 79वें स्थापना दिवस पर कोडरमा थर्मल पावर प्लांट को सर्वश्रेष्ठ उत्पादन स्टेशन और ग्रीन प्लांट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और रामगढ़ जिले के भुरकुंडा थाना क्षेत्र में पुलिस को अवैध हथियार निर्माण के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने हथियार बनाने के उपकरण और अर्धनिर्मित हथियार बरामद किए हैं। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है रूपक स्पात संस्कृति और सपनों का शहर जमशेदपुर की बहुरंगी पहचान। आलेख शाहिद अनवर का है, प्रस्तुत कर रहे हैं राजीव रंजन तिवारी, संयोजन है राजेश कुमार राय का और वाचन स्वर है तासीर शाहिद का।

0: जोहार हिंदुस्तान, आज आकाशवाणी के इस राष्ट्रीय क्षितिज पर हम आपको ले चल रहे हैं एक ऐसे अनूठे सफर पर जहां पिघलते फौलाद की धमनियों में धड़कता है मिनी इंडिया। एक ऐसा शहर जिसका इतिहास राष्ट्र के स्वाभिमान का पहला तकनीकी और औद्योगिक घोषणा पत्र है। हर शहर की अपनी एक कहानी होती है। कुछ शहर इतिहास में दर्ज होते हैं, कुछ भूगोल में और कुछ लोगों के दिलों में। ये कहानी है एक ऐसे शहर की जो कभी जंगल था, जो कभी काली माटी नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां स्वर्ण रेखा और खरकई नदियां मिलकर धरती को हरियाली का आशीर्वाद देती थी। फिर एक सपना आया, एक दूरदर्शी आँखों में पलता हुआ सपना, और उस सपने ने जंगलों के बीच बसाया एक ऐसा नगर जो आज उद्योग का प्रतीक है, खेलों की राजधानी है, संस्कृतियों का संगम है और आधुनिक भारत के आत्मविश्वास की पहचान है। ये है जमशेदपुर टाटा नगर, इस्पात, संस्कृति और सपनों का शहर। वर्ष 1907, भारत अभी स्वतंत्र नहीं हुआ था, लेकिन एक भारतीय उद्योगपति ने स्वतंत्र भारत का सपना देख लिया था। वो सपना था भारत को आत्मनिर्भर बनाने का। उस सपने का नाम था जमशेद जी नसरवान जी टाटा। उन्होंने कहा था, यदि भारत को मजबूत बनाना है तो उद्योग, शिक्षा और विज्ञान को साथ लेकर चलना होगा। और फिर काली माटी की धरती पर जन्म हुआ एक ऐसे नगर का जो केवल कारखानों का समूह नहीं था, बल्कि एक विचार था, एक दृष्टि थी, एक भविष्य था। आज वही नगर विश्व में जमशेदपुर और टाटा नगर दोनों नामों से जाना जाता है। ये शहर केवल बसा नहीं है, इसे सपनों ने गढ़ा है, दूर दृष्टि ने सवारा है और लाखों हाथों ने अपनी श्रम की ऊष्मा से जीवन दिया है। किसी शहर की पहचान सिर्फ उसकी ऊंचे इमारतें नहीं बनाती, बल्कि वो रिश्ता बनाता है जो शहर और उसके लोगों के बीच होता है। यही रिश्ता जमशेदपुर को दुनिया के दूसरे औद्योगिक नगरों से अलग बनाता है। टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट कॉर्पोरेट सर्विसेज डीबी सुंदर रामम बताते हैं कि जमशेदपुर केवल कंपनी टाउन नहीं है, ये सामाजिक उत्तरदायित्व, सुनियोजित नगरीय विकास और नागरिक साझेदारी का एक वैश्विक मॉडल है।
1: फाउंडर का जो सपना है उसको साकार करने में जितने भी जनरेशन है, जितने भी चेयरमैन आए, जितने भी MDs आए हैं और जितने भी लोग हैं साथ में, इंक्लूडिंग एम्प्लॉयज, यूनियंस, एवरीवन, सबका अलाइनमेंट एक ही है कि जमशेदपुर का नाम रोशन होना चाहिए। रिसेंटली वी वर डिक्लेयर्ड थर्ड बेस्ट क्लीनेस्ट सिटी, तो कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग पूछते हैं कि एक नंबर में क्यों नहीं आ सकता। वो दैट कॉम्पिटेटिव स्पिरिट भी है, यही हम लोगों को आगे लेके चलता है एंड टू ब्रिंग इन मोर एंड मोर फैसिलिटीज टू द सिटी।
0: अमूमन बड़े औद्योगिक शहरों को प्रदूषण और कंक्रीट के जंगलों से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन जमशेदपुर में स्टील प्लांट के ठीक बगल में जुबली पार्क और सघन ग्रीन कवर यानी हरियाली है। उद्योग और पर्यावरण के इस बेहतरीन संतुलन और सस्टेनेबिलिटी को लेकर टाटा स्टील का विजन साफ है, विशेषकर जब हम नेट जीरो कार्बन के राष्ट्रीय लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे हैं। डीबी सुंदर रामम रेखांकित करते हैं,
1: आज के दिन जमशेदपुर डेफिनेटली वन ऑफ द बेंचमार्क प्लांट्स विद 2.2 टन्स ऑफ कार्बन एमिशन पर टन ऑफ क्रूड स्टील, बट इसको और हम कम कर सकते हैं। सबसे बेस्ट है सिटीजन से, किसी का भी घर में, जिसका बंगलो है, घर है, कुछ भी है, अब देखेगा पेड़ पौधा जरूर रहता है, एवरी ईयर गार्डन कॉम्पिटिशन होता है एंड ऑल्सो लोगों में हम लोग लाते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन को यू हैव टू लव नेचर। आज के दिन आप हमसे पूछेगा तो अराउंड 28% जो है ग्रीन कवर किए हैं। हमारा टारगेट है कि कैसे हम 33-35% करें। लास्ट 3-4 साल में बहुत सारा ओपन जिम आए हैं, पार्क्स आए हैं, जहाँ इस सबको हम लोग बढ़ावा देते हैं तो TMH में लोड कम होता है, बाकी जितना हमारा एनवायरमेंट पैरामीटर है उसमें

0: हम लोग काम कर रहे हैं, वी आर स्पेंडिंग 1000 to 1200 crores एवरी ईयर टू ब्रिंग इट टू लेवल वेयर पीपल इवन एट 500 meters. अपना भी ख्याल रखना है और शहर का भी ख्याल रखना है, तो इसलिए हम लोग हर कदम उठाएंगे जिससे लोगों को ये नहीं असुविधा हो कि प्रदूषण यहाँ बढ़ा.
1: जमशेदपुर के बारे में एक बेहद मशहूर पंक्ति कही जाती है, यहाँ टाटा स्टील शहर की देखभाल नहीं करती बल्कि शहर टाटा स्टील की देखभाल करता है. कंपनी और यहाँ के आम नागरिकों के बीच इस बेहद भावुक, आत्मीय और 100 साल से भी ज्यादा पुराने अनूठे रिश्ते की जादुई बुनियाद क्या है, सुंदर रामम कहते हैं.
0: आज के जनरेशन के एम्प्लॉय से पूछेगा वो जरूर बोलेंगे हम थर्ड जनरेशन है, फोर्थ जनरेशन है. कुछ एम्प्लॉय मिलेंगे जो बोलेगा फिफ्थ जनरेशन है. नॉट ओनली एम्प्लॉय, जितना शॉप है यहाँ पे, जितना एस्टेब्लिशमेंट है, सिंगभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जितना भी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है, तो वो उनके अंदर में भी लॉयल्टी है और हमारे अंदर में भी लॉयल्टी है कि जब हमको जरूरत है उस समय लोग बाहर से आए हैं यहाँ पे. उस समय उनको भी जैसे कंपनी को तकलीफ हुआ उनको भी तकलीफ हुआ, बट फिर भी वो साथ दिए कंपनी का, इसलिए अभी ये पूरा टाटा फैमिली है. और ये भी बात हो रहा है कि हम लोग कूड़ा से कैसे बिजली को उत्पन्न कर सकेंगे या चारकोल का कैसे उत्पन्न कर सकेंगे, बहुत अच्छा अच्छा आइडियाज आ रहा है. जितना भी आइडियाज है वो शहर को और कैसे हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं उसके लिए.
1: ईंट पत्थर और लोहे से केवल इमारतें बनती हैं, लेकिन विश्वास, संवेदना और साझेदारी से एक शहर जन्म लेता है. सड़कों के किनारे फैले वृक्ष, साफ सुथरे उद्यान, झीलें, खुले मैदान और प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर बढ़ता विकास. यहाँ उद्योग और पर्यावरण एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि सहभागी हैं, जैसे इस्पात और हरियाली ने यहाँ एक दूसरे का हाथ थाम लिया हो. यहाँ हर सड़क एक मंजिल की ओर जाती है और हर मंजिल किसी नए सपने का आरंभ बन जाती है. अगर उद्योग किसी राष्ट्र की शक्ति है तो विज्ञान उसकी बुद्धि है. जमशेदपुर की धरती पर विज्ञान ने भी अनेक स्वर्णिम अध्याय लिखे हैं. यहाँ सन 1950 में स्थापित राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला यानी CSIR NML ने देश के धातु कर्म में आत्मनिर्भरता को नई दिशा दी. आज जब दुनिया सतत विकास और ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात कर रही है, तब यहाँ के वैज्ञानिक भविष्य के भारत का निर्माण कर रहे हैं. विज्ञान में युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला NML के सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन क्रिटिकल मिनरल्स एंड मेटल्स के प्रमुख सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट और एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अभिलाष उजागर करते हैं.
2: काफी सारे इंडस्ट्रीज ने फायदा उठाया, अभी भी उठा रही है इंडस्ट्रीज. लार्ज स्केल में काम करती है, अपने फेरोलॉयज लेके जाती है, स्पेशलिटी फेरोलॉयज जो यूज होता है डिफेंस में, न्यूक्लियर सेक्टर में, ऑल दैट. ऑब्जेक्टिव ये रहा कि जो कंपनी कोल की माइनिंग, आयरन ओर की माइनिंग या डिफरेंट ओर्स की माइनिंग करती है, उनका ग्रेड अगर लो रहता है तो उसको एक ऐसे इंडस्ट्रियल ग्रेड पे लेकर किया जाए जहां से लेकर एक कंपनी अपना मेटल एक्सट्रैक्शन खुद से कर लेती है. कोई भी रेल एक्सीडेंट हुआ है, अगले ही महीने वहां का वो रेल पटरी चक्का सब कुछ NML आ जाता है, उस पर इन्वेस्टिगेशन होता है कि वो स्टील क्रैक क्यों हुआ, टूट क्यों गया. ऐसे ही थर्मल पावर प्लांट है या ऑयल रिफाइनरी है, इनमें जो क्रैक्स आती हैं कभी कुछ, उनका इन्वेस्टिगेशन यहाँ से होता है ताकि आगे जाकर के ये जो समस्याएं होने वाली है इनको रोका जा सके.
1: भारतीय रेलवे ट्रैकों की मजबूती से लेकर डिफेंस और एरोस्पेस के क्षेत्र के लिए विशेष अलॉय विकसित करने तक देश के औद्योगिक विज्ञान को आत्मनिर्भर बनाने में जमशेदपुर की इस प्रयोगशाला ने महत्वपूर्ण तकनीकी क्रांतियां की हैं.
2: जॉब अपॉर्चुनिटीज काफी बन के आए हैं फॉर स्टार्टअप्स, फॉर यंग पीपल हु आर वांट टू एंटर इनटू केमिस्ट्री फील्ड, मैकेनिकल मेटलर्जी, ऑल दिस काइंड ऑफ फील्ड्स.
1: एक भटनागर पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक के रूप में डॉक्टर अभिलाष का दृष्टिकोण हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड रहा है. आज के दौर में NML इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और औद्योगिक कचरे से लिथियम, कोबाल्ट और सोने जैसे कीमती धातुओं को निकालने की स्वदेशी तकनीक पर बहुत बड़ा काम कर रहा है. पर्यावरण संरक्षण यानी सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलर इकोनॉमी वैश्विक परिदृश्य में इस शोध का काफी महत्व है. डॉक्टर अभिलाष प्रकाश डालते हैं.
2: हमारा उद्देश्य ये है, कचरे में जो बैटरी है उससे लेके जो मेटल आप हाइपर बनाते हैं उससे नई बैटरी अगर बन जाएगी, बैटरी की कॉस्ट 1/8 कम हो जाएगी. कल आपको जो ईवी का कॉस्ट 15 लाख 16 लाख की कार है, शायद कुछ पैसे कम हो जाए उसमें, एंड इंडिया बिकम सेल्फ डिपेंडेंट. सो दैट इज वॉट वी फील दैट द ग्रीन केमिस्ट्री वॉट वर्क इन मेटलर्जी इज वेरी वेल सूटिंग फॉर ई वेस्ट रिसाइकलिंग.
1: विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ग्रीन स्टील और नैनो मटेरियल्स जैसे भविष्य की तकनीक में जमशेदपुर की ये प्रयोगशाला भारत को वैश्विक स्तर पर एक लीडर के रूप में स्थापित कर रही है. विज्ञान की प्रयोगशालाओं में जन्म लेने वाले विचार जब उद्योगों में उतरते हैं तो राष्ट्र की प्रगति का नया अध्याय लिखते हैं और यही अध्याय जमशेदपुर दशकों से लिख रहा है। लेकिन विकास केवल कारखानों और प्रयोगशालाओं से नहीं होता।

0: विकास के लिए चाहिए शिक्षित मस्तिष्क, जिज्ञासु युवा और नवाचार का साहस। जमशेदपुर का शैक्षणिक इतिहास भी उतना ही गौरवशाली है। कभी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आज राष्ट्रीय महत्व का संस्थान NIT जमशेदपुर। इसके निदेशक प्रोफेसर गौतम सूत्रधर बताते हैं, RIT से NIT तक का ये सफर केवल नाम परिवर्तन नहीं है, बल्कि शोध, नवाचार और राष्ट्र निर्माण की सतत यात्रा है।
1: NIT जमशेदपुर 31 NIT से देश का एक NIT है। क्रिटिकल मिनरल्स में बहुत ही उपयोगिता है सोलर सेल में, तो अभी ये सोलर सेल रिसाइकलिंग इज ए प्रोजेक्ट। रिसेंटली वी गॉट ए वेरी बिग प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट 1.5 करोड़। जो जो हम लोग का उधर में सिल्वर रहता है, सिलिकॉन रहता है, कॉपर रहता है, उसको कैसे मैं डिसइंटीग्रेट करना चाहता है और फिर हम लोग को नया नया में फोटोवोल्टिक सेल में हम लोग फिर उपलब्ध कर सकता है, यूटिलाइज कर सकते हैं।
0: 1960 में RIT के रूप में शुरू हुई इस संस्था का इतिहास जमशेदपुर के औद्योगिक विकास के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। टाटा स्टील, टाटा मोटर्स और आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया जैसी देश के सबसे बड़ी औद्योगिक इकाइयों के ठीक बीच में स्थित होना, यहाँ के छात्रों की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और देश के औद्योगिक विज्ञान को मजबूती देने में वरदान साबित हुआ है। प्रोफेसर सूत्रधर कहते हैं,
1: इवन लास्ट ईयर में मैं 4 बंदा को अमेरिका भेजे थे फॉर कॉम्पिटिशन में, गया इधर से, एक लड़की था, 3 लड़का था, वो लोग को हम लोग भेजे थे। तो इधर में देश में बहुत जगह में ये लोग EV, रोबोटिक्स, अभी AI का युग आ गया, IIoT, इसमें बहुत काम चल रहा है और आगे बढ़ रहा है। हम लोग इसमें इनोवेशन के रूप में हम लोग इसको सपोर्ट भी करता है।
0: विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए NIT जमशेदपुर भविष्य के उन तकनीकी लीडर्स को तैयार कर रहा है जो न केवल वैश्विक स्तर पर भारत का परचम लहराएंगे, बल्कि देश की जमीनी समस्याओं का भी तकनीकी समाधान निकालेंगे। प्रोफेसर सूत्रधर रूबरू कराते हैं।
1: प्रधानमंत्री जी का जो उद्देश्य है, सपना है, इस टाइप ऑफ स्टूडेंट को पहले से ही तैयार करना बहुत जरूरी है। वो लोग को बोलना है जे भाई, ये इट्स नॉट ए वन डे कंपटीशन, यू हैव टू टेक इट्स ए लॉन्ग टर्म, डोंट रन बिहाइंड द पैकेज। आप ज्ञान अर्जन करो और होलिस्टिक पर्सन बनने के लिए कोशिश करो, वही हम लोग का सबसे महत्व उद्देश्य है।
0: विज्ञान के इस तकनीकी विकास को जब तक मानवीय संवेदना और सामाजिक जिम्मेदारी का साथ न मिले, वो अधूरा है। जमशेदपुर का प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान XLRI दशकों से देश को ह्यूमन फेस वाला नेतृत्व दे रहा है। इसके निदेशक फादर सेबेस्टियन जॉर्ज SJ कहते हैं, भविष्य उन्हीं का होगा जो ज्ञान के साथ संवेदना भी रखते हों।
2: मैनेजमेंट विद ह्यूमन फेस केवल एक विचार या नारा नहीं है, बल्कि XLRI की एजुकेशन फिलॉसफी का मूल आधार है। हमारा मानना है कि मैनेजमेंट एजुकेशन का उद्देश्य केवल कुशल मैनेजर तैयार करना नहीं, बल्कि ऐसा उत्तरदायी और वैल्यू बेस्ड लीडर्स विकसित करना है सो समाज के लिए प्रति रिस्पॉन्सिबल हो। हमारे करिकुलम में एथिक्स, सस्टेनेबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पब्लिक पॉलिसी और इंक्लूसिव डेवलपमेंट जैसे विषयों को विशेष महत्व दिया जाता है। क्लासरूम के बाहर भी स्टूडेंट्स को रूरल कम्युनिटीज, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस और डेवलपमेंट ओरिएंटेड इनिशिएटिव से जुड़ने का अवसर मिलते हैं। ये अनुभव उनमें एम्पति, सोशल अवेयरनेस को समझने की क्षमता विकसित करती है।
0: विकसित भारत 2047 के विजन को ध्यान में रखते हुए XLRI भविष्य के कॉर्पोरेट लीडर्स को तैयार कर रहा है जो न केवल आर्थिक प्रगति के संवाहक बने, बल्कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के विकास के प्रति भी जवाबदेह हों। कुछ शहर वर्तमान में जीते हैं, कुछ अतीत में, लेकिन जमशेदपुर उन विरले नगरों में है जो इतिहास को साथ लेकर भविष्य की ओर चलता है। आदिवासी लोक धुनों से लेकर वैश्विक उद्योगों तक, यहाँ विविधता किसी उत्सव की तरह प्रतिदिन सांस लेती है। जमशेदपुर की आत्मा केवल उद्योग नहीं, यहाँ की मिट्टी में बसती है आदिवासी संस्कृति। यहाँ के पर्व, यहाँ के गीत, यहाँ की लोक कलाएं और प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान इस भूमि की पहचान है। पद्मश्री चामी मुर्मू ने हजारों महिलाओं को जोड़कर पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तिकरण की ऐसी मिसाल प्रस्तुत की है जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई देती है। झारखंड की धरती को हरा भरा बनाने वाली लेडी टार्जन के रूप में मशहूर पद्मश्री चामी मुर्मू ने लाखों पेड़ लगाकर बंजर धरती को हरी भरी चादर ओढ़ा दी है। आदिवासी समाज में तो जल, जंगल और जमीन को भगवान की तरह पूजा जाता है। आज के इस आधुनिक दौर में जब जंगल सिमट रहे हैं, हमारी आदिवासी विरासत और पर्यावरण के इस गहरे रिश्ते को चामी मुर्मू इस तरह देखती हैं।
3: किसान भी समझने लगा कि हाँ, हम अगर पौधा लगाएंगे तो मेरा भी फायदा होगा। उसके बाद यहाँ जितना भी बंजर भूमि था सब ये में लगाए, हम लोग 17 लाख तक पौधा लगाए। हम लोग कम लिए और अपना क्षेत्र में काम किया, उस वृक्ष मित्र पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो उसमें और जिम्मेवारी लगा, और जोश लगा, तो और लगाने का मन किया। और उसके बाद हम लोग महिला लोग भी जागरूक हो गए, तो उसके बाद हम लोग एसएचजी ग्रुप का काम किया।
0: चामी मुर्मू ने हजारों महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर न केवल उन्हें आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि लकड़ी माफियाओं और अवैध शिकार के खिलाफ खड़े होने का हौसला भी दिया। इस जमीनी बदलाव और महिलाओं के इस संघर्ष की यात्रा को वो बयां करती हैं।
3: बहुत कोशिश किए, बहुत संघर्ष किए, ये करके बाद में हम लोग बंजर भूमि में लगाना शुरू किए। फल दे नहीं दे, लेकिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए अपना परिवार जैसे ही मानते हैं और उसी को ये करके हम अभी तक जिए हैं पौधा के साथ है, और आगे भी करते रहेंगे, लगाते रहेंगे और समाज में सेवा करते रहेंगे।
0: एक सुदूर गांव से राष्ट्रपति भवन तक पद्मश्री सम्मान पाने का चामी मुर्मू का ये सफर देश की करोड़ों ग्रामीण और आदिवासी महिलाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। अपनी आत्मीय आवाज में वो कहती हैं,
3: आज पद्मश्री में पहुंच गए हैं, इसके लिए बहुत बहुत सबको धन्यवाद दूंगी, और आगे जो है वो तो हम पहले से भी बोल रहे करते ही रहूंगी।
0: प्रकृति के इसी जुड़ाव से जब दीवारों पर रंग बोलते हैं, तो वहाँ जन्म लेती है सोहराई कला। सोहराई के रंगों में धरती की मुस्कान है और उन रंगों में छिपी है पीढ़ियों की स्मृति। इस कला को विश्व पटल तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है स्थानीय जनजातीय कलाकार हीरा मांझी। वो कहती हैं, संस्कृति को बचाना केवल अतीत को बचाना नहीं, बल्कि भविष्य को पहचान देना है।
4: सोहराई पेंटिंग प्रकृति से लिया जाता है, उसमें हम लोग जुड़े हुए हैं। हम इंसानों का अस्तित्व पशु पक्षी प्रकृति के बिना अधूरे हैं। आज के जो पीढ़ी है कंप्यूटर मोबाइल के दुनिया में खोए हुए हैं। उनको हम बता रहे हैं जो असली दौलत जल, जंगल और जमीन है। युवाओं को यही सिखाते हैं, कैनवस और दीवार में बना के समझाते हैं। अपनी भाषा को बचाए रखना है, उनको कहानी लिखना, नाटक लिखना सिखा रहे हैं संथाली में। युवाओं को समर्थन मिल रहा है। ये जो लड़ाई है बहुत कठिन है, लेकिन समाज का अगर साथ मिलता है तो आसान हो जाता है।
0: हीरा मांझी की बातें हमारे सांस्कृतिक गौरव को बढ़ाती हैं। उनकी आंखों में सपना है। वो कहती हैं, सोहराई पेंटिंग हमारी परंपरा है, प्रकृति के प्रति हमारा धन्यवाद है।
4: एक और दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीक है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, दूसरी तरफ शाम को नगाड़ और मादर की थाप गूंजती है। यही सही मानव में मिनी इंडिया है, जहां हर राज्य के लोग रहते हैं। बहुरंगी पहचान को जिंदा रखने में हमारी जनजातियां कलाकारों, विचारकों और साहित्यकारों के बहुत बड़ी भूमिका है। हम अपनी कला साहित्य के जरिए इस आधुनिक शहर को उसकी आत्मा से जुड़े रखते हैं। हम याद दिलाते हैं तरक्की की ऊंचाई को छूते हुए जमीन को नहीं भूलना।
0: पर्वतों की चोटियां हो या जीवन की चुनौतियां, विजय उन्हीं को मिलती है जो कदम बढ़ाने का साहस रखते हैं। अगर जमशेदपुर उद्योग का शहर है तो ये खेलों का तीर्थ है। तरक्की और संस्कृति के साथ साथ जमशेदपुर देश की खेल राजधानी भी है। ये वो भूमि है जो युवाओं में साहस का संचार करती है। हिमालय के सर्वोच्च शिखर एवरेस्ट पर विजय पताका फहराने वाली और टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन के माध्यम से देश को साहसी बनाने वाली पद्म भूषण बचेंद्री पाल की बातें रोमांच से भर देती हैं।
5: आज कोई मुझे पूछे कि पहाड़ क्यों चढ़ना चाहिए, जो मुझे लगातार पूछते रहते थे गांव में हर जगह, पढ़े लिखे लोग भी, लेकिन आज हमारे पास जवाब है कि पहाड़ क्यों चढ़ना चाहिए। पहाड़ कौन चढ़ते हैं? जो बहुत साहसिक होते हैं, जो बहुत ब्रेव होते हैं, जिनका आत्मविश्वास बहुत ज्यादा होता है, जो अपने लिए बहुत बड़े जोखिम भरा लक्ष्य निर्धारित करते हैं, क्योंकि जिंदगी में हर जगह ही चुनौती है।
0: रोमांच और खेल इंसान को मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं, जिससे वे जीवन के हर हर ऊंचे शिखर को फतह कर सकें।
5: मुझे बहुत खुशी होता जब हमारे प्रोग्राम में लड़के लोग आते हैं, यूथ लोग आते हैं, जीटी लोग आते हैं, एमटी जाते हैं, रूरल यूथ आते हैं और डरे हुए रहते हैं, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो होता है, उनमें ब्रेवरी नहीं होता है, लेकिन जब वापस जाते हैं पूरा बदल के जाते हैं। तो मैं सोचती हूँ लाइफ जिंदगी सार्थक है, और बार बार यही सोचती हूँ कि एक लाइफ एक जिंदगी बहुत

0: छोटा है बहुत कुछ और भी करने के लिए।
1: साहस की इसी धरती ने विश्व विजेता धनुर्धर पैदा किए हैं, जिन्होंने ओलंपिक तक का सफर तय किया। इस यात्रा में टाटा आर्चरी अकादमी का योगदान अविस्मरणीय है। इसके मुख्य कोच और मेंटर के रूप में अपने अनुभव साझा करते हुए पद्मश्री और द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित पूर्णिमा महतो कहती हैं कि सफल खिलाड़ी केवल प्रतिभा से नहीं अनुशासन और निरंतर अभ्यास से बनता है।
2: दीपिका जैसे कैडेट एंड जूनियर वर्ल्ड चैंपियन है, उसके बाद हमारे ही एकेडमी से कोमोलिका बनी, हमारे ही एकेडमी से कैडेट वर्ल्ड चैंपियन भी बनी और जूनियर भी बनी है, तो ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर निकले हैं। दीपिका एक बहुत बड़ा नाम है हमारे एकेडमी का। दीपिका जब कैडेट वर्ल्ड चैंपियन बनी और पीछे खड़े थे तो बहुत अपने आप को प्राउड फील हुआ। मतलब हम तो एक ये मानते हैं कि अब इंडियन आर्चरी को एक जगह लेके गया है टाटा आर्चरी एकेडमी।
1: धनुष की प्रत्यंचा पर चढ़ा एक तीर केवल लक्ष्य नहीं भेदता, वो सपनों को भी नई उड़ान देता है। फुटबॉल, हॉकी, एथलेटिक्स, पर्वतारोहण, हर खेल में जमशेदपुर ने अपनी पहचान बनाई है। तीरंदाजी के साथ साथ फुटबॉल के क्षेत्र में भी जमशेदपुर को भारतीय फुटबॉल की नर्सरी कहा जाता है। टाटा स्टील के खेल प्रमुख और जमशेदपुर फुटबॉल क्लब के CEO मुकुल चौधरी कहते हैं,
3: इतना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन शायद ही किसी अकेडमी या किसी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन ने किया होगा। करीब करीब 300 बच्चे TFA से ग्रेजुएट हुए, उससे 150 बच्चे नेशनल खेल चुके हैं इंडिया को रिप्रेजेंट किया, उसमें से कुछ 19 अलग अलग एज ग्रुप में कैप्टन हो चुके हैं। बट ये एक एकेडमी करती थी और इनका बेसिकली अगर देखा जाए तो 20 बच्चों को हमेशा लेते थे और क्वालिटी पे हमेशा ध्यान दिया जाता, क्वांटिटी पे नहीं था। कल्याण चौबे है, रणिडी सिंह है, बहुत सारे ऐसे प्लेयर है आज की तारीख में भी जो हर टीम में तीन चार कहीं कहीं मिल जाते हैं। आई थिंक इतना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन शायद ही किसी इंस्टीट्यूशन का होगा। एंड इंडियन फुटबॉल में इसको काफी अच्छी तरह सम्मानित भी किया गया है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने स्पेशल रिकॉग्निशन दिया हमको, टाटा फुटबॉल एकेडमी को, फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन। और ये सब कब हुआ? 1987 में, जब 83 में क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला था। तो हम इसका बड़ा सा श्रेय हमारे लीडरशिप को देते हैं, जिन्होंने इसका बारे में तब सोचा जब क्रिकेट अपने पीक पे था, वर्ल्ड कप जीत चुकी थी और सारा कॉन्सेंट्रेशन क्रिकेट की तरफ था। तभी एक रेसिडेंशियल स्कूल पहली बार, और वो भी जमशेदपुर में शुरू की गई, और पूरे हिंदुस्तान से सबसे बेहतरीन फुटबॉलर्स को यहाँ लाके उनको ट्रेन किया गया। तो आई थिंक बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है TFA का।
1: आज वैश्विक स्तर पर फुटबॉल की तकनीक और गति बहुत बदल चुकी है। 2026 के इस आधुनिक दौर में TFA अपने युवा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए किस तरह आधुनिक तकनीकों, विदेशी एक्सपोजर और वैज्ञानिक ट्रेनिंग से लैस कर रहा है, मुकुल चौधरी बताते हैं।
3: शुरुआत से ही सबसे बेस्ट ट्रेनिंग देने के लिए जाना जाता है। काफी साल पहले TFA शायद पहला इंस्टीट्यूशन जहां वीडियो एनालिसिस शुरू हो गया एकेडमी लेवल पे। उसके बाद हमारे हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, स्पोर्ट्स साइंस सेंटर है, ये सारी चीजें नई हैं जो हम कोशिश कर रहे हैं जिससे बेसिकली बच्चों को इंजरी ना हो। नॉर्मल बच्चों से ज्यादा अपने आप को स्ट्रेच करके मेहनत करनी पड़ती है ग्राउंड पे, और ये फिजिकली डिमांडिंग स्पोर्ट है तो इंजरी काफी कॉमन है। हमारी कोशिश यही रहती है कि इंजरी ना हो, और अगर हो तो उनको जल्दी से जल्दी फिट करके ग्राउंड पे कैसे लेके आए। तो ये इसके लिए हमारा एक स्पोर्ट्स साइंस टीम है जो कि खासकर जमशेदपुर में, काफी कम है हिंदुस्तान में, उसमें से एक जमशेदपुर में सेंटर है। उसके अलावा फॉरेन एक्सपोजर, हर बैच जो हमारे आता है 4 साल के लिए हमारे साथ रहता है, तो एक साल उनको बेसिकली एक महीने के लिए हम यूजुअली फॉरेन एक्सपोजर देते हैं, ताकि उनको बाहर किस लेवल का फुटबॉलर, ज्यादातर ये यूरोप में होता है क्योंकि यूरोपियन फुटबॉल अपने आप में बहुत ही इवॉल्व है, और हम चाहते हैं कि उसी को देखे और वो अपने एक सेल्फ बिलीफ भी बनाए कि आपको भी इस स्तर पे जाके खेलना है। ISL में भी काफी प्लेयर है, इनफैक्ट टीम में ओवरऑल 8 प्लेयर जो हमारे यूथ सिस्टम से निकले हैं। तो एक कोशिश यही है कि हम यूथ को प्रमोट करें, यूथ को एनकरेज करें और उनको बेहतरीन से बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और सपोर्ट दें।
1: हॉकी भारत के दिल में बसती है और जमशेदपुर में नवल टाटा हॉकी अकादमी ने जमीनी स्तर पर काम करके इस खेल को नई ऊर्जा दी है। विशेषकर झारखंड के सुदूर और ग्रामीण इलाकों से आदिवासी प्रतिभाओं को खोजकर उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर चमकाने में अकादमी की अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी के बारे में बता रहे हैं नवल टाटा हॉकी अकादमी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर गुरमीत सिंह राव।
4: हमारे दो बच्चे एट प्रेजेंट नेशनल इंटरनेशनल लेवल पोडियम फिनिश कर चुके हैं, वो भी गोल्ड एशिया कप, और उसी के साथ में एक बच्चा हमारा हाईएस्ट स्कोरर का परफॉर्मेंस उठाता है, तो ये एक हमारा एक एग्जांपल सेट होता है। आशीष तानीपुरती जिसने हैट्रिक भी मारी है सेमीफाइनल्स और फाइनल्स दोनों मैचेस में, और उसी के साथ में उसने हाईएस्ट स्कोरर का भी खिताब उठाया है, तो ये एक एग्जांपल सेट करता है हमारी एकेडमी किस लेवल पे काम कर रही है।
1: योजनाएं भारतीय हॉकी के सुनहरे दौर को वापस लाने की है।
4: हमारे पास एट प्रेजेंट कुछ 54 ग्रासरूट सेंटर्स हैं टोटल, सीनी और टाटा स्टील फाउंडेशन के मिला के, जिसमें अराउंड 4000 बच्चे ट्रेन होते हैं। ये एज ग्रुप है 8 साल से 12 साल के बीच में। इसी से बच्चे कुछ सिलेक्ट होके आते हैं रीजनल डेवलपमेंट

0: सेंटर्स जहाँ पे उनको थोड़ा अच्छा ट्रेनिंग मिलता है, अच्छी किट मिलती है, अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है और टर्फ का एक्सपीरियंस मिलता है। इस आरडीसी लेवल से हम शॉर्टलिस्ट करके नवल टाटा हाई परफॉर्मेंस सेंटर पे लेकर आते हैं। ये एक्चुअली पूरा रोड मैप है हमारा।
1: मैदान में दौड़ते खिलाड़ी सिर्फ पदक नहीं जीतते, वे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा के दीप जलाते हैं। एक शहर को समझने के लिए उसके लोगों की स्मृतियों में उतरना पड़ता है। प्रगति, विज्ञान, खेल, संस्कृति और कला के इन तमाम रंगों को अपने भीतर समेटे ये शहर पिछले 40-50 वर्षों में कैसे बदला, इसकी सबसे खूबसूरत और प्रामाणिक झलक हमें मिलती है टाटा मोटर्स से सेवानिवृत्त और विश्व के 40 देशों में देश का प्रतिनिधित्व कर चुके वयोवृद्ध प्रबुद्ध नागरिक प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रेश्वर खां की बातों से, जो इस शहर को मिनी भारत का सबसे सुंदर विजन मानते हैं।
2: जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं, तो आंखों के सामने एक बिल्कुल अलग जमशेदपुर तैर जाता है। वह सादगी का दौर था, जब सायरन से पूरा शहर अपनी घड़ियां मिलाता था, सड़कों पर साइकिलों का तांता होता था, शाम को साक्षी या विष्णुपुर के बाजारों में थके हारे कर्मचारी एक कप चाय पर दुनिया जहान की बातें करते थे। जीवन की रफ्तार थोड़ी धीमी थी, लेकिन दिलों में आत्मीयता बहुत गहरी थी। शहर का रूप रंग बदला है, लेकिन इसकी आत्मीयता का जो कोर है, जो अंतःस्थल है, वो आज भी वैसा ही महक रहा है, चमक रहा है और आगे बढ़ रहा है। जमशेदपुर में सुबह टाई लगाकर दफ्तर जाने वाला एक एग्जीक्यूटिव शाम को सरहुल या टूसू के अखाड़े में मानदर की थाप पर थिरकता हुआ मिल जाएगा। यहाँ का कॉरपोरेट कल्चर लोक संस्कृति को दबाता नहीं, बल्कि उसे स्पॉन्सर करता है, उसे आगे बढ़ाता है। अब टाटा मोटर या टाटा स्टील अपने परिसरों में जनजातीय कला भाषाओं के लिए बड़े बड़े उत्सव करते हैं, जो एक आम नागरिक को लगता है कि उसकी पहचान सुरक्षित है। दुर्गा पूजा के पंडालों की भव्यता और सोहराय की पेंटिंग का सौंदर्य यहाँ एक ही कैनवास पर बिना किसी टकराव के सह अस्तित्व में रहते हैं। हमारी जड़ें मजबूत है, इसलिए चकाचौंध की इस दुनिया में इस आंधी ने कभी भी हमें हिलाया नहीं है। जमशेदपुर कारीगरी का, दिमागी काम का और हृदय के आंतरिक भावनाओं का अनोखा त्रिवेणी और संगम है।
1: काली माटी से जमशेदपुर और टाटा नगर तक, जंगलों से विज्ञान तक, इस्पात से इंसानियत तक, ये केवल एक शहर की कहानी नहीं, ये आधुनिक भारत की कहानी है। पिघलते लोहे से लिखी जिसने आत्मनिर्भरता की नई इबारत, जहाँ की माटी में बसता है एक मुस्कुराता हुआ लघु भारत। प्रगति की रफ्तार में भी जिसने अपनी जड़ों को संभाला है, वो जमशेदपुर आज पूरे राष्ट्र की आंखों का उजाला है। जमशेदपुर जहां कारखानों की चिमनियों के साथ सपने भी उड़ते हैं, जहां प्रयोगशालाओं में भविष्य आकार लेता है, जहां खेल मैदान में आत्मविश्वास जन्म लेता है, जहां संस्कृति अपने जड़ों से जुड़ी रहती है और जहां विकास का अर्थ केवल प्रगति नहीं बल्कि मानवता भी है। जमशेदपुर एक शहर नहीं, एक विचार है, एक सपना है और उस सपने का नाम है मिनी भारत। उद्योग, विज्ञान, खेल, संस्कृति, शिक्षा और पर्यावरण का ये अनूठा सह अस्तित्व पूरे देश के लिए एक महान प्रेरणा है। तरक्की की ऊंचाइयों को छूते हुए भी अपनी माटी को चूमे रखना ही जमशेदपुर की बहुरंगी पहचान है। इसी जोहार और शुभकामना के साथ कि इस शहर की ऊर्जा पूरे हिंदुस्तान को यूं ही रोशन करती रहे, जोहार जमशेदपुर, जोहार हिंदुस्तान।

आप सुन रहे थे रूपक, स्पात, संस्कृति और सपनों का शहर, जमशेदपुर की बहुरंगी पहचान। वाचन स्वर था तासीर शाहिद का। आलेख शाहिद अनवर का था। प्रस्तुतकर्ता थे राजीव रंजन तिवारी। संयोजक थे राजेश कुमार राय।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आज आपके साथ मैं हूं आपकी दोस्त मीरा शर्मा। स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।

विक्रम वेदा। इस फिल्म का ये गीत आपने सुना, अरमान मलिक की आवाज़ थी, बोल लिखे थे मनोज मुंतशिर ने और संगीत जोसेफ विजय और बी बेलावन ने बनाई थी।

सयोनी। इस फिल्म का ये गीत आपने सुना सचेत टंडन और सुकृति कक्कड़ की आवाजें थी। गीत के बोल सोहेल हैदर और मुकेश सचदेवा ने लिखे थे और संगीत निर्देशन रंगून ने दिया था।

सब चला चली का खेला और ये जीवन दो दिन का मेला। शेरदिल द पीलीभीत सागा, इस फिल्म का ये गीत आपने सुना। नीरज की आवाज थी, बोल पारंपरिक थे और संगीत शांतनु मोइत्रा और नीरज आर्या ने बनाई थी।

मोनाली ठाकुर और शाश्वत सिंह की आवाजों में आपने सुना शाबाश मिठू फिल्म का ये गीत के बोल कौसर मुनीर ने लिखे थे और संगीत था अमित त्रिवेदी का।

0: श्रेया घोषाल की आवाज में आपने सुना साइना फिल्म का ये गीत। बोल लिखे थे मनोज मुंतशिर ने और संगीत अमाल मलिक ने बनाई थी। और श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित समाचार मुख्यांश।
1: पोस्ट का लोकार्पण किया। इस दौरान नवनिर्मित ट्रैफिक पुलिस पोस्ट की चाबी पुलिस पदाधिकारियों को सौंपी गई। बोकारो जिले की पुलिस ने साइबर अपराध को अंजाम देने वाले 2 गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने गिरफ्तार गिरोह के पास से कई सिम कार्ड, मोबाइल सहित अन्य सामान बरामद किए हैं। लोहरदगा जिले के कुड़ू प्रखंड स्थित चीरी पंचायत में कल देर शाम हाथियों ने 2 मकानों को ध्वस्त कर दिया और वहां रखा अनाज भी खा गए। इसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों को दे दी गई है। साहिबगंज जिले में उपायुक्त दीपक दुबे ने जिला अंतर्गत संचालित सर्वजन पेंशन योजना तथा मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों की प्रगति पर चल रहे सत्यापन कार्य की समीक्षा की। उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि 3 दिनों के भीतर सत्यापन कार्य पूरा कर प्रतिवेदन समर्पित करें, ताकि विभागीय निर्देशों के अनुरूप पात्र लाभुकों को पेंशन का भुगतान शीघ्र सुनिश्चित किया जा सके। दामोदर घाटी निगम के 79वें स्थापना दिवस पर कोडरमा थर्मल पावर प्लांट को सर्वश्रेष्ठ उत्पादन स्टेशन और ग्रीन प्लांट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कोलकाता में आयोजित कार्यक्रम में परियोजना प्रमुख संजय कुमार ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। और रामगढ़ जिले के भुरकुंडा थाना क्षेत्र में पुलिस को अवैध हथियार निर्माण के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। पंचायत भवन के पीछे एक घर में संचालित मिनी गन फैक्ट्री का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने हथियार बनाने के उपकरण और अर्धनिर्मित हथियार बरामद किए हैं। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
0: आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित समाचार मुख्यांश अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है हमारे युवा श्रोताओं को संबोधित उनका दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM 102.4 MHz पर आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से युववाणी। मैं हूं आपके साथ रेशमा।
1: और मैं अरुणिमा। और आज का हमारा यह

0: कार्यक्रम ज्ञान, विज्ञान और स्वास्थ्य का एक जबरदस्त संगम है। आज हमारे पास तीन बहुत ही दिलचस्प विषय हैं।
1: बिल्कुल सही। पहले हम चलेंगे झारखंड के गौरव पवित्र तीर्थ स्थल पारसनाथ और समेत शिखर जी की यात्रा पर। उसके बाद बात करेंगे आधुनिक जीवन शैली से बढ़ती एलर्जी की समस्या पर।
0: और आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे फ्यूचर टेक की, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में हम युवाओं के भविष्य की और कौन से नए अवसर हमारा इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह शानदार सफर।

0: दोस्तों, जब भी घूमने फिरने की बात होती है तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में सबसे पहले समुद्र, पहाड़ या ऐतिहासिक किले आते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे अपने झारखंड में भी ऐसी कई जगह हैं जो किसी भी मायने में कम नहीं है।
1: बिल्कुल रेशमा, झारखंड को यूं ही वनों की भूमि नहीं कहा जाता। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, झरने, पहाड़, जंगल और सांस्कृतिक विरासत हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। इन्हीं अनमोल धरोहरों से एक है पारसनाथ पर्वत, जिसे समेत शिखर जी के नाम से भी जाना जाता है।
0: और शायद बहुत से श्रोता यह जानते भी होंगे कि यह झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। गिरिडीह जिले में स्थित यह पर्वत समुद्र तल से लगभग 1365 मीटर की ऊंचाई पर है। लेकिन इसकी पहचान सिर्फ इसकी ऊंचाई से नहीं बल्कि इसकी अत्याधुनिक और सांस्कृतिक विरासत भी है।
1: बिल्कुल, जैन धर्म में इसका विशेष महत्व है। मान्यता है कि 24 में से 20 जैन तीर्थंकरों ने यही निर्वाण प्राप्त किया था। यही कारण है कि इसे जैन समुदाय के सबसे पवित्र तीर्थस्थलों में से गिना जाता है। हर साल देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु यहाँ दर्शन और पद यात्रा के लिए पहुँचते हैं।
0: मैंने पढ़ा था कि ज्यादातर श्रद्धालु मधुबन से अपनी यात्रा शुरू करते हैं और कई किलोमीटर की चढ़ाई पैदल तय करते हुए शिखर तक पहुँचते हैं। यह यात्रा सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि धैर्य, अनुशासन और आत्मविश्वास की भी परीक्षा मानी जाती है। लेकिन अगर कोई धार्मिक यात्रा के उद्देश्य न भी जाए तब भी यह जगह उसे निराश नहीं करेगी। सुबह की ठंडी हवा, बादलों से घिरी पहाड़ियाँ, घने जंगल, पक्षियों की आवाजें और चारों ओर फैली हरियाली, यह सब मिलकर ऐसा वातावरण बनाते हैं जहाँ कुछ पल रुककर बस प्रकृति को महसूस करने का मन करता है।
1: बिल्कुल सही। और आज की ऐसी भागदौड़ भरी जिंदगी में शायद ऐसी ही जगहों की सबसे ज्यादा जरूरत है जहाँ मोबाइल की स्क्रीन से ज्यादा खूबसूरत नज़ारे हों और शोर की जगह सुकून हो।
0: और यही वजह है कि आज पारसनाथ धार्मिक पर्यटन के साथ साथ इको टूरिज्म और नेचर टूरिज्म के लिए भी लोगों की पसंद बनता जा रहा है। यहाँ आने वाले पर्यटक स्थानीय संस्कृति, भोजन और लोगों के जीवन को भी करीब से जानने का अवसर देता है।
1: पर्यटन का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि स्थानीय लोगों का विकास हो। जब पर्यटक आते हैं तो होटल, परिवहन, स्थानीय दुकान और छोटे कारोबारों को भी बढ़ावा मिलता है। यानी पर्यटन सिर्फ घूमने का नहीं बल्कि आजीविका का भी माध्यम है। लेकिन इसके साथ हमारी एक जिम्मेदारी भी जुड़ी है। अगर हम प्लास्टिक कचरा फैलाएंगे, प्राकृतिक संपदा को नुकसान पहुंचाएंगे और धार्मिक स्थलों को गरिमा पे ध्यान नहीं देंगे तो इस धरोहर को नुकसान पहुंचेगा।
0: इसलिए जब भी किसी पर्यटन स्थल पर जाए कोशिश करिए कि वहां से सिर्फ यादें लेकर लौटे, कचरा नहीं छोड़े, क्योंकि प्रकृति जितनी हमारी है उतनी ही आने वाली पीढ़ियों की भी है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने पारसनाथ और सम्मेद शिखर जी की यात्रा नहीं की है तो अवसर मिलने पर एक बार जरूर जाइए। यकीन मानिए, वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, आध्यात्मिक वातावरण और शांत वादियाँ इस यात्रा को हमेशा के लिए यादगार बना देगी। और इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा

0: अभी आपने सुना फिल्म केदारनाथ का गीत काफिराना, जिसे आवाज दिया था अरिजीत सिंह और निकिता गांधी ने। गीतकार थे अमिताभ भट्टाचार्य, संगीतकार अमित त्रिवेदी थे। अरुणिमा, पिछले कुछ वर्षों में आपने भी शायद एक बात गौर की होगी कि पहले एलर्जी की शिकायतें इतनी आम नहीं थी, लेकिन आज लगभग हर घर में कोई ना कोई मिल जाएगा। धूल से एलर्जी है, मौसम बदलते ही छींक शुरू हो जाती है, या कुछ खाने से त्वचा पर रैशेज हो जाते हैं।
1: बिल्कुल, और यह सिर्फ बड़े ही नहीं, बच्चे और युवा भी प्रभावित हो रहे हैं। कभी लगातार छींक आना, कभी आंखों में खुजली, कभी त्वचा पर लाल चकते, तो कभी सांस लेने में तकलीफ। कई बार लोग ऐसे सामान्य समझकर नजरअंदाज भी कर देते हैं।
0: सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या सिर्फ मौसम बदलने से एलर्जी होती है, या हमारी बदलती जीवन शैली भी इसके पीछे एक वजह है?
1: विशेषज्ञों का मानना है कि इसके कई कारण हो सकते हैं। बढ़ता वायु प्रदूषण, धूल और धुआं, कुछ खाद्य पदार्थ और यहाँ तक कि कुछ दवाइयाँ भी एलर्जी का कारण बन सकती हैं।
0: इसके साथ साथ हमारी आधुनिक जीवन शैली भी इस समस्या को कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। देर रात तक जागना, पर्याप्त नींद न लेना, बाहर का ज्यादा प्रोसेस्ड फूड खाना, शारीरिक गतिविधियों में कमी, बढ़ता तनाव और लंबे समय तक एसी या बंद कमरों में रहना, ये सभी बातें हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर असर डाल सकती है।
1: हालांकि यह भी समझने की जरूरत है कि हर एलर्जी का कारण एक जैसा नहीं होता। किसी व्यक्ति को धूल से परेशानी हो सकती है, तो किसी दूसरे को बिल्कुल नहीं। इसीलिए दूसरों की सलाह पर दवा लेने के बजाय हमें सही कारण का पता लगाना ज्यादा जरूरी समझना चाहिए।
0: और सही जानकारी के लिए विशेषज्ञ से बेहतर कौन हो सकता है? आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा है।
2: नमस्कार, मैं नविता कुमारी सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ आयुष्मान आरोग्य मंदिर सुंदरनगर जमशेदपुर में।
3: बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। तो मैम, आप बता सकती हैं कि आजकल जो एलर्जी के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, इसके प्रमुख कारण क्या है?
2: जी बिल्कुल, आज एलर्जी के बढ़ते मामलों का सबसे बड़ा कारण तो प्रदूषण, पर्यावरण में बदलाव और बदलती जीवन शैली को खासकर हम लोग मानते हैं। और क्योंकि और बहुत सारे हैं कि आजकल बहुत सारे निदान भी होने लगे हैं, तो इससे इसके मामले बढ़ गए हैं, क्योंकि हम लोग जल्दी पकड़ पाते हैं। पहले ये पकड़ाता नहीं था, इसलिए आप बोल सकते हैं कि ये जल्दी हम लोग बहुत सारे अवेलेबल हैं, डॉक्टर्स हैं, लोग जाना पसंद कर रहे हैं डॉक्टर के पास, तो वो पकड़ा रहा। और पहले क्या था, लोग घर पे ही रहते थे, तो जल्दी ये पकड़ में नहीं आता था। और बहुत सारे कारण में, जैसे मैंने बताया कि वायु प्रदूषण है, क्लाइमेट चेंज है, अभी देख ही रहे वातावरण में कैसे बदलाव हो रहा है, गर्मी, बारिश में कम बारिश होना, ठंड में कम ठंड आ रही है, तो इससे क्या हो रहा है ना, बहुत सारे सूक्ष्म जीव वगैरह जो है इस सब में ग्रोथ ज्यादा हो रहा है, और जिसकी वजह से भी जो है बहुत सारे एलर्जीज के कारण निकल रहे हैं।
3: मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा मैम आपसे कि आधुनिक जीवन शैली जैसे जंक फूड, पोल्यूशन, तनाव और कम शारीरिक गतिविधि एलर्जी की समस्या को क्या बढ़ा रही है?
2: हाँ, काफी हद तक ऐसा माना जाता है। जैसे जंक फूड हो गया, तो जंक फूड तो हमें सीधा एलर्जी नहीं देती है, लेकिन जंक फूड के कारण क्या होता है ना, हमारे जो गट माइक्रोब है, मतलब कि हमारे जो अच्छी बैक्टीरिया है, उनका प्रतिरक्षा तंत्र को जंक फूड प्रभावित करती है, जिसके कारण जोखिम की मतलब एलर्जी की जोखिम बढ़ सकती है। वायु प्रदूषण जो है, धूल है, धुआं है, रासायनिक प्रदूषक है, ये सब हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती है, और इससे एलर्जी की समस्या और भी गंभीर हो सकती है। स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेस भी हमारे प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यून सिस्टम को कमजोर करती है, और जहां हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर होगा वहां पे हम एलर्जी के शिकार हो सकते हैं। कम शारीरिक गतिविधि में भी हम ये बोल सकते हैं कि नियमित व्यायाम पूरे स्वस्थ और प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए लाभदायक है। अगर हम निष्क्रिय जीवन शैली का उपयोग करेंगे तो इससे भी एलर्जी की समस्या हो सकती है।
3: सबसे आम प्रकार की एलर्जी कौन कौन सी है जिसके मरीज आपके केंद्र में अधिक आते हैं?
2: हाँ बिल्कुल, कुछ सबसे आम कारणों में से एक है एलर्जी, खासकर नाक से जुड़ी हुई, जिसमें अस्थमा जो सांस लेने में दिक्कत पैदा करती है। इसके अलावा त्वचा संबंधी एलर्जी जैसे एक्जिमा भी बहुत देखी जाती है हमारे यहाँ पे। और इसके अलावा ज्यादातर लोग सर्दी, जुकाम, गले में खराश, इन्फेक्शन, सिरदर्द जैसी समस्याओं के साथ मेरे पास आते हैं।
3: किन लक्षणों को लोग सामान्य सर्दी जुकाम समझकर नजरअंदाज नहीं करें?
2: बिल्कुल, ऐसा करना सही नहीं है। एलर्जी के लक्षणों को सामान्य सर्दी जुकाम समझकर बार बार नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों के लक्षण मिलते जुलते हो सकते हैं लेकिन इलाज अलग अलग होता है। देखिए, ध्यान रखने वाली बात यह है कि यदि बार बार छींक आ रही है आपको, नाक से पानी बह रही है, या नाक या आंखों में खुजली या आंखों में पानी आ रहा है और ये कई दिन या कई हफ्तों तक बना रह रहा है, तो ये आपके एलर्जी के लक्षण हो सकते हैं। जैसे इसके साथ यदि हर साल किसी खास मौसम या धूल धूलकण, परागण या पालतू जानवरों के संपर्क में आने से आपको ये सारे लक्षण मिलते हैं, तो ये भी किसी एलर्जी के संभावना अधिक हो जाती है इसमें। और एलर्जी का समय पर इलाज ना करने पर कुछ लोगों में अस्थमा या बार बार साइनस की समस्या विकसित हो सकती है। इसलिए यदि ऐसे लक्षण बार बार आते हैं या लंबे समय तक होते हैं तो आपको अपनी डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए।
3: तो मैम, आप हमारे श्रोताओं को एलर्जी से बचाव के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे?
2: देखिए, ग्रामीण इलाकों में भी एलर्जी के बचाव के लिए स्वास्थ्य शिक्षा बहुत असरदार हो सकती है। हम कुछ सामान्य और व्यवहारिक बातों पर जोर दे सकते हैं, जैसे कि एलर्जी की सबसे पहले पहचान करनी चाहिए। जैसे लोगों को ये समझना चाहिए कि कौन कौन से आम एलर्जन हैं, जैसे धूल, पराग, पालतू जानवरों के बाल और उनसे बचने के तरीके, इन सारे चीज़ों के बारे में उनको बताना चाहिए। घर और आसपास साफ रखें, नियमित रूप से धूल साफ करें, बिस्तर और तकियों को नियमित रूप से धोएं। और इसके साथ साथ खान पान में भी हम लोग मतलब अच्छी खासी चेंजेस ला सकते हैं, जैसे कि जो भी खान पान से एलर्जी बढ़ती है उसके बारे में पता करें और वैसे चीज़ों को ना खाएं, और संतुलित और पौष्टिक आहार पर हमें ध्यान देना चाहिए। और खासकर बच्चे और युवाओं के लिए स्कूलों में स्वास्थ्य कार्यकर्ता के द्वारा ऐसे भी हर माह जाया जाता है और उन्हें हर विषयों पर शिक्षा दी जाती है, स्वास्थ्य शिक्षा दी जाती है, तो खासकर एलर्जी के बारे में भी स्वास्थ्य शिक्षा दी जाए ताकि वो समझे और घर में जाके अपने पेरेंट्स और बड़े बुजुर्ग को भी इस चीज़ के बारे में बताएं और सारे लोगों को जो है ये जो स्वास्थ्य शिक्षा है, मिलकर ये एलर्जी से बचाव कर सकते हैं।
0: तो यह थी हमारी विशेषज्ञ। उनकी बातों से यह समझ आता है कि एलर्जी से घबराने की नहीं बल्कि उसके कारणों को पहचानने और समय पर उचित सलाह लेने की जरूरत है।
4: बिल्कुल, और छोटी छोटी आदतें भी बड़ा बदलाव ला सकती है, जैसे घर और आसपास साफ सफाई रखना, धूल वाले स्थानों पर आवश्यकता पड़ने पर मास्क का उपयोग करना, संतुलित भोजन करना, पर्याप्त पानी पीना, नियमित व्यायाम या योग करना और भरपूर नींद लेना।
0: अगर किसी चीज से आपको पहले भी एलर्जी हो चुकी हो तो उससे बचने की कोशिश करें, और अगर एलर्जी बार बार हो रही है या सांस लेने में तकलीफ, चेहरे या गले में सूजन जैसे गंभीर लक्षण दिखाई दे तो बिना देर किए डॉक्टर से संपर्क करें,
4: क्योंकि आज तेज रफ्तार जिंदगी में अपने काम के लिए समय निकालना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है अपनी सेहत के लिए भी समय निकालना। आखिर स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन ही हमें हर चुनौती का सामना करने की ताकत देते हैं।
5: बदलो बदलो, आदत बदलो।
6: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
5: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: तो दोस्तों, बढ़ती एलर्जी और आधुनिक जीवन शैली पर चर्चा करने के बाद अब वक्त हो गया है आज के हमारे अगले और सबसे खास विषय का, एक ऐसा विषय जो सीधे तौर पर आपके आने वाले कल से जुड़ा है।
0: बिल्कुल सही कहा दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस तकनीक की जिसने पूरी दुनिया की रफ्तार को बदल दी है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
1: नीति आयोग की रिपोर्ट साफ कहती है कि भारत को दुनिया का एआई गैराज बनाया जा सकता है, लेकिन इस डिजिटल क्रांति के बीच हमारे देश के युवाओं का भविष्य कैसा होगा?
0: यह सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि आज बहुत से युवा इस उलझन में हैं कि एआई आने से उनकी नौकरियां खतरे में पड़ जाएंगी। लेकिन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट को देखें तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। यह रिपोर्ट बताती है कि एआई के कारण कुछ पारंपरिक काम भले ही कम होंगे, पर इसके साथ ही लाखों नए और आधुनिक रोजगार पैदा होंगे।
1: यानी बात साफ है, यह दौर नौकरी छीनने का नहीं बल्कि नौकरियों के नए बदलाव का है। नैसकॉम के आंकड़ों के मुताबिक भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा टेक टैलेंट बेस है। अब युवाओं के लिए केवल कोडिंग ही नहीं बल्कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, डेटा साइंटिस्ट, एआई एथिक्स और मशीन लर्निंग जैसे बिल्कुल नए क्षेत्रों के दरवाजे भी खुल गए हैं।
0: और सबसे मजेदार बात जानती हो अरुणिमा, कई युवाओं को लगता है कि अगर वे आर्ट्स, कॉमर्स या किसी नॉन टेक बैकग्राउंड से हैं तो एआई उनके लिए नहीं है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। एआई और उसके टूल्स का हर कोई न केवल व्यवहार कर सकते हैं बल्कि इसके इस्तेमाल से अपनी प्रोडक्टिविटी कई गुणा बना सकते हैं।
1: यानी एआई का रास्ता हर उस युवा के लिए खुला हुआ है जो वक्त के साथ खुद को अपग्रेड करने के लिए तैयार है। जैसे हमारी सरकार भी इस दिशा में काफी कदम उठा रही है। भारत सरकार का नेशनल एआई पोर्टल और डिजिटल इंडिया अभियान के तहत चलाए जा रहे प्रोग्राम जैसे रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ हमारे युवाओं को स्कूल और कॉलेज के स्तर से ही एआई के लिए तैयार कर रही है।
0: बिल्कुल, तो चलते चलते हमारे दोस्तों के लिए सही मंत्र है कि इंटरनेट पर मौजूद मुफ्त कोर्सेज से शुरुआत करें, एआई टूल्स को चलाना सीखें, व्यवहार करें और इसका इस्तेमाल समाज को आधुनिकता के बदलाव की ओर अग्रसर करने के लिए करें।

0: तो दोस्तों, इसी के साथ एआई के अद्भुत दुनिया से रुख करते हैं और चलते हैं वास्तविक दुनिया के हलचलों की ओर। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा आखिरी एवं सबसे महत्वपूर्ण खंड, समसामयिक गतिविधियों, जिसमें हम जानेंगे आज के राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक और खेल जगत के प्रामाणिक और मुख्य खबरों को। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जकार्ता यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार और समुद्री सहयोग बढ़ाने पर हस्ताक्षर हुआ। इंडोनेशिया आधिकारिक तौर पर भारत से ब्राह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और एस्ट्रा MK-1 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल खरीदेगा। प्रधानमंत्री कार्यालय ने देश के एल नीनो के प्रभाव और मॉनसून तैयारियों के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने होमर्स जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर हुए हमलों के जवाब में ईरान पर नए हवाई हमले किए। अंकारा में हो रहे नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान अमरीकी राष्ट्रपति ने तुर्की के साथ रणनीतिक संबंधों की सराहना की।
1: भारतीय विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने मनामा में बहरीन के उप प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर शीर्ष स्तरीय बैठक की। भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम UPI अब इंडोनेशिया में विस्तारित किया जाएगा, जो सीमा पर लेन देन को सुगम बनाएगा। आगामी 14 जुलाई 2026 को देश का पहला मासिक सेवा उत्पादन सूचकांक इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन सांख्यिकी मंत्रालय लॉन्च करेगा। नया ISP इंडिकेटर मुख्य रूप से GST डेटा के आधार पर देश के सेवा क्षेत्र की वास्तविक वृद्धि को मापेगा। देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत ने अपना पहला रणनीतिक LNG रिजर्व बनाने की योजना तैयार कर ली है। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले T20 क्रिकेट श्रृंखला का तीसरा मुकाबला नॉटिंगम में खेला गया, जहां इंग्लैंड ने भारत को 125 रनों से करारी शिकस्त दी। फीफा विश्व कप 2026 के राउंड ऑफ 16 में अर्जेंटीना ने मिस्र को 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। वहीं स्विट्जरलैंड ने कोलंबिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से मात देकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में प्रतिष्ठित दुरंत कप फुटबॉल टूर्नामेंट की आधिकारिक ट्रॉफियों को हरी झंडी दिखाई। इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं आज की हमारी समसामयिक गतिविधियों की ओर। उम्मीद है कि आज की बातें आपको सोचने के लिए नए विचार देंगी। इसी उम्मीद के साथ अब मुझे अरुणिमा
1: और मुझे रेशमा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 MHz पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ। हेलो डॉक्टर।
1: हम आकाशवाणी की जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.4 MHz पर। आइए अब सुनते हैं हमारे श्रमिक बंधुओं का दैनिक कार्यक्रम कल कारखाने।

नमस्कार श्रोताओं, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम कल कारखाने में तहे दिल से स्वागत आप सबका। और आज आप सबके साथ है आपकी वही पुरानी साथी मंजू।

श्रोताओं, आपने भी गौर किया होगा कि बरसात के मौसम में हमारी लाइफस्टाइल एकदम से बदल जाती है। वार्डरोब से रंग बिरंगे छाते और रेनकोट बाहर आ जाते हैं, सड़कों पर भुट्टे के ठेले सज जाते हैं और शाम को दोस्तों के साथ अपने परिवार के साथ चाय पकौड़े के प्लान अचानक बढ़ जाते हैं। यानी ये पूरा सीजन ही खुशियों और गपशप का है। तो चलिए ना अपनी गपशप भी शुरू करते हैं ढेर सारी जानकारियों और मनोरंजन के साथ।

श्रोताओं, आज बुधवार की शाम है जो हम बिल्कुल सामान्य की तरह बिताते हैं, लेकिन जैसे ही शुक्रवार या शनिवार की शाम आती है तो दिल झूमने लगता है वीकेंड को लेकर, है ना। लेकिन सच बताइएगा, अक्सर शनिवार और रविवार कब दबे पांव आकर चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। संडे की रात को जब हम घड़ी देखते हैं तो लगता है कि अभी तो वीकेंड शुरू हुआ था और ये खत्म भी हो गया। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आज हम आपको बताने वाले हैं वो खास बातें जो आपके वीकेंड को सिर्फ टाइम पास नहीं बल्कि सच में एक क्वालिटी और हैप्पी वीकेंड बना देगी। अक्सर हम क्या करते हैं, पूरे सप्ताह के दुनिया भर के पेंडिंग काम वीकेंड के भरोसे छोड़ देते हैं। कपड़े धोना, बैंक के चक्कर लगाना, घर का राशन लाना, साफ सफाई करना, नतीजा क्या होता है, संडे की शाम तक हम ऑफिस से भी ज्यादा थक जाते हैं और मंडे ऑफिस जाने के लिए एनर्जी ही नहीं बचती। तो हमें करना क्या चाहिए, एक छोटा सा नियम बनाइए। घर के छोटे मोटे काम आप सोमवार से शुक्रवार के बीच रोज थोड़ा थोड़ा करके निपटा ले। इससे आपके वीकेंड का कम से कम एक पूरा दिन, चाहे वो शनिवार हो या रविवार, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बचेगा। उस दिन कोई अलार्म नहीं, कोई टारगेट नहीं, सिर्फ आपका अपना सुकून।

श्रोताओं, हम में से बहुत से लोग सोचते हैं कि वीकेंड का मतलब है 12 घंटे सोकर बिताना और पूरे दिन बेड पर पड़े पड़े रील्स स्क्रॉल करना। लेकिन साइंटिफिक रिसर्च कहती है कि पूरे दिन ऐसे पड़े रहने से शरीर की थकान कम नहीं होती, बल्कि सुस्ती और चिड़चिड़ापन और बढ़ जाता है। इसे बदलने के लिए हमें अपनाना होगा एक्टिव रेस्ट। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एक्टिव रेस्ट क्या है, तो इसका मतलब है ऐसा कुछ करना जिससे आपके दिमाग को शांति मिले और शरीर में एक हल्की सी फूर्ती आए। इसके लिए आप अपनी बालकनी में जाकर पौधों को पानी दे सकते हैं, मिट्टी की खुशबू ले सकते हैं, ऐसी कोई किताब पढ़ सकते हैं जो आपको पसंद हो, या फिर खिड़की के पास बैठकर अपना मनपसंद म्यूजिक सुन सकते हैं। ये सिंपल सी एक्टिविटी आपके स्ट्रेस हार्मोन को तेजी से कम करती है और आपको अंदर से फ्रेश महसूस कराती है।

सप्ताह भर हम सोशल मीडिया पर कनेक्टेड रहते हैं, लेकिन असल जिंदगी में अपनों से दूर होते जा रहे हैं। हम एक ही घर में रहकर भी एक दूसरे की शक्ल से ज्यादा अपने फोन की स्क्रीन देखते हैं। इस वीकेंड पर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करिए ना। दिन में कम से कम 2 घंटे के लिए अपने फोन को साइलेंट करके दूसरे कमरे में रख दीजिए। अपने माँ पापा पार्टनर या बच्चों के साथ बैठिए, किसी पुराने दोस्त से मिलिए, साथ बैठकर बिना किसी नोटिफिकेशन के डिस्टरबेंस के चाय की चुस्कियां लीजिए। यकीन मानिए, आमने सामने बैठकर बात करने से, हंसने से जो पॉजिटिव एनर्जी मिलती है ना, वो सोशल मीडिया की लाख रील्स देखने से भी नहीं मिल सकती। तो इस वीकेंड पर जिंदगी की इस रफ्तार को थोड़ा सा धीमा कीजिए। खुद को, अपने शरीर को और अपने दिल को थोड़ा सा वक्त दीजिए। भागना बंद करिए और इस दिन के सफर को खुलकर जी लीजिए, ताकि मंडे आए तो आप पूरी तरह से रिचार्ज और मुस्कुराते हुए उसका स्वागत कर सकें। वैसे आज तो बुधवार है, सप्ताह अभी आधा बाकी है, तो आज अपनी जिंदगी की रफ्तार के साथ इस शाम थोड़ा सा वक्त खुद के लिए निकालते हैं।

0: एलिसा मेंडोंसा और मोहित चौहान की आवाजों में फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इससे ये गाना अभी आप सुन रहे थे। गीतकार थे जावेद अख्तर और संगीत निर्देशन था शंकर एहसान लॉय का।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: FM के 102.4 MHz पर श्रमिक श्रोता सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम कल कारखाने।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं कुछ और खास जानकारियों के साथ। जी हाँ, सूखे की समस्या और समाधान, इस विषय पर आज हमारे साथ जानकारी साझा कर रही है श्वेता। तो आइए सुनते हैं ये जानकारी।
1: मरुस्थलीकरण क्या है? तो आम भाषा में रेगिस्तानीकरण का मतलब है शुष्क, अर्ध शुष्क, आर्द्र वातावरण में भूमि का क्षरण। मानवीय गतिविधियां इसका प्राथमिक कारण है। उसके बाद जलवायु में उतार चढ़ाव आते हैं। इसका मतलब मौजूदा रेगिस्तानों का बढ़ना नहीं है, बल्कि शुष्क भूमि, पारिस्थितिकी तंत्र, वनों की कटाई, अत्यधिक चढ़ाई, खराब सिंचाई पद्धति और भूमि उत्पादन पर अन्य कारकों का प्रभाव है। मरुस्थलीकरण के कारण इस प्रकार हैं। इनमें से मानव निर्मित कारण कुछ इस तरह से हैं। अधिक चढ़ाई, यह भूमि की उपयोगिता, उत्पादकता और जैव विविधता को कम करता है। 2005 और 2015 के बीच भारत ने 31% घास के मैदान खो दिए। वनों की कटाई, वन कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं। वनों की कटाई से ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव में वृद्धि होती है। खेती के तरीके, काटो और जलाओ कृषि पद्धति मिट्टी के कटाव के खतरे को बढ़ाती है। उर्वरकों का अति प्रयोग और अतिवृष्टि मिट्टी की खनिज संरचना को असंतुलित करते हैं। जलवायु परिवर्तन, यह तापमान, वर्षा, सौर विकिरण और हवाओं में स्थानिक और अस्थायी पैटर्न के परिवर्तन के माध्यम से मरुस्थलीकरण को बढ़ा सकता है। प्राकृतिक कारण कई हो सकते हैं, जैसे कि प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, सूखा, भूस्खलन, पानी का क्षरण, उपजाऊ मिट्टी का विस्थापन, पानी का कटाव, हवा का कटाव। हवा द्वारा रेत का अतिक्रमण भूमि की उर्वरता को कम करता है, जिससे भूमि मरुस्थलीकरण के लिए अति संवेदनशील हो जाती है। मरुस्थलीकरण के प्रभाव इस तरह हैं। पर्यावरणीय प्रभाव, वनस्पति का विनाश, जमीन का बंजर होना, मिट्टी का क्षरण, प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि, भूमि निम्नीकरण, जल प्रदूषण, जैव विविधता को नुकसान और प्रजातियों का विलुप्त होना। अब कुछ आर्थिक प्रभाव इस तरह से हैं, जैसे प्राकृतिक जोखिम की घटनाओं में वृद्धि होती है, जैसे बाढ़, भूस्खलन, कृषि उत्पादकता को खतरा है। पुनरावृत्ति प्रभाव गरीबी को बढ़ाते हैं, अर्थव्यवस्था की कुल उत्पादकता घट जाती है। सामाजिक प्रभाव भी कुछ इस तरह से हैं, जैसे अकाल, गरीबी, सामाजिक संघर्षों की स्थिति, सामूहिक पलायन यानी पर्यावरण प्रवासन। खाद्य सुरक्षा के मुद्दे, भारत में मरुस्थलीकरण की स्थिति कुछ इस तरह से हैं। भारत का करीब 96 मिलियन हेक्टेयर या 29% क्षेत्र मरुस्थल में परिवर्तित हो रहा है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बेट डेजर्टिफिकेशन UNCCD में प्रस्तुत सरकार के आंकड़ों के अनुसार भारत ने एक दशक में घास के क्षेत्र का 31% या 5.65 मिलियन हेक्टेयर हिस्सा खो दिया है। भारत में 2003 से 2005 और 2011 से 2013 के बीच 29 में से 26 राज्यों में मरुस्थलीकरण के स्तर में वृद्धि देखी गई है। देश में 80% से अधिक क्षरण की स्थिति सिर्फ 9 राज्यों में है। भारत द्वारा मरुस्थलीकरण पर अंकुश लगाने के कई उपाय किए गए हैं। इनमें से कुछ इस प्रमुख कारण को बताते हैं, जैसे कमांड एरिया डेवलपमेंट, सिंचाई में सुधार और कुशल जल प्रबंधन के माध्यम से कृषि उत्पादन के अनुकूलन के लिए इसे 1974 में लॉन्च किया गया था। जल संसाधन मंत्रालय द्वारा संबंधित राज्य सरकारों के साथ कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जाता है। एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम, इसे 1989-90 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सृजन के द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और विकास करके पारिस्थितिक संतुलन को बहाल करना है। इसे 2003 में हरियाली दिशा निर्देश के रूप में नामित किया गया था। अब इसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अधीन रखा गया है, जिसे नीति आयोग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, यह 1995 में सूखे के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने और चिन्हित किए गए रेगिस्तानी क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधन आधार को फिर से जीवंत करने के लिए शुरू किया गया था। यह राजस्थान, गुजरात, हरियाणा के गर्म रेगिस्तानी क्षेत्रों और जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश के ठंडे रेगिस्तान क्षेत्रों के लिए शुरू किया गया था। इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। भारत 1994 में संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बेट डेजर्टिफिकेशन UNCCD का हस्ताक्षरकर्ता बन गया और 1996 में इसकी पुष्टि की गई। नदी घाटी परियोजनाओं और बाढ़ प्रवण नदियों से मिट्टी का संरक्षण, दोनों परियोजनाओं को वर्ष 2000 में जोड़ा गया तथा लागू किया गया। इस योजना का उद्देश्य क्षारीय मिट्टी की भौतिक स्थितियों और उत्पादकता की स्थिति में सुधार करना है ताकि अधिकतम फसल उत्पादन किया जा सके। इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम, यह निम्नीकृत वन भूमि के वनीकरण के लिए वर्ष 2000 से लागू किया गया है। इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। नेशनल एक्शन प्रोग्राम टू कॉम्बेट डेजर्टिफिकेशन, इसे 2001 में मरुस्थलीकरण से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए तैयार किया गया था। चारा और चारा विकास योजना, इसे 2010 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य निम्नीकृत घास के मैदानों में सुधार करना है। इसे मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। ग्रीन इंडिया पर राष्ट्रीय मिशन, यह जलवायु परिवर्तन का राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC का एक हिस्सा है। इसे 2014 में 10 वर्षों की समय सीमा के साथ भारत के घटते जंगलों के संरक्षण, पुनर्स्थापन और वृद्धि के उद्देश्य से अनुमोदित किया गया था। इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इसे इसरो ने 2016 में जारी किया था। इसका उद्देश्य मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण का मुकाबला करना है। मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए वैश्विक प्रयासों में से कुछ महत्वपूर्ण हैं, जिसमें सबसे पहले है बॉन चैलेंज। बॉन चुनौती एक वैश्विक प्रयास है। इसके तहत दुनिया के 150 मिलियन हेक्टेयर गैर वनीकृत एवं बंजर भूमि पर वर्ष 2020 तक और 350 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर वर्ष 2030 तक वनस्पतियां उगाई जाएंगी। अगला है सतत विकास लक्ष्य 15। यह घोषणा करता है कि हम टिकाऊ खपत और उत्पादन के माध्यम से ग्रह को निम्नीकरण से बचाने के लिए दृढ़ है। उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बेट डेजर्टिफिकेशन, जिसको हम लोग UNCCD भी कहते हैं। इसे 1994 में स्थापित किया गया था, जो पर्यावरण और विकास को अस्थायी भूमि प्रबंधन से जोड़ने वाला एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। अंत में हम लोग इसके निवारणों पर बात करें तो वनीकरण को प्रोत्साहित करना चाहिए, कृषि में रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए, फसल चक्र को प्रभावी रूप से अपनाना चाहिए और आगे देख सकते हैं कि जैसे कि सिंचाई के नवीन और वैज्ञानिक तरीकों को अपनाना चाहिए, जैसे बूंद बूंद सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई आदि। मरुस्थलीकरण के बारे में जागरूकता को भी बढ़ाना चाहिए। अवैध खनन गतिविधियों पर रोक एवं कॉरपोरेट कंपनियों को कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत वृक्षारोपण का कार्य सौंपा जाना चाहिए। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को स्थिर करने, वन्य जीव प्रजातियों को बचाने और समस्त मानव जाति की रक्षा के लिए मरुस्थलीकरण को समाप्त करना होगा। जंगल की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है और दुनिया भर के लोगों और सरकारों को इसे निभाना चाहिए।
0: सूखे की समस्या और समाधान, इस विषय पर हमारे साथ जानकारी साझा कर रही थी श्वेता। बता दें कि इस जानकारी का पुनः प्रसारण अभी आप सुन रहे थे। श्रोताओं, घर की रौनक किससे होती है? आंगन में चहकती वो नन्ही सी चिड़िया, वो मासूम सी मुस्कान, यानी घर की बेटियां, और इन्हीं बेटियों के कल को सुरक्षित और उज्जवल बनाने के लिए देश में एक महाअभियान चल रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये योजना तीन खास स्तंभों पर टिकी है, जिसमें पहला है जीवन का अधिकार। कोई भी समाज तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक वो अपनी बेटियों को जन्म लेने का हक ना दे। ये योजना कन्या भ्रूण हत्या जैसी भयानक सोच पर कड़ा प्रहार करती है और लिंगानुपात को सुधारती है। सुरक्षा और स्वास्थ्य

इस योजना का दूसरा स्तंभ है। जी हाँ, जन्म के बाद बेटी को लड़कों की तरह ही पूरा पोषण, बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं और एक सुरक्षित माहौल मिले, ये इस योजना की प्राथमिकता है। इस योजना का तीसरा स्तंभ है शिक्षा का उजाला। बेटी सिर्फ स्कूल की दहलीज पर कदम ना रखे, बल्कि पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो, उसे उच्च शिक्षा मिले ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके।

श्रोताओं, सच कहा जाए तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सबकी सोच बदलने का एक आंदोलन है। आज हम इन योजनाओं से बेटियों का भविष्य सुरक्षित करते हैं। जब हम उन्हें खेलों में मेडल लाते देखते हैं या उन्हें देश की सरहद पर तैनात देखते हैं तो दिल गर्व से भर जाता है। हाँ, एक बात हमेशा याद रखिएगा, बेटा अगर एक कुल का नाम रोशन करता है तो बेटी दो दो कुलों को शिक्षा और संस्कारों से महकाती है। तो बेटियों को पंख दीजिए, हौसला दीजिए, फिर देखिए वो आसमान छूकर दिखाएगी।

मजरू सुल्तानपुरी की शब्द रचना फिल्म खामोशी से कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे। संगीतकार थे जतिन ललित और श्रमिक श्रोताओं इसी गाने के साथ अब वक्त चला है कार्यक्रम कल कारखाने के आज के अंक को यहीं संपन्न करने का। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मंजू को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: श्रमिक बंधुओं का दैनिक कार्यक्रम कल कारखाने अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर शाम के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबनन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा भी लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने यह विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत हो जाएंगे।
2: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
1: इस अवसर पर राष्ट्रपति प्रोबोवो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गए हैं। तीन देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के दूसरे चरण में श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया में प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा अल खालिद अल सबा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र में हो रहे घटनाक्रम पर अपने विचार साझा किए। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में अच्छी वर्षा हुई है। इससे वर्षा की कमी वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर अब 178 रह गई है। नई दिल्ली में अलनीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए आयोजित उच्च स्तरीय बैठक की श्री चौहान ने कहा कि जून में 33% वर्षा की कमी दर्ज की गई थी, लेकिन जुलाई में ये घटकर 24% रह गई है। गृहमंत्री अमित शाह ने तेज बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। श्री शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन से बात की। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ इस महीने की 15 तारीख तक लगभग 34 करोड़ ईपीएफओ खातों में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज जमा करने का काम पूरा कर लेगा। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि नई केंद्रीकृत आईटी सक्षम सेवा प्रणाली के माध्यम से ग्राहकों के खातों में 1,44,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा कर दी जाएगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने 19 सीटों वाले सारस MK2 के डिजाइन को सफलतापूर्वक पूरा करने पर राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशालाओं को बधाई दी है। श्री नायडू ने कहा कि सारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को आगे बढ़ाता है और देश का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया हल्का परिवहन विमान है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने बताया कि अब तक देश भर के 23 करोड़ से ज्यादा लोग नशा मुक्त भारत अभियान से जुड़ चुके हैं। इनमें 7,81,00,000 से अधिक युवा, 5,24,00,000 महिलाएं और 17,00,000 से अधिक शैक्षणिक संस्थान भी शामिल हैं। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 1,677 अंक गिरकर 76,504 पर बंद हुआ। निफ्टी 517 अंक की गिरावट के साथ 23,882 पर दर्ज हुआ। तेलंगाना 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देशभर में जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने के दृष्टिकोण से प्रेरित है। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi is en route to Australia after concluding his three-day successful visit to Indonesia. During his three-day visit to Australia, Mr. Modi will participate in the third India-Australia annual summit with his counterpart Anthony Albanese in Melbourne. Discussion between the two leaders will cover cooperation in areas including critical minerals, the cybersecurity domain, supply chain resilience, emerging technologies and others. Prime Minister Modi will also participate in the India-Australia CEOs Forum, where he will address a gathering of top business leaders from both countries. Earlier in the day, Prime Minister Modi visited the UNESCO World Heritage Site of Prambanan Temple in Yogyakarta, along with Indonesian President Prabowo Subianto. The two leaders toured the 9th century temple complex, with Prime Minister Modi offering prayers at the main Shiva temple. In a joint press statement at the temple premises, President Prabowo said Prambanan stands as a symbol of the centuries-old civilizational bond between India and Indonesia. He thanked India for its support towards the conservation and restoration of the temple complex. Speaking on the occasion, Prime Minister Modi described the visit as a deeply spiritual and memorable experience.
2: Yogyakarta ke is bhavya mandir complex ab jab hum punarnirman ka kaam karne ja rahe hain aur ye UNESCO ka world heritage hai, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
3: Yesterday, the two leaders held delegation-level talks in Jakarta to strengthen cooperation in defense, security, maritime and other sectors. Prime Minister Modi also addressed the joint session of the Indonesian Parliament and the Indian community in Jakarta. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar today called on Crown Prince Sheikh Sabah Al Khalid Al Sabah of Kuwait. In a social media post, the minister shared that he conveyed the greetings of Prime Minister Narendra Modi to the Crown Prince. Dr. Jayashankar appreciated the Crown Prince's commitment to take forward the bilateral cooperation of India and Kuwait. The minister also thanked him for his sharing of perspectives on developments in the Gulf. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan today said several parts of the country have received good rainfall in recent days, reducing the number of rainfall deficient districts from 262 to 178. The minister said this while chairing a high-level review meeting in New Delhi over the possible impact of El Nino. He said that after recording a 33% rainfall deficit in June, the monsoon situation has shown improvement in July, with the overall deficit narrowing to 24%. Union Home Minister Amit Shah today spoke to the chief ministers of several states affected by heavy rainfall, flood-like situation and landslides, and assured them of all possible assistance from the centre. Mr. Shah spoke to Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis, Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel and Kerala Chief Minister V.D. Satheesan. Meanwhile, the

श्रोताओ, झारखंड के लोकगीतों के कार्यक्रम में आज आपके साथ हूँ मैं अनुपमा। नमस्कार, आइए सुनते हैं थॉमस बाजराय और साथी के स्वर में ये मुंडारी लोकगीत।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे थॉमस वाजराय और साथी के स्वर में मुंडारी लोकगीत। इसी के साथ ही झारखंड की लोकगीतों का कार्यक्रम यही संपन्न होता है।
1: कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:20 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित संस्कृत में समाचार।
2: इयम् आकाशवाणी। संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधिः झा। आदौ मुख्याः वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः इण्डोनेशिया देशस्य योग्यकर्ता नगरे यूनेस्को वैश्विक सांस्कृतिक अभिलेख स्थलस्य प्रम्बानन मन्दिरस्य ऐतिहासिकं भ्रमणम्। प्रतिपादितं यत् मन्दिरस्य संरक्षणे भारतस्य सहभागिता द्वयोः देशयोः सांस्कृतिक न्यासं प्रकटीकरोति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः जलाप्लावितेन प्रभावितानां राज्यानां मुख्यमन्त्रिभिः साकं दूरभाषेण सम्भाषणं विधाय केन्द्रसर्वकारपक्षतः सम्भाव्य सर्वविध साहाय्यस्य आश्वासनम् अयच्छत्। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागानुसारं देशस्य मध्य पूर्वीय भागेषु अतिवृष्टेः मेघगर्जनस्य च सम्भावना वर्तते। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प उदघोषयत् यत् ईरान देशेन साकं युद्धविरामाय कृतं सन्धिज्ञापनं सम्प्रति समाप्तिपदम् एति। वैश्विक भूराजनैतिक चिन्तन प्रभावात् भारतीय शेयर विपणौ भीषणः ह्रासः। सेंसेक्स निफ्टी सूचकांकौ 250 अपचितिः दृश्यते। अपि च फीफा विश्वकप पादकन्दुक प्रतिस्पर्धायां स्विट्जरलैंड दलेन कोलंबिया दलं पराभूय प्रागुपान्त्य चरणे अर्जेंटीना दलेन सह क्रीडा सुनिश्चिता कृता। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य इण्डोनेशिया देशस्य योग्यकर्ता नगरे संस्थिते यूनेस्को विश्व न्यास स्थले प्रम्बानन मन्दिर परिसरे इण्डोनेशिया राष्ट्रपतिना प्रबोवो सुबियान्तो इत्यमुना साकं भ्रमणम् अकरोत्। तत्र पारम्परिक गैमेलिन संगीत ध्वनिभिः शास्त्रीय नृत्यैश्च प्रधानमन्त्रिणः अभूतपूर्वम् अभिनन्दनं विहितम्। नवमशताब्द्याः अस्य मन्दिर परिसरस्य अवलोकनावसरे प्रधानमन्त्रिणा मुख्य शिव मन्दिरे विशेष पूजार्चना कृता। सहैव भारत इण्डोनेशिया देशयोः सहयोगेन मन्दिरस्य संरक्षण प्रयासाः दृष्टाः। एकस्मिन् संयुक्त वक्तव्ये राष्ट्रपतिना प्रबोवो इत्यमुना प्रतिपादितं यत् प्रम्बानन मन्दिरं भारत इण्डोनेशिया देशयोः शतशः वर्षाणां प्राचीन सभ्यतायाः प्रतीकभूतं वर्तते। मन्दिरस्य पुनरुद्धाराय च तेन भारताय कार्तज्ञम् आविष्कृतम्। अत्रावसरे प्रधानमन्त्रिणा निगदितं यदियं यात्रा अतीव आध्यात्मिकी अविस्मरणीया च अजायत। द्वादशशताब्देः अस्य न्यासस्य संरक्षणाय श्रीमोदी इण्डोनेशिया जनेभ्यः धन्यवादं विज्ञापितवान्।
3: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज

0: दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
1: जकार्तायाम द्विपक्षीय वार्तानंतरम प्रेषिते संयुक्ते घोषणापत्रे भारत इंडोनेशिया देशाभ्याम सर्वविध आतंकवादस्य तीव्रा निंदा विहिता। द्वयोर देशयोः नेतृभ्याम् अन्ताराष्ट्रिय नियमानुसारेण आतंकवादस्य सम्मुखं दृढ वैश्विक प्रयासस्य आह्वानं विहितम्। उभाभ्याम् प्रमुखाभ्याम् वैश्विक स्तरे प्रतिबंधितानां आतंकवादिनां संघटनानां च विरुद्धं कठोर कार्याचरणाय बलं प्रदत्तम्। उग्रवाद विरोधी सहयोगं च दृढीकर्तुं सहमतिः प्रकटिता। स्वस्य त्रिदेशीय प्रवासस्य द्वितीय चरणे प्रधानमंत्री अद्यैव त्रीणि दिनानि यावत् ऑस्ट्रेलिया देशस्य मेलबर्न नगरं प्राप्स्यति। तत्र सः ऑस्ट्रेलिया प्रधानमन्त्रिणा एंथनी अल्बनीज इत्यनेन साकं तृतीय भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलने भागं ग्रहीष्यति। अनेन साकमेव सः भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम इत्यस्मिन् उभय देशस्य शीर्ष उद्योगपतीन् तथा च मेलबर्न नगरे प्रवासी भारतीय सभां च संबोधयिष्यति। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह अद्य अतिवृष्ट्या जलौघ सदृश परिस्थित्या सहैव भूस्खलनेन प्रभावितानां संकटग्रस्तानां अनेकेषां राज्यानां मुख्यमंत्रिभिः साकं दूरभाषेन संभाषणं विहितवान्। तेभ्यः केन्द्र सर्वकारस्य पक्षतः संभाव्य सर्वविध साहाय्यस्य दृढ़ाश्वासनं च असौ अयच्छत्। श्रीशाहेन महाराष्ट्र राज्ये भीषण अतिवृष्ट्याः जलप्लावनस्य च स्थितेः समीक्षां कर्तुं महाराष्ट्रस्य मुख्यमंत्रिणा देवेन्द्र फडणवीसेन सह विशेष चर्चा अकारी। संवादावधौ गृहमन्त्रिणा मुख्यमन्त्रिणं प्रति संकटकाले महाराष्ट्र सर्वकारस्य सहयोगार्थं केन्द्रीय प्रशासनात् सर्वविध साहाय्य प्रदानस्य प्रतिश्रुतिः अभिव्यक्ता। अनेन सहैव गृहमन्त्रिणा गुजरात राज्ये अतिवृष्ट्या जल अवरोध स्थिति सन्दर्भे गुजरातस्य मुख्यमन्त्रिणा भूपेन्द्र पटेलेन साकमपि मन्त्रणा कृता। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य देशस्य मध्यम एवं पूर्वीय भागेषु अतिवृष्टेः मेघगर्जनस्य च कृते ऑरेंज अलर्ट इति नारंगवर्णीया संचेतना प्रसारिता। अनेन सहैव ऋतु विभागेन जम्मू कश्मीर लद्दाख हरियाणा चंडीगढ़ हिमाचल प्रदेशेषु अपि अतिवृष्टेः पूर्वानुमानं विहितम्। विभागेनानेन संसूचितं यत् आगामिषु द्वित्रि दिनेषु प्रावृट उत्तर अरब सागरस्य अवशिष्टेषु क्षेत्रेषु तथा च राजस्थान हरियाणा पंजाब प्रान्तानां शिष्टेषु भूभागेषु अग्रे प्रवर्धमानः सन् सम्पूर्णे देशे पूर्णतः व्याप्तो भविष्यति। अमेरिका राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्पः उदघोषयत् यत् ईरान देशेन सह सैन्य संघर्षं निर्वापयितुं हस्ताक्षरितं सन्धिज्ञापनं सम्प्रति समाप्तिपदं सम्प्राप्तो विद्यते। तेन अग्रे प्रतिपादितं यत् अमेरिका सम्प्रति तेहरान प्रशासनेन सह संभाषणं कर्तुं नैव वांछति। राष्ट्रपतिः ट्रम्पस्य इदं वक्तव्यं तुर्की देशस्य राजधान्याम् अंकारा नगरे आयोजिते नाटो शिखर सम्मेलनस्य वार्ताहर सम्मेलने आगतम्। एषः घटनाक्रमः होर्मुज़जलपोते त्रिषु तैलग्राहकपोतेषु अस्त्रप्रहारेण संजातस्य विवादस्य पश्चात् अमेरिका ईरान देशयोः मध्ये प्रवृत्तस्य प्रत्यक्ष सैन्याक्रमणस्य परिणामो वर्तते। यद्यपि ईरानेन अस्य आक्रमणस्य उत्तरदायित्वं प्रत्यक्षतया नैव अंगीकृतम्। अद्य भारतीय शेयर विपणौ महती विक्रय प्रतिस्पर्धा दृष्टा। यस्य प्रभावात् सेंसेक्स निफ्टी इत्येतौ उभावपि प्रमुख सूचकांकौ 100%

0: सार्धद्विप्रतिशतात्मिका अपचितिः अभवत्। जम्मू कश्मीर प्रशासनेनाद्य श्री अमरनाथजी यात्रामुद्दिश्य एका नवीना निर्देशिका प्रसारिता, यस्यां सर्वैः तीर्थयात्रिभिः पञ्जीकरण प्रक्रियायाः अथ सुरक्षा मार्गदर्शिकानां निष्ठापूर्वकं दृढतापूर्वकं च पालनं कर्तुं समादिष्टम्। आकाशवाण्याः जम्मू वार्ताहरैः विज्ञापितं यत् सर्वोच्च न्यायालयस्य निर्देशानुसारं निर्धारिता यात्रिणां प्रतिदिनस्य संख्या सीमा सम्प्रत्यपि पूर्णतो प्रवृत्ता वर्तते। श्रद्धालवः परामृष्टाः यत् यात्रा प्रारम्भात् पूर्वमेव अग्रिम पञ्जीकरणं करणीयम्, अथ अनुमतिपत्रे उल्लिखिते दिनांके एव यात्रा आरम्भणीया। प्रशासनेन स्पष्टीकृतं यत् अनुपदमेव पञ्जीकरणस्य सुविधा अत्यन्तं सीमितसंख्यासु एव उपलब्धा वर्तते। फीफा विश्वकप फुटबॉल प्रतिस्पर्धायां फ्रांस, मोरक्को, नॉर्वे, इंग्लैंड, स्पेन, बेल्जियम, अर्जेंटीना, स्विट्जरलैंड देशैः राउंड ऑफ 16 इत्याख्ये द्वन्द्वे विजित्य अन्तिमाष्टमेषु स्वस्थानं सुरक्षितम्। शुक्रवासरे तावत् प्रथमे प्रागुपान्त्यचक्रे रात्रौ सार्धैकवादने फ्रांस देशस्य स्पर्धा मोरक्को देशेन सह भविष्यति। इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से प्रसारित संस्कृत में समाचार अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:30 हुए हैं। आज दिन बुधवार है। कार्यक्रम कृषि जगत के तहत आज सुनिए ग्रामीण महिलाओं का साप्ताहिक कार्यक्रम घर गृहस्थी।

कार्यक्रम घर गृहस्थी सुनने वाली सभी बहनों को अनुपमा का जोहार। हम उपस्थित हैं आपके पसंद के कार्यक्रमों के साथ। बहनों, मानसून की झमाझम बारिश किसी का भी मन मोह लेने के लिए काफी है। इसी कारण बच्चे गर्मी के बाद चलने वाली ठंडी हवाओं के बीच भीगने में कोई कसर नहीं छोड़ते। बारिश के बीच खेलना कूदना उनके मन को आनंदित कर देता है। लेकिन बहनों, बेशक ये मौसम काफी सुहावना होता है, पर इस मौसम में सेहत का ख्याल रखना बेहद जरूरी भी होता है, खास तौर पर बच्चों का, क्योंकि इस मौसम में सबसे अधिक संक्रमण और बीमारियां के पनपने का खतरा बना रहता है। खासकर बच्चों के बीमार होने का रिस्क अधिक होता है, इसलिए बहनों उन्हें हेल्दी रखने के लिए जरूरी डाइट टिप्स जरूर प्लान करने चाहिए, ताकि बच्चों को सर्दी, खांसी, फ्लू, डायरिया और पेट की समस्याओं से दूर रखा जा सके। इसके लिए तो बहनों सबसे पहले ठेलों और रेहड़ियों पर बिकने वाले चाट समोसे, बर्फ के गोले, गोलगप्पे को ना खाने दें, क्योंकि इनमें पोषण की मात्रा बहुत ही कम और तेल मसालों की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसलिए ये बच्चों तो क्या, बड़ों के लिए भी काफी नुकसानदायक होता है। इसी तरह से बहनों, आमतौर पर गांव में लोग रात का बचा हुआ खाना खुद भी खाते हैं और बच्चों को भी खिलाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, खासकर बच्चों के साथ। बारिश के मौसम में बच्चों के लिए संतुलित और स्वच्छ आहार का होना बेहद जरूरी होता है। सुबह की शुरुआत गर्म और पौष्टिक आहार से करें। इसके लिए गेहूं की दलिया, ओट्स या गर्म दूध के साथ चिवड़ा भी आप दे सकती हैं। इडली, सांभर या उबले हुए अंडे बच्चों के पसंद के अनुसार उन्हें दें। इसी तरह से बहनों, बरसात में के मौसम में अधिक फल सब्जियां खरीदकर कई दिनों तक उन्हें स्टोर करने के बजाय उन्हें उतनी मात्रा में खरीदें जितना की आपको जरूरत हो।

और साथ ही उन्हें अच्छी तरह से धोकर बच्चों को खाने को दे। बच्चों की हड्डियों और दांतों के विकास के लिए दिन में कम से कम 2 बार दूध या दही या पनीर जरूर शामिल करें। दिन भर में उन्हें पर्याप्त पानी पिलाएं। बिस्कुट, केक और मैदे वाली चीजों से उन्हें दूर रखें। दोपहर के खाने में उन्हें 2 रोटी या घी लगी हुई, सादी दाल, सूखी मौसमी सब्जी और घर का बना हुआ ताजा दही हो तो उन्हें जरूर खाने को दें। शाम में भुजा आदि दे सकती हैं। रात के खाने में पचने वाला भोजन और दूध उन्हें जरूर दें। तो बहनों, इस तरह से बच्चों का खाने का ख्याल इस मौसम में रखकर आप अपने परिवार और बच्चों को सेहत का विकास कर सकते हैं।

0: घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

बहनों, बरसात का मौसम जहाँ ताजगी और ठंडक देता है, वहीं ये कई बीमारियों का खतरा भी बढ़ा देता है। पानी का ठहराव, नमी और मच्छरों की तेजी से वृद्धि ऐसे हालात पैदा करते हैं जिससे डेंगू और मलेरिया सबसे आम और खतरनाक बीमारियों में से एक बन जाता है, क्योंकि मच्छर गर्म और नमी वाले जगहों पर पनपते हैं, जैसे कंटेनर, गमले, फेंके हुए टायर, कूलर, पानी की टंकियों पर जमा होने वाले बारिश का पानी मच्छरों की पनपने के लिए अच्छी जगह बन जाता है।

बहनों, डेंगू की बातें करें तो डेंगू एक वायरस से होता है जो मुख्य रूप से एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। आमतौर पर दिन में काटता है। दूसरी ओर मलेरिया प्लास्मोडियम पैरासाइट से होता है और इन्फेक्टेड एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। ये मच्छर आमतौर पर शाम से सुबह तक सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं। बहनों, इन मच्छरों के लार्वा के बड़े होने में सिर्फ 5 से 7 दिन लगते हैं, इसलिए हर हफ्ते जमा पानी को साफ करना सबसे प्रभावी उपाय है। ऐसी स्थिति में घर के आसपास उन जगहों की जांच करें जहां की पानी जमा होता है। जैसा कि मैंने कहा, वाटर कूलर, गमलों की ट्रे, बाल्टियां, पक्षियों के लिए पानी के बर्तन, इस्तेमाल न होने वाले बर्तन, टायर और घरों की छत पर पानी जमा होने वाले स्थान, तो इन स्थानों पर पानी का जमा बिल्कुल ना होने दें। हमेशा इनकी सफाई करते रहें। खिड़कियों दरवाजों पर जाली लगाए, पूरी बाह वाली कपड़े पहने और आसपास पानी जमा ना होने दें और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करते रहें। मवेशियों के रहने के स्थान भी साफ सुथरे रखें, नियमित सफाई करें। शाम में

पर अब बहनों आइए डॉक्टर मनोज कुमार जी से जानकारी प्राप्त करते हैं वायरल फीवर लक्षण कारण और बचाव के बारे में। इनसे बातचीत कर रहे हैं संजीव मेहता।

0: जो होम्योपैथिक चिकित्सक हैं, ये आज हमें वायरल फीवर कारण एवं बचाव संबंधी बातों पर विशेष रूप से जानकारी देंगे। आपके बचाव के लिए आप क्या सावधानियां बरत सकते हैं? डॉक्टर साहब, स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार।
1: धन्यवाद
0: डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो आप हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि वायरल फीवर क्या है और इसके लक्षण क्या क्या हैं, इसकी पहचान हम कैसे करें?
1: अच्छा, ये इसको इन्फ्लुएंजा के नाम से भी लोग जानते हैं
0: जी,
1: ये वायरल फीवर को। और मुख्य रूप से इस बीमारी से बचने का उपाय आम लोगों को करना चाहिए
0: जी।
1: इसके होने के कई कारण हो सकते हैं
0: जी,
1: और कई सावधानी पूर्वक भी इससे बचा जा सकता है। होने के जो कारण है, मुख्य रूप से बरसात के दिनों में
0: जी,
1: जो प्रदूषित जल का व्यवहार हम करते हैं
0: जी,
1: और नित्य उपयोगी जो वस्तु करते हैं हम लोग
0: जी,
1: जो भोजन करते हैं
0: जी,
1: तो लोग जिस तरह 365 दिन करते हैं
0: जी,
1: तो जो एक सीजन होता है बरसात के मौसम में, खास पर वो वातावरण भी इस प्रकार का जलमय बना हुआ रहता है, तो ऐसी परिस्थिति में इस मौसम को आते ही आदमी को इसका प्रिकॉशन लेना शुरू करना चाहिए
0: जी।
1: एक तो जल को, जो जल हम पीते हैं नित्य, उसको निश्चित तौर पर गर्म करके छान करके उस पानी को हमें पीना चाहिए
0: जी।
1: आसपास का जो वातावरण है उसको साफ रखना चाहिए
0: जी।
1: घर को पूरा साफ रखना चाहिए, किसी प्रकार का बासी भोजन नहीं करना चाहिए
0: जी, जी।
1: ये चीज पर एकदम गौर करने का विषय है
0: जी।
1: दूसरा है कि अगर पकड़ लिया हमको ये बीमारी
0: जी,
1: तो जिसको बीमारी पकड़ता है, पकड़ने के बाद उसके जो उस व्यक्ति को किस प्रकार हम रख सकते हैं, एकदम साफ सुथरा रखना है, उससे अपने को दूरी बनाए रखना चाहिए
0: जी, जी।
1: उसका सेवा भी करना है, लेकिन इस तरह दूरी बना रहे कि हम उसका उसके साथ सटे नहीं, उसके कपड़ा का हम उपयोग नहीं करें
0: जी, जी।
1: वो उसका उसको गर्म भोजन दें, गर्म पानी को साफ करके दें, फिर उसके कपड़े को तुरंत उतारने के बाद गर्म पानी में उसको डाल देना चाहिए।
0: अच्छा अच्छा,
1: एकदम गर्म पानी में डाल के ही उसका उपयोग करना चाहिए
0: जी,
1: उसके वस्त्र आदि को
0: जी,
1: तो उसको फैलने से रोका जा सकता है
0: जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि लोग कैसे समझें कि ये इस वायरल फीवर का मेरे ऊपर हमला हो चुका है।
1: हाँ,
0: उसके लक्षण कैसे, पहला लक्षण क्या होता है?
1: हाँ, एक के तो इस विषय पर ये सभी को जानकारी रहना चाहिए
0: जी।
1: एक साधारण बुखार होता है आदमी को, सर्दी खांसी हुआ, बुखार हो गया,
0: बिल्कुल,
1: तो लोग सोचते हैं कि हमको साधारण बुखार है, कुछ दवा लेकर के खा लेते
0: हैं।
1: परंतु सर्दी ज्वर का ही रूप में ये वायरल फीवर भी छिपा हुआ रहता है
0: जी।
1: इसमें भी जाड़ा लगता है, सर्दी होता है, छींक होता है
0: जी।
1: लेकिन कुछ फर्क उसमें है
0: जी।
1: एक तो काफी सिर दर्द होगा
0: जिस
1: मरीज, हाँ, बहुत तेज सिर दर्द होगा, सिर लगा जैसे फट जा रहा है, इतना तक कि उसका जो आंख का जो फलक है उसमें भी दर्द होना शुरू हो जाता है
0: जी। जी,
1: आंख नाक से पतला पानी ऐसा पहले गिरेगा शुरुआती में
0: जी,
1: छींक होगा, खांसी होगा, पूरा बदन में दर्द होगा।
0: अच्छा अच्छा,
1: पूरा शरीर एकदम जलन देगा, लहर देगा
0: जी,
1: ये हाई फीवर होगा। ये मैंने ये विषय जो है एकदम जानकारी में रहना चाहिए
0: जी।
1: और
0: इसके लक्षण है,
1: इसके लक्षण है, और देह एकदम जलेगा, जैसे टूट रहा है, कोई उस पर प्रहार कर रहा है, इस प्रकार के ज्वर को तुरंत ध्यान देना चाहिए कि ये हमारा वायरल फीवर का अटैक हुआ है
0: जी। अच्छा सर, अभी आपने कहा बासी भोजन, तो

0: हम कितने देर के भोजन को बासी माने? जैसे सुबह लोग बनाते हैं खाना, उसको शाम तक लोग खाते हैं, तो क्या वो बासी कहा जा
1: नहीं,
0: सकता है?
1: दोपहर तक, हाँ शाम को बासी हो जाएगा वो भोजन,
0: जी
1: रात को तो बिल्कुल बासी हो जाएगा।
0: जी
1: रात का भोजन सुबह नहीं करने का है,
0: जी
1: उतने ही बनाए जितनी आवश्यकता है, कोशिश करें गरम गरम तुरंत बने, तुरंत भोजन
0: तुरंत भोजन कर लें
1: ऐसा।
0: जी
1: पानी को गर्म करके बहुत देर तक भी नहीं रखना, गर्म करें, ठंडा करें, उसको
0: जी
1: उबाल करके उसको पिए।
0: जी
1: दूसरा है, इसमें सबसे सावधानी चीज है कि इस बीमारी के बाद भी या बीमारी के तुरंत बाद
0: जी
1: निमोनिया होने का भी डर रहता है।
0: अच्छा,
1: ये बहुत बड़ी चीज है इस बीमारी का। लोग सुनते हैं, सुनने को मिलता है कि ये बीमारी के बाद इस बीमारी के रहते हुए कोई एक्सपायर कर गया, कुछ कर गया, तो उसका एकमात्र यह है कि वो निमोनिया हो गया या कफ हो गया, कफ को निकाल नहीं पा रहा, श्वास का नली उसमें भी सूजन हो जाती है,
0: जी
1: तो उसके चलते कमजोर आदमी बर्दाश्त करने लायक नहीं रहता है।
0: जी जी जमशेदपुर में इस बीमारी से कुछ लोग हताहत भी हुए हैं,
1: बिल्कुल
0: अखबारों में बातें आई हैं, स्वास्थ्य विभाग भी इसके प्रति सचेत है, लेकिन डॉक्टर साहब हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसके क्या क्या उपचार हो सकते हैं, घरेलू, चिकित्सकीय या इसके होने के पूर्व, इस संबंध में थोड़ा सा आप हमारे श्रोताओं को बताएं।
1: एक तो ये इन्फ्लुएंजा जो है, ये वायरल फीवर जो है,
0: जी
1: 4-5 दिन से अधिक नहीं रहता है।
0: अच्छा अच्छा
1: 4-5 दिन तक ही रहेगा
0: जी,
1: और 4-5 दिन के बाद इसको चले जाना है निश्चित रूप से।
0: जी
1: जो कमजोर प्रवृत्ति के लोग हैं और नेग्लिजेंसी जो करते हैं, मुख्य रूप से नेग्लिजेंसी करने से ही आदमी की मौत हो सकती है, अगर होने के बाद वो सावधानी है तो उसकी मौत निश्चित रूप से
0: नहीं होगी।
1: अच्छा, ये इससे सबसे पहला है कि हम इस बीमारी होने के बाद उसको गर्म प्रिकॉशन देना चाहिए, उसको ठंडा का इफेक्ट किसी भी तरह ना हो, जिस रूम में है उस रूम में गर्म वातावरण बना रहना चाहिए, उसको निमोनिया नहीं हो इसका प्रयास करना चाहिए
0: जी।
1: और खास करके आसपास के जो भी नजदीक में डॉक्टर है उसको निश्चित रूप से देखाए, बिना देखाए नहीं रहना चाहिए उसको
0: जी,
1: और अपने मन से उसका इलाज नहीं करें
0: जी। अच्छा सर, आप होम्योपैथ के चिकित्सक भी हैं
1: जी,
0: और होम्योपैथ में बहुत सारी दवाएं हैं जो इसको प्रिकॉशन के रूप में लिया जा सकता है
1: जी,
0: आप हमारे श्रोताओं को उस दवा के बारे में एक बार बता दें ताकि वो प्रिकॉशन के रूप में इस दवा को लेके इसकी चपेट में आने से बच सकें।
1: बिल्कुल
0: जी,
1: एक तो पहले मैं बता चुका हूँ कि अगर ये बीमारी अटैक हो गया है
0: जी,
1: तो बगैर डॉक्टर का सलाह से दवा नहीं लें।
0: बिल्कुल
1: आसपास में जो भी डॉक्टर हैं, रजिस्टर्ड डॉक्टर, ये भी कहूँगा कि जो रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं उनके पास जाएं, उनको दिखाएं, जांच करा करके दवा लें
0: जी।
1: मुख्य रूप से होम्योपैथिक की जहाँ तक बात है, होम्योपैथी में लक्षण के अनुसार दवा दिया जाता है
0: जी,
1: कई दवाएं इस बीमारी में है
0: जी,
1: और परंतु अगर प्रिकॉशन के तौर पर इन्फ्लुएंजा अगर आसपास में फैल चुका है तो उसको पूर्व में अगर हम दवा ले लेते हैं
0: जी,
1: तो ये बीमारी आगे नहीं बढ़ेगा, या जिसको नहीं हुआ है उसको नहीं होगा, ये तो निश्चित है
0: जी। कौन सी भी दवा है?
1: हाँ, उसमें ये मुख्य रूप से होम्योपैथ में 3 दवा है
0: जी,
1: ये वायरस फीवर के लिए
0: जी।
1: एक तो आर्सेनिक, आर्सेनिक एल्बम नाम का दवा है, इसको श्रोतामंद नोट कर ले, हम तो कहेंगे इसको नोट कर लें और मंगा करके पूरा परिवार, जिसको नहीं हुआ उसको एकदम खाना चाहिए
0: जी।
1: आर्सेनिक एल्बम 30 पावर का दवा
0: जी,
1: वो मंगा करके सुबह शाम 3 दिन लगातार लें
0: जी,
1: या उसके स्थान पर एक बैप्टिसिया नाम की दवा है
0: जी जी,
1: वो भी 2x पावर का।
0: अच्छा,
1: बैप्टिसिया 2x या 30 पावर का भी ले सकते हैं
0: जी,
1: ये भी सुबह शाम 3-4 दिन तक खाएं, उसका किसी प्रकार का वायरस का इफेक्ट उसका बॉडी में नहीं हुआ। तीसरा इन्फ्लुएंजिन नाम का भी दवा आता है, जिस नाम से बीमारी है
0: जी जी,
1: उस नाम का भी एक दवा जिसका नाम इन्फ्लुएंजिन, इन्फ्लुएंजिनम
0: जी,
1: इन्फ्लुएंजिनम है, वो भी 30 पावर या 200 पावर का। ये तीनों दवा में से कोई एक दवा आप उपयोग कर सकते हैं
0: जी।
1: जो जिस प्रकार हम लोग ये भी जानते हैं, जैसे मिजल्स वगैरह होता है या स्मॉल पॉक्स वगैरह होता है, उसमें भी होम्योपैथ में एंटीबायोटिक दवा, एंटीडोट दवा है
0: जी,
1: जो उस वायरस को रोक सकता है, उस प्रकार इस वायरस फीवर में भी ये तीनों दवा में से किसी एक दवा को आप मंगा करके आप प्रिकॉशन के तौर पर लें, अपने बच्चे को दें, स्वयं लें, आप इससे बच सकते हैं। पुनः फिर से नोट कर सकते हैं दवा को
0: जी,
1: एक आर्सेनिक
0: जी,
1: आर्सेनिक 30 पावर का या 200 पावर का
0: जी,
1: बैप्टिसिया 2x या 30 पावर का
0: जी,
1: और इन्फ्लुएंजिनम 30 पावर का या 200 पावर का दवा लेकर के उसको 3-4 दिन तक लगातार खाएं। उसके अलावा होम्योपैथिक में जब

0: बीमारी हो जाता है तो कई दवाएं हैं जिसमें मुख्य रूप से एकोनाइट है, जेलसिमेट में नहीं लेना चाहिए, यह ध्यान रखने का है।
1: जी डॉक्टर साहब, आज आपने वायरल फीवर लक्षण, कारण और इसके बचाव के बारे में हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी।
0: जी जी,
1: हम समझते हैं हमारे श्रोता आपकी बातचीत से अवश्य लाभान्वित होंगे और इस वायरस रूपी वायरल फीवर से बचेंगे।
0: जी
1: आपने अच्छी जानकारी दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: बहनों, अभी आप सुन रही थी डॉक्टर मनोज कुमार की भेंटवार्ता, विषय था वायरल फीवर लक्षण, कारण एवं बचाव। इनसे बातचीत कर रहे थे संजीव मेहता। और अब बहनों, क्यों ना कुछ मनोरंजन हो जाए, तो सुनते हैं पटेल महतो और साथी के स्वर में ये कुरमाली लोकगीत।

धान की नर्सरी यदि 20 से 25 दिन की हो गई हो तो तैयार खेत में धान की रुपाई शुरू करें। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 20 सेंटीमीटर और पौधे से पौधों की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। उर्वरकों में 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटास और 25 किलोग्राम जिंक फास्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से डालें और नील हरित शैवाल एक पैकेट प्रति एकड़ का प्रयोग उन्हीं खेतों में करें जहां पानी खड़ा रहता है, ताकि मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाई जा सके। और इसी के साथ ही बहनों, अब समय हो चला है आपसे इजाजत लेने का। आज का घर गृहस्थी कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। सभी बहनों को हमारा जोहार।

ग्रामीण महिलाओं का साप्ताहिक कार्यक्रम घर गृहस्थी अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के रांची केंद्र से होगा। सुनेंगे चंद विज्ञापन और विचारों के बाद शाम 7 बजे से प्रादेशिक समाचार।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नई दिल्ली में आयोजित नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन का किया शुभारंभ। कहा, देश का औद्योगिक विकास झारखंड के योगदान के बिना अधूरा। झारखंड विधानसभा में आंतरिक संसाधन तथा केंद्रीय सहायता समिति की राजस्व कमेटी की टीम ने आज रामगढ़ का किया दौरा। अध्यक्ष विधायक रामेश्वर उरांव ने कहा, विधानसभा को समिति देगी रिपोर्ट। राज्य सरकार ने संथाल परगना की सड़क परियोजनाओं के लिए 221 करोड़ के पैकेज को दी मंजूरी। दुमका से पाकुड़ जिले के अमड़ापाड़ा तक 52 किलोमीटर की सड़क का होगा कायाकल्प। जमशेदपुर के बहुचर्चित डीडी बार हत्याकांड में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। हत्याकांड के मुख्य आरोपी ने किया न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण। और धनबाद में हुई रेल मंडल संसदीय समिति की बैठक, पलामू चतरा और धनबाद के सांसदों ने उठाए रेलवे से जुड़े जनमुद्दे। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नई दिल्ली में आयोजित नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन 2026 का शुभारंभ किया और विकसित झारखंड का विजन प्रस्तुत किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि झारखंड को केवल खनन आधारित राज्य नहीं बल्कि तकनीक अनुसंधान नवाचार और औद्योगिक विकास के अग्रणी केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की पहचान उसके प्राकृतिक संसाधनों के साथ साथ यहां के युवाओं की प्रतिभा, बौद्धिक क्षमता और कुशल मानव संसाधन से बनेगी तथा झारखंड की वैश्विक मंचों पर भागीदारी लगातार मजबूत हो रही है। उन्होंने निवेशकों से दीर्घकालिक साझेदारी का आह्वान करते हुए स्थानीय संसाधनों और परिस्थितियों के अनुरूप विकास मॉडल अपनाने तथा शोध एवं आधुनिक तकनीक पर विशेष जोर दिया।
1: झारखंड के संदर्भ में लगभग हम ये कह सकते हैं कि इस देश की अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करें तो झारखंड के बिना ये पूरा होता दिखता नहीं। आज हम झारखंड से पूरे देश को कई सारी खनिज संपदाओं के साथ ज्ञान भी दिया है। हमारे राज्य से देश दुनिया में बड़े पैमाने में ब्यूरोक्रेट्स ने भी अपनी योगदाने दी हैं, तकनीकी क्षेत्रों में भी दी हैं।
0: झारखंड विधानसभा में आंतरिक संसाधन एवं केंद्रीय सहायता समिति की राजस्व कमेटी की टीम ने आज रामगढ़ का दौरा किया। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष विधायक रामेश्वर उरांव ने बताया कि यह समिति विभिन्न विभागों के वित्तीय संबंधित चीजों की जांच कर इसकी रिपोर्ट विधानसभा को भेजेगी।
2: कमेटी का नाम है इंटरनल रिसोर्सेज एंड सेंट्रल एड। हमारा काम इतने है कि इंटरनल रिसोर्सेज कितने यहाँ से है, किस किस विभाग से कितना राजस्व मिलता है, यहाँ से जो राज्य सरकार को जाता है और सेंट्रल सरकार का जो सहायता मिलती है, किस मद में मिला, किस हेतु मिला, वो खर्च बढ़िया से हुआ कि नहीं हुआ।
0: राज्य सरकार ने संथाल परगना की सड़क परियोजनाओं के लिए बड़े पैकेज को मंजूरी दी है। इसमें दुमका से पाकुड़ जिले के अमड़ापाड़ा तक 52 किलोमीटर गोविंदपुर साहिबगंज स्टेट हाईवे का कायाकल्प शामिल है। इसके तहत सड़क का पुनर्निर्माण किया जाएगा तथा सड़क की चौड़ाई 7 मीटर से बढ़कर 15 मीटर की जाएगी। इस पर कुल 221 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाएंगे। गढ़वा जिला प्रशासन एसआईआर अभियान को लेकर काफी गंभीर है और जिला निर्वाचन कार्यालय की ओर से इस अभियान की नियमित समीक्षा की जा रही है। इसकी जानकारी देते हुए उपायुक्त पशुपतनाथ मिश्र ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत गढ़वा जिले में मतदाता सूची को अधिक शुद्ध, अद्यतन और त्रुटि रहित बनाने का कार्य पूरी गंभीरता और पारदर्शिता के साथ जारी है। इधर गिरिडीह के उपायुक्त रामनिवास यादव ने आज जिले में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्रों के वितरण, संग्रहण और डिजिटाइजेशन कार्यों की समीक्षा की। मौके पर उन्होंने बताया कि जिले में अब तक 61% गणना प्रपत्रों का वितरण किया जा चुका है और 10 जुलाई तक 100% गणना प्रपत्रों का वितरण सुनिश्चित कराने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स। और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची विश्वविद्यालय के वर्तमान शैक्षणिक स्थिति को लेकर राष्ट्रीय जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने आज रांची विश्वविद्यालय में समीक्षा बैठक की, उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने विश्वविद्यालय की विभिन्न कमियों में सुधार करने के लिए भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
3: आज राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भारत सरकार के द्वारा रांची विश्वविद्यालय का समीक्षा बैठक रखा गया था कि बैठक में जनजाति समुदाय से संबंधित शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी से लेकर के विद्यार्थी तक की बात हम सबने किया है कि अगर बात देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रमोशन की अगर हम बात करें विशेष रूप से तो प्रमोशन सिस्टम ही यहाँ नहीं है।
0: जमशेदपुर के बहुचर्चित डीडी बार हत्याकांड में पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। करणी सेना के नेता हिमांशु सिंह हत्याकांड के मुख्य नामजद आरोपी विश्वनाथ मंडल उर्फ बोदरा ने पुलिस के बढ़ते दबाव के बीच आज जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। धनबाद रेल मंडल संसदीय समिति की आज हुई बैठक में जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने संसदीय क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न रेलवे मुद्दों को उठाया। इस बैठक में नई ट्रेनों के परिचालन, ट्रेनों के ठहराव, विस्तार, फेरे बढ़ाने, यात्री सुविधाओं के विकास और लंबित रेल परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इस दौरान धनबाद सांसद ढुल्लू महतो ने धनबाद को रेलवे जोन बनाने की मांग को प्रमुखता से उठाया।
4: धनबाद के इस जोन से ही सबसे ज्यादा राजस्व देता है और धनबाद का जोन दूसरे प्रदेश में है, वहाँ रहे हमको कोई आपत्ति नहीं है, मगर धनबाद में भी रेलवे जोन बनना चाहिए क्योंकि पूरे भारतवर्ष में धनबाद एक कोयला का नगरी है और यहाँ पे हर तरह का ट्रेन मालगाड़ी का सबसे ज्यादा आवागमन है। यहाँ से ज्यादा माल ढुलाई भी होता है, यहाँ सवारी भी बहुत ज्यादा है।
0: बैठक में पलामू सांसद बीडी राम, चतरा सांसद कालीचरण सिंह और गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने भी अपने सुझाव दिए। हजारीबाग नगर निगम की बोर्ड बैठक में पदेन सदस्य के रूप में हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल शामिल हुए। बैठक में उन्होंने नगर निगम क्षेत्र के समग्र विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए और स्पष्ट कहा कि शहर के विकास की पहली प्राथमिकता मजबूत सड़कें, बेहतर नालियां और प्रभावी जल निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। लोहरदगा जिले के कुड़ू थाना क्षेत्र स्थित सलगी पंचायत के रोचो महुआ टोली में संचालित संवसीरा हायर सेकेंडरी स्कूल के आवासीय परिसर में कल रात कमरे में सो रही चार छात्राओं को सांप ने काट लिया। इलाज के दौरान एक बच्ची की मौत हो गई जबकि एक को बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर किया गया है। साथ ही दो का इलाज सदर अस्पताल लोहरदगा में चल रहा है। रांची के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर प्रत्येक बुधवार आयोजित होने वाले जन शिकायत समाधान कार्यक्रम के तहत डोरंडा थाना परिसर में लोगों की शिकायतें सुनी गईं। थाना प्रभारी दीपिका प्रसाद ने कई मामलों का मौके पर ही निष्पादन किया। मौसम। राज्य में मॉनसून सक्रिय होने से मौसम केंद्र रांची ने आज 6 जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है। धनबाद, बोकारो और हजारीबाग समेत अन्य प्रभावित इलाकों में बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की आशंका है। प्रशासन ने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नई दिल्ली में आयोजित नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन का किया शुभारंभ। कहा, देश का औद्योगिक विकास झारखंड के योगदान के बिना अधूरा। झारखंड विधानसभा में आंतरिक संसाधन तथा केंद्रीय सहायता समिति की राजस्व कमेटी की टीम ने आज रामगढ़ का किया दौरा। अध्यक्ष विधायक रामेश्वर उरांव ने कहा, विधानसभा को समिति देगी रिपोर्ट। राज्य सरकार ने संथाल परगना की सड़क परियोजनाओं के लिए 221 करोड़ के पैकेज को दी मंजूरी। दुमका से पाकुड़ जिले के अमड़ापाड़ा तक 52 किलोमीटर की सड़क का होगा कायाकल्प। जमशेदपुर के बहुचर्चित डीडी बार हत्याकांड में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। हत्याकांड के मुख्य आरोपी ने किया न्यायालय में आत्मसमर्पण। और धनबाद में हुई रेल मंडल संसदीय समिति की बैठक, पलामू, चतरा और धनबाद के सांसदों ने उठाए रेलवे से जुड़े जनमुद्दे। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ज तथा एफएम के 100.5 मेगाहर्ज पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं जिले में आजकल।
1: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे धनबाद जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे धनबाद संवाददाता।
1: धनबाद के केंदुआडी क्षेत्र में लगातार हो रहे भूधसान और गैस रिसाव की समस्या के समाधान को लेकर जिला प्रशासन ने कल बैठक की। इस दौरान पिछले 6-7 महीनों से बंद धनबाद बोकारो मुख्य सड़क को दोबारा खोलने से पहले अब उसके नीचे वैज्ञानिक तरीके से खुदाई कर वास्तविक स्थिति का पता लगाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए BCCL 10 जुलाई तक SOP तैयार करेगा। खुदाई के दौरान प्रभावित परिवारों को राहत शिविर में शिफ्ट किया जाएगा। वहीं उपायुक्त ने भविष्य में सरकारी संपत्ति के पास बिना NOC खनन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।
2: विस्तृत रूप से चर्चा हुई, किंतु जो वहाँ घटना है, ये भूदशान की या गैस निकलने की, ये बहुत पुरानी घटना है। 1980 से बता रहे हैं, लगातार हो रही है। 2005 में भी एक बड़ी घटना हुई थी, तो इसमें कोई मिडिल पाथ निकलना चाहिए। तो हम लोग यही निर्णय लिए हैं कि जो टेक्निकल एजेंसीज हैं, DGMS है, ITISM है, सिम्फर है, एक प्राइवेट संस्था भी है जो अच्छा काम करती है इसमें, उनके भी एक्सपर्ट थे। तो हम लोगों ने सबने मिलकर एक ओपिनियन दिया है कि हम लोग एक SOP देंगे, जिस SOP के तहत BCCL और जिला प्रशासन मिलकर उस जगह को चेक करेगा और वो प्रॉपर डिगिंग, बोरवेल जैसे बनता है, हम लोग बोरिंग करते हैं, ऐसे बोरिंग करके पूरा चेक किया जाएगा उस पूरे पैच को। और अगर कोई मेजर हताहत की अगर सूचना नहीं रहेगी, अगर आशंका नहीं रहेगी, तो हम लोग रूट चालू करेंगे।
1: धनबाद शहर की रिंग रोड परियोजना से अग्नि प्रभावित झरिया क्षेत्र के विकास की उम्मीदें भी काफी बढ़ गई हैं। जिले के उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि कोयला मंत्रालय की सहमति से झरिया अग्नि प्रभावित क्षेत्र को चारों ओर से जोड़ने वाली रिंग रोड परियोजना पर काम आगे बढ़ रहा है।
2: एक बड़ा प्रोजेक्ट रिंग रोड जैसा पूरे झरिया को सर्कल करते हुए 4 लेन 2 लेन मिक्स लेन करके बनने का प्लान है, और भारत सरकार और मिनिस्ट्री ऑफ कोल द्वारा भी उसके लिए सहमति दी गई है, और साथ साथ NH द्वारा उसका सर्वे भी किया जा रहा है। तो अगर वो एक परमानेंट सॉल्यूशन है, अगर हम लोग पूरे जो अग्नि प्रभावित क्षेत्र है उसके चारों तरफ अगर हम लोग एक चौड़ी सड़क बना सकते, तो पूरा नया शहर उधर बसेगा। और ये जो लगातार बार बार ये घटना वर्षों से नहीं दशकों से चलती आ रही है, वो
1: धनबाद सांसद ढुल्लू महतो और निरसा विधायक अरूप चटर्जी के बीच जुबानी जंग तेज है। लगातार दोनों जनप्रतिनिधि प्रेस वार्ता कर एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप मढ़ रहे। सांसद ढुल्लू महतो ने कल फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निरसा विधायक पर इस फरार अपराधी से संबंध रखने का आरोप लगाया है।
3: इसमें हम आप लोग से आग्रह करना चाहेंगे कि ऐसे लोग जो अपने आप को बहुत सीधा साधा, उसका प्रमाण मेरे पास देखा भी, अब वो बतावे कि मोइज खान और प्रिंस खान कौन है, उसका रिश्ता क्या है। और जब इतना सरकार ताबड़तोड़ कर रही है, प्रशासन करे, तो क्यों नहीं जांच करवा रहा है इसका मोबाइल नंबर, अरूप चटर्जी जी का, रिजवान का, मोइज खान का, दूध का दूध पानी के पानी, मेन संरक्षक प्रिंस खान का, यही है अरूप चटर्जी जी, अपने आप को राजा हरिश्चंद्र कहने वाले, ईमानदार कहने वाले, पर इसको कोर्ट जाएंगे, हम जानते हैं कि वो फिर मैनेज कर लेगा, उसका तो मैनेज करने का धंधा है ना। दो मर्डर किया और दोनों में मैनेज कर लिया, ताकि PIL करेंगे और इसका जांच करवाएंगे।
1: गौरतलब है कि इससे पहले निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने सांसद ढुल्लू महतो पर रंगदारी वसूलने और अपराधी प्रिंस खान को संरक्षण देने का आरोप लगाया था। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद।
0: अभी आप सुन रहे थे धनबाद जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आज कल।

आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम जिले में आजकल अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुने बंगला कार्यक्रम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे बंगला कार्यक्रम। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिन बुधवार है, शाम के 7:45 हुए हैं। आइए सुनते हैं साप्ताहिक विज्ञान पत्रिका कार्यक्रम जिज्ञासा।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता दोस्तों को संतोषी का नमस्कार। साप्ताहिक विज्ञान पत्रिका जिज्ञासा में एक बार फिर आप सबों का स्वागत है। दोस्तों, जब भी भारत के अंतरिक्ष उपलब्धियों की बात होती है तो हमारे मन में चंद्रयान, मंगलयान और आदित्य L1 जैसे मिशनों की तस्वीर उभर आती है। लेकिन इन सफल अभियानों के पीछे वर्षों का वैज्ञानिक अनुसंधान, हजारों वैज्ञानिकों की मेहनत और अत्याधुनिक तकनीक होती है। ऐसी ही एक महत्वपूर्ण तकनीक है क्रायोजेनिक इंजन। हाल ही में इसरो ने LVM-3 मिशन के लिए क्रायोजेनिक इंजन का अंतिम उड़ान सफलतापूर्वक पूरा किया है। ये भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक और महत्वपूर्ण पड़ाव मानी जा रही है। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है। क्रायोजेनिक शब्द का अर्थ होता है अत्यंत कम तापमान। इस इंजन में ईंधन के रूप में लिक्विड हाइड्रोजन और ऑक्सीकारक के रूप में लिक्विड ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। इन्हें शून्य से लगभग 250 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम तापमान पर सुरक्षित रखा जाता है। इतने कम तापमान पर ईंधन को स्टोर करना, कंट्रोल करना और फिर इंजन में जलाकर अत्यधिक शक्ति उत्पन्न करना एक कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक प्रोसेस है। यही कारण है कि दुनिया के केवल कुछ ही देशों ने इस तकनीक में महारत हासिल की है, जिनमें भारत भी शामिल है। ऐसा नहीं है कि भारत के लिए ये सब आसान था। कई चुनौतियों और तकनीकी प्रतिबंधों के कारण विदेशी सहयोग सीमित था, इसलिए भारतीय वैज्ञानिकों ने स्वदेशी तकनीक विकसित करने का संकल्प लिया। LVM-3 भारत का सबसे शक्तिशाली प्रक्षेपण यान है, जो चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 और कई भारी संचार उपग्रहों को अंतरिक्ष ले जा चुका है। भारत के मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए भी इसी रॉकेट का उपयोग किया जाएगा। ऐसे में इसके क्रायोजेनिक इंजन का सफल अंतिम उड़ान महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके सभी मानकों पर सफल प्रदर्शन के बाद ही इसे वास्तविक उपयोग के लिए तैयार माना जा सकता है। दोस्तों, किसी भी रॉकेट के 3 मुख्य चरण होते हैं। पहले चरण में भारी ईंधन की मदद से रॉकेट पृथ्वी से उड़ान भरता है। दूसरे चरण में वो अधिक ऊंचाई प्राप्त करता है और आखिरी चरण में उपग्रह को सही कक्षा में स्थापित करने के लिए अत्यंत कुशल और शक्तिशाली इंजन की आवश्यकता होती है, और ये काम क्रायोजेनिक इंजन करता है। इसलिए इंजन के हर परीक्षण का महत्व होता है। इस सफलता का सबसे बड़ा लाभ भारत के भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों को मिलेगा। गगनयान मिशन, भारी संचार उपग्रहों का प्रक्षेपण और भविष्य के गहरे अंतरिक्ष मिशन अधिक विश्वसनीय बनेंगे। आज अंतरिक्ष केवल वैज्ञानिक अनुसंधान तक सीमित नहीं है। संचार, मौसम, कृषि, आपदा प्रबंधन, रक्षा, शिक्षा, इंटरनेट जैसी कई सेवाएं इन पर निर्भर है। इसलिए रॉकेट तकनीक में सुधार सीधे सीधे आम जन को भी प्रभावित करते हैं। ये उपलब्धि प्रेरणा है कि निरंतर प्रयास, धैर्य और नवाचार से असंभव लगने वाले लक्ष्य भी संभव हो सकते हैं। आने वाले वर्षों में भारत का लक्ष्य पृथ्वी के कक्षा तक ही नहीं बल्कि चंद्रमा पर दीर्घकालिक रिसर्च, शुक्र ग्रह के लिए मिशन, मानव अंतरिक्ष उड़ान जैसी अनेक महत्वाकांक्षी योजनाओं की है, जिनमें निश्चय ही क्रायोजेनिक इंजन की भूमिका अहम साबित होगी। दोस्तों, विज्ञान की दुनिया में कोई भी सफलता अचानक नहीं मिलती। उसके पीछे वर्षों का परिश्रम, असंख्य परीक्षण और असफलताओं से सीखने का साहस होता है। इसरो की ये उपलब्धि भी उसी निरंतर प्रयास का परिणाम है। तो आइए हम सब भारतीय वैज्ञानिकों

0: और इंजीनियरों को इस महत्वपूर्ण सफलता के लिए बधाई दें और आशा करें कि भारत अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छूता रहेगा। इसी विश्वास के साथ हम बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं रूपा रॉय की वार्ता अद्भुत रासायनिक यौगिक।
1: जब भी रासायनिक यौगिक या केमिकल कंपाउंड्स का उपयोग जीवन के किसी भी क्षेत्र में देखती हूँ तो मुझे यह बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। वास्तव में यह बहुत आश्चर्यजनक है कि केमिकल कंपाउंड्स हमारे दिनचर्या में इस तरह से इन्वॉल्व है कि जिसके बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। दिन पर दिन रासायनिक यौगिक का एडवांस यूज हमारे जीवन में बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप्ड होती जा रही है। असल में हर जगह आपको रासायनिक यौगिक की उपस्थिति दिख जाएगी, जिनमें से बहुत सारे प्राकृतिक रूप में मिलते हैं और बहुत सारे सिंथेटिक या मैन मेड होते हैं। रासायनिक यौगिक का हमारे जीवन में विभिन्न रूप से अद्भुत उपयोग देखने को मिलता है, जिनका मैं थोड़ा वर्णन करूंगी। जीवन के विभिन्न क्षेत्र में रासायनिक यौगिक का उपयोग एक एक कर बता रही हूँ। जैसे मेडिसिन या दवा के रूप में रासायनिक यौगिक जो रोग के इलाज इसके रोकथाम में उपयोग होता है उसे मेडिसिन या दवा कहते हैं, लेकिन इसका उपयोग निश्चित मात्रा से ज्यादा लेने पर यह जहर बन जाता है। यह मानव जीवन के लिए वरदान है। मेडिसिन को विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं के आधार पर बांटा गया है, जैसे एंटीपायरेटिक्स या मेडिसिन फीवर होने पर शरीर के टेम्परेचर को डाउन करता है। एनाल्जेसिक उसके बाद आता है, यह दवा दर्द निवारक होता है। शरीर में कहीं भी दर्द या पेन होने पर पेन किलर के रूप में खाते हैं। एंटीसेप्टिक्स, यह रासायनिक यौगिक शरीर के टिश्यू में विषाणु या रोगाणु को मारने के लिए इसका लेप लगाया जाता है, लेकिन यह टिश्यू के लिए हानिकारक नहीं होता। उदाहरण के लिए टिंचर ऑफ आयोडीन, डिसइंफेक्टेंट, यह रासायनिक यौगिक भी विषाणु या रोगाणु को मारता है, लेकिन यह हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, इसलिए इसका उपयोग बाहर नाले, बाथरूम, टॉयलेट इत्यादि में किया जाता है। जैसे फिनाइल डीडीटी गैमेक्सिन, एंटी एसिड, यह दवा पेट की एसिडिटी को खत्म करता है। यह दवा बेसिक नेचर का केमिकल है, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इत्यादि। एंटीबायोटिक्स, यह केमिकल पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनता था, लेकिन आजकल यह पूरी तरह से सिंथेसाइज भी हो रहा है। यह भी शरीर में होने वाले इन्फेक्शन को ठीक करता है, जैसे पेनिसिलिन, एमिनोग्लाइकोसाइड्स और फ्लॉक्सिन, एरिथ्रोमाइसिन इत्यादि। ट्रांसकुलाइजर्स, यह दवा मानसिक बीमारी, तनाव, डिप्रेशन को ठीक करने के लिए लिया जाता है। यह मूड कंट्रोल करता है। इसके अलावा आई ड्रॉप, एयर ड्रॉप के रूप में रासायनिक यौगिक का उपयोग होता है। बड़े बड़े रोगों में जैसे एड्स, कैंसर, ट्यूमर के ट्रीटमेंट में भी मेडिसिन का उपयोग है, जिसके कारण विभिन्न रोगों की वजह से होने वाली मृत्यु दर में काफी कमी आई है। इसके बाद रासायनिक यौगिक का उपयोग क्लीनिंग एजेंट के रूप में जो है, यह है साबुन या सोप या डिटर्जेंट। ये रासायनिक यौगिक है जो क्लीनिंग एजेंट या सफाई में यूज होता है। साबुन या सोप, यह सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग फैटी एसिड है। यह फैटी एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को मिलाकर बनाया जाता है, जैसे सोडियम और पोटेशियम स्टियरेट, सोडियम और पोटेशियम पाल्मिटेट, सोडियम ऑलिएट इत्यादि, ये सब इसके उदाहरण हैं। डिटर्जेंट्स, यह भी सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन बेंजीन या सल्फोनिक एसिड है, जैसे सोडियम लॉरिल सल्फेट। यह हार्ड वाटर में भी कपड़े धो सकता है। आप ही बताइए, इसके बिना हम सफाई कैसे करते। डाइज के रूप में भी रासायनिक यौगिक है। डाइजो कपड़े या अन्य वस्तुओं को विभिन्न रंगों से रंगने या कलर करने में यूज होता है। इसके बिना तो हमारी दुनिया ही रंगहीन है। इसके उदाहरण है नेप्थोल येलो, एजोडाइज, फेनोप्थेलिन इत्यादि। भोज्य पदार्थ में या खाने की चीजों में फूड कलर, फूड प्रिजर्वेटिव्स या एडिटिव न्यूट्रिएंट्स के रूप में उपयोग होता है। आजकल मार्केट में जो भी पैकेट फूड आ रहे हैं सब रासायनिक यौगिक प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज होता है। इसके खाना काफी दिनों तक खराब नहीं होता, जैसे सोडियम बेंजोएट, सॉल्ट ऑफ सॉर्बिक एसिड, प्रोपानोइक एसिड, एसिटिक एसिड या विनेगार। ये सब टोमेटो सॉस, चिली सॉस, जैम, जेली, चिप्स, ड्राई फ्रूट्स में यूज होते हैं। ईंधन या फ्यूल के रूप में रॉकेट में यूज होने वाले रॉकेट फ्यूल, जिसे प्रोपेलेंट कहते हैं, यह रासायनिक यौगिक का मिश्रण ही है, जैसे पॉलीब्यूटाडाइन एंड अमोनियम परक्लोरेट का मिश्रण इत्यादि। पेट्रोल, डीजल, किरोसिन, यह सब हाइड्रोकार्बन का लॉन्ग चेन का मिश्रण है, जो पेट्रोलियम ऑयल के डिस्टिलेशन

0: से मिलता है। पेट्रोल, डीजल और ऑटोमोबाइल में यूज होता है, वहीं किरोसिन भी ईंधन के रूप में यूज होता है। आजकल इको फ्रेंडली सीएनजी गैस, जिसे कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस भी कहते हैं, ऑटोमोबाइल में यूज किया जा रहा है, जो कि मुख्य रूप से मीथेन गैस है। डोमेस्टिक फ्यूल में यहाँ हम लोग घर पे एलपीजी गैस खाना बनाने में यूज करते हैं। यह लिक्विड पेट्रोलियम गैस है जो प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है। इसे कॉम्प्रेस्ड कर लिक्विड फॉर्म में सिलेंडर में भरा जाता है। कपड़े, प्लास्टिक फाइबर के सामान बनाने में यहाँ भी रासायनिक यौगिक का काफ़ी उपयोग है। जैसे प्लास्टिक फाइबर एक लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन या डेरिवेटिव्स का रासायनिक यौगिक है। यहाँ प्लास्टिक से पॉलीथीन, सॉफ्ट बॉटल इत्यादि बनता है। फाइबर जैसे नाइलोन, टेरिलीन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक क्लोराइड, बेकेलाइट, ये सब टेबल, चेयर, रस्सी, टायर, अन्य तरह के घरेलू काम की वस्तु बनाने में उपयोग होता है। इसी तरह पॉलिस्टर, टेरिलीन, नाइलोन से कपड़े बनते हैं, जो कॉटन के बनिस्पत ज़्यादा मजबूत और सस्ते होते हैं। आजकल रेयन कपड़े भी काफ़ी पहने जाते हैं, जो कॉटन में एसीटेट डालकर बनता है। इसी तरह से आम लोगों को भी कपड़े सस्ते दर पर मिल जाता है। स्टील के बर्तन बनाने में इसमें शुद्ध लोहा में विभिन्न अन्य पदार्थों को निश्चित मात्रा में मिलाकर रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा स्टील बनाया जाता है। आजकल सभी किचन में स्टील के बर्तन देखने को मिलते हैं। टूथपेस्ट, जो कि सोडियम फ्लोराइड, ग्लिसरॉल, सॉर्बिटल, कैल्शियम कार्बोनेट इत्यादि रासायनिक यौगिक का मिश्रण है। फेस क्रीम में भी अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, जो नींबू, इमली इत्यादि में पाया जाता है। इसके अलावा इसमें पॉली हाइड्रोक्सी एसिड, सैलिसिलिक एसिड, हाइड्रोक्यूनॉन, रेटिनॉल, रेटिनॉल प्रोडक्ट्स, एस्कॉर्बिक एसिड इत्यादि रहता है। फेस पाउडर में भी मुख्य इंग्रेडिएंट टैल्क है, जो नेचुरल मिनरल है पाउडर फॉर्म में। टैल्क जो हाइड्रस मैग्नीशियम सिलिकेट नामक रासायनिक यौगिक है। ये बता दें कि ये सभी रासायनिक यौगिक निश्चित मात्रा में हमारे स्किन के लिए फायदेमंद है। सीमेंट बनाने में सीमेंट भी विभिन्न रासायनिक यौगिक का मिश्रण है। इसमें कैल्शियम ऑक्साइड 62%, सिलिकॉन ऑक्साइड 25%, एल्युमिनियम ऑक्साइड 8%, आयरन ऑक्साइड 8%, मैग्नीशियम ऑक्साइड 2% एंड कैल्शियम सल्फेट 4% है। जरा सोचिए, अगर आज सीमेंट नहीं होता तो मकान कैसे बनते? मकान में पेंट भी लगता है, यह भी रासायनिक यौगिक का मिश्रण है। आजकल मोबाइल में या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में या कार में रिचार्जेबल बैटरी का यूज होता है, इसमें भी रासायनिक यौगिक का मिश्रण है, जो आपस में रासायनिक अभिक्रिया कर केमिकल एनर्जी उत्पन्न करते हैं। यह केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल जाता है। इस तरह से बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। अंत में हम यह देखते हैं कि इस तरह के अनगिनत उदाहरण हैं, जिसमें हम पाते हैं कि जहां देखो वहां हमारे जीवन में रासायनिक यौगिक का उपयोग है। इसलिए हम कह सकते हैं कि रासायनिक यौगिक हमारे जीवन के लिए अद्भुत है।
1: अद्भुत रासायनिक यौगिक, आप सुन रहे थे ये वार्ता। वार्ताकार थी रूपा रॉय। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आज का ये कार्यक्रम आपने सुना संतोषी झा के साथ। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

0: साप्ताहिक विज्ञान पत्रिका कार्यक्रम जिज्ञासा अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 MHz पर।
1: मन की बात प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
2: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे तो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा, मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
1: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें। मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
2: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
3: हेलो डॉक्टर,
4: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम।

सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 MHz पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ। हेलो डॉक्टर,

आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात के 8 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम फिल्म संगीत में स्वीकार कीजिए अपने दोस्त मीरा शर्मा का प्यार भरा नमस्कार।

टाइम टू डांस। इस फिल्म का ये गीत आपने सुना, आवाजें थी गुरिंदर सेगल और जोनिता गांधी की। गीत के बोल कुणाल वर्मा ने लिखे थे और संगीत गुरिंदर सेगल, राहुल साथू और एंटरैक्टो ने बनाई थी।

बेनी दयाल, नीति मोहन और साथियों की आवाजों में आपने सुना इंदु की जवानी, इस फिल्म का गीत। गीत के बोल गुरप्रीत सैनी और गौतम जी शर्मा ने लिखे थे और संगीत था रोचक कोहली का।

0: झुंड फिल्म का ये गीत आपने सुना, आवाज़ थी सिद्ध श्री राम की। गीत के बोल अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखे थे और संगीत अजय अतुल ने बनाई थी। श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र FM 102.4 MHz पर। सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के बाकी नगमे इन संदेशों के बाद।
1: मन की बात, प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
2: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे तो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
1: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें। मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110

0: 001।
1: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
2: नमस्कार जमशेदपुर। नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
3: ज्ञान विज्ञान
4: इतिहास के पन्नों से,
3: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
2: मौसम का मिजाज,
3: अपने शहर की खबरें,
4: बातों मुलाकातों के साथ
2: सुरीला मनोरंजन
3: और भी बहुत कुछ।
2: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में दिन के 11:05 से 12 बजे तक
4: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
2: नमस्कार जमशेदपुर।
5: हेलो मन भावन, आप सुनेंगे नए अंदाज में मेरे यानी निमिषा के साथ। प्रत्येक रविवार दिन के 11 बजे आकाशवाणी जमशेदपुर के विविध भारती केंद्र से 100.8 MHz पर। आपके फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक बुधवार दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे के बीच। हमारा टेलीफोन नंबर है 2960445 और कोड है 0657। तो आप भी जुड़ जाइए हेलो मन भावन कार्यक्रम से।

संदेशों के बाद एक बार फिर कार्यक्रम फिल्म संगीत में आप सभी श्रोताओं का बहुत स्वागत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

नवराज हंस, जोनिता गांधी और साथियों की आवाजों में आपने सुना फिल्म द गर्ल ऑन द ट्रेन, इसका ये गीत के बोल कुमार ने लिखे थे और संगीत दिया था सनी।

0: और राज बर्मन की आवाज़ों में आपने सुना फिल्म मिडिल क्लास लव का ये गीत। बोल लिखे थे शकील आजमी ने और धुन हिमेश रेशमिया ने बनाई थी।
1: हेलो डॉक्टर,
2: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम।
1: हेलो डॉक्टर,
2: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 MHz पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
1: हेलो डॉक्टर,

हम भी अकेले तुम भी अकेले। इसी फिल्म का ये गीत आपने सुना, पारुल मिश्रा की आवाज थी, बोल लिखे थे सौरभ नेगी ने और धुन ओनी आदिल ने बनाई थी।

0: थैंक गॉड फिल्म का ये गीत आपने सुना, योहानी जुबिन नौटियाल और सूर्या रघुनाथन की आवाजें थी। बोल लिखे थे रश्मि विराग ने और संगीत था तनिष्क बागची और चमत संगीत का। और श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।
1: हर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात के 8:45 होने ही वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मेलबर्न पहुंचे। भारत और रूस ने बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मॉनसून में सुधार से राहत मिली है, जुलाई में बारिश और तेज होने से खरीफ की बुआई में और तेजी आएगी। केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा की और विंबलडन टेनिस में यूक्रेन की मार्ता कोस्ट्यूक और चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया की मंत्री क्लेयर ओ'नील ने प्रधानमंत्री की अगवानी की, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मेलबर्न में सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने श्री मोदी का स्वागत किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मेलबर्न में आज प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। दोनों वाद्य यंत्रों की सुर और ताल ने भारत और ऑस्ट्रेलिया की सांस्कृतिक साझेदारी को सजीव रूप में प्रस्तुत किया। इसके बाद मेलबर्न की प्रसिद्ध कथक नृत्य अंगना संचिता ओब्रोल के नेतृत्व में कथक नृत्य की आकर्षक प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने एआर रहमान के प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: श्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। वो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय समुदाय से मिलने का भी अवसर मिलेगा, जो भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार है। प्रधानमंत्री तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबनन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा भी लिया। श्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
2: योग्यकार्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
1: इस अवसर पर राष्ट्रपति प्रबोवो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। भारत और रूस ने आज संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, यूरेशियन समूह और शंघाई सहयोग संगठन सहित बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित हुई। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक आतंकवाद की स्थिति पर विचार विमर्श किया और कट्टरपंथ आतंकवाद के वित्त पोषण जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत

0: क्राउन प्रिंस शेख सबा अल खालिद अल सबा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र के घटनाक्रम पर अपने विचार साझा किए। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने आज ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। रॉकेट का परीक्षण निर्धारित न्यूनतम 60 किलोमीटर की दूरी के लिए किया गया। पिनाका को आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान ने उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला के सहयोग से डिजाइन किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ, सेना और उद्योग जगत को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। श्री सिंह ने इसे लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट के स्वदेशी डिजाइन और विकास क्षमता में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है, जिससे वर्षा की कमी वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर 178 रह गई है। नई दिल्ली में अलनीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक में श्री चौहान ने कहा कि जून में 33% वर्षा की कमी दर्ज की गई थी, लेकिन जुलाई में ये घटकर 24% रह गई है।
1: जुलाई की अच्छी बारिश से बोनी की संभावनाएं बढ़ गई है। अब बोनी और तेजी से होगी। कल तक 350,85,000 हेक्टर में बोनी हुई है। मानसून में देरी के कारण तुअर, सोयाबीन और कपास पर थोड़ा प्रतिकूल बोनी पर प्रभाव पड़ा है। अब किसानों को यह सलाह दी जा रही है कि इनकी जगह मक्का, बाजरा और मूंग जैसी फसल जो कम समय में आ जाती है, उनकी बुआई को प्राथमिकता दें।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने तेज बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन से बातचीत की। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून के उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में आगे बढ़ जाने की संभावना है।
2: मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भारी बारिश का अनुमान जताया है। विभाग के अनुसार शुक्रवार तक कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी ऐसी स्थिति बनी रहने की संभावना है। आज दिल्ली एनसीआर में हुई हल्की बारिश से गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली। बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया। विभाग के अनुसार राजधानी में दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय है और आने वाले दिनों में भी बारिश होने की संभावना है। विभाग ने कल तक दिल्ली के लिए बिजली गरजने के साथ साथ हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है। ऋषु जायसवाल के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मुंबई से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में लगातार मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है।
3: नासिक और इगतपुरी के कैचमेंट एरियाज में भारी बारिश जारी है, जहां पिछले 24 घंटों में कई इलाकों में 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। भरे हुए डैम से पानी छोड़े जाने के बाद गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके बाद प्रशासन ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में भी भारी बारिश हुई है, जिससे कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। पालघर जिले में पिछले 8 दिनों से लगातार तेज बारिश हो रही है, इसके चलते डैम से सूर्या नदी में पानी छोड़ा गया, जिससे नदी के किनारे के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। वहीं सांगली जिले में शाम के वक्त तेज बारिश शुरू हुई, जबकि कृष्णा और वरना नदियां फिलहाल पूरी कैपेसिटी के साथ बह रही है। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ इस महीने की 15 तारीख तक लगभग 34 करोड़ ईपीएफओ खातों में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज जमा करने का काम पूरा कर लेगा। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि नई केंद्रीकृत आईटी सक्षम सेवा CITES प्रणाली के माध्यम से ग्राहकों के खातों में 1,44,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा की जाएगी। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में जमा 440 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए हैं। ये मामला वित्तीय लेनदेन और संदिग्ध धन की हेराफेरी से संबंधित है। जांच में पता चला है कि अप्रैल

0: 2023 से जून 2026 के बीच पार्टी के बैंक खातों से लगभग 160 करोड़ रुपए एक निजी कंपनी और उसकी संबद्ध इकाई में स्थानांतरित किए गए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा कर दी है। तुर्की की राजधानी अंकारा में नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वे ईरान के साथ बातचीत में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते। हालांकि उन्होंने कहा कि अमरीकी प्रतिनिधि वार्ता जारी रख सकते हैं, लेकिन इसके सफल होने को लेकर उन्होंने संदेह जताया।
1: मुझे लगता है कि अब सब खत्म हो गया है। मैं अब उनसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहता। उनका नेतृत्व बीमार मानसिकता वाले लोग कर रहे हैं। वे क्रूर और हिंसक लोग हैं, और अगर उनके पास परमाणु हथियार होता तो वो लोग उसका इस्तेमाल कर देते।
0: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1677 अंक गिरकर 76,504 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 517 अंक फिसलकर 23,882 पर बंद हुआ। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में 60 पैसे कमजोर होकर 95 रुपए और 56 पैसे पर बंद हुआ।
0: खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज घोषणा की कि तेलंगाना 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा। श्री मांडविया ने कहा कि ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश भर में जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने के दृष्टिकोण से प्रेरित है। पिछले वर्ष मई में बिहार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण की मेजबानी की थी। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा और मार्ता कोत्सुक ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने एलिस मर्टेंस और यूक्रेन की मार्ता कोत्सुक ने जैस्मीन पाउलिनी को हरा दिया। पुरुष सिंगल्स में टेलर फ्रिट्स का सामना अलेक्जेंडर ज्वेरेव से और फ्लेवियो कोबोली का मुकाबला आर्थर फेरी से जारी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहले क्वार्टर फाइनल में शुक्रवार तड़के 1:30 बजे फ्रांस और मोरक्को आमने सामने होंगे। दूसरे क्वार्टर फाइनल में शनिवार तड़के 12:30 बजे स्पेन का सामना बेल्जियम से, और तीसरे क्वार्टर फाइनल में रविवार तड़के 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला होगा इंग्लैंड से। अंतिम क्वार्टर फाइनल में रविवार सुबह 6:30 बजे वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। भारत के वैज्ञानिकों ने पहली बार भारतीय क्षेत्र के ऊपरी आयनमंडल का सटीक मानचित्र तैयार करने की नई तकनीक विकसित की है। ये तकनीक जमीन और अंतरिक्ष से प्राप्त आंकड़ों को जोड़कर विकसित की गई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि इससे उपग्रह संचालन, संचार प्रणाली और नेविगेशन सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मेलबर्न पहुंचे। भारत और रूस ने बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा मॉनसून में सुधार से राहत मिली है, जुलाई में बारिश और तेज होने से खरीफ की बुआई में और तेजी आएगी। केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा की, और विंबलडन टेनिस में यूक्रेन की मार्ता कोस्त्युक और चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9।

0: चर्चा का विषय है।
1: ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है कार्य।

0: कार्यक्रम में प्रस्तुत है अल नीनो के प्रभाव से निपटने के लिए कृषि और जलवायु को लेकर सुरक्षात्मक उपायों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्व अपर महानिदेशक आनंद शर्मा और कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: जब आसमान से आग बरसती है और नदियां रास्ता भूल जाती हैं, जब धरती की छाती प्यास से चटकने लगती है और समंदर की लहरों का मिजाज पूरी दुनिया का भूगोल बदलने लगता है, तब जन्म लेता है एक नाम, एल नीनो। ये सिर्फ मौसम का एक चक्र नहीं है, ये इम्तिहान है हमारी धरती का, हमारी फसलों का और हमारी थाली का। आज जब ग्लोबल वार्मिंग के साए में खेती का भविष्य धुंधला रहा है, तब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हमारे अन्नदाता किसान इस परिवर्तन के लिए तैयार हैं? क्या हमारी कृषि प्रणाली में वो लचीलापन, वो क्लाइमेट रेजिलियंस है जो इस महासंकट का सामना कर सके? इन्हीं सवालों पर आधारित है आज आकाशवाणी का विशेष कार्यक्रम, चर्चा का विषय है। और हमारे साथ स्टूडियो में हैं दो बड़े विशेषज्ञ, मौसम के हर परिवर्तन पर पैनी नजर रखने वाले मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक आनंद शर्मा और देश की मिट्टी और किसानों की नब्ज पहचानने वाले जाने माने कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह जी। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार,
3: धन्यवाद।
1: आनंद जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं और हमारे श्रोताओं और किसानों के लिए आसान भाषा में अगर आप समझाएं कि एल नीनो वास्तव में होता क्या है और प्रशांत महासागर में होने वाली ये हलचल भारत के मॉनसून को किस तरह प्रभावित करती है।
2: एल नीनो का बेसिकली क्या है कि जो आपका पेरू है, पेरू के जो तट है वहां पर सामान्यतः जो सी का, जो समुद्र का तापमान होता है सरफेस का, वो सामान्यतः ठंडा रहता है। बट कई बार ऐसा होता है कि जो आपके ट्रेड विंड्स होती हैं, जो कि यहाँ के जो सरफेस वाटर को पेरू के तट से दूर धकेलती हैं और उसके चलते जो नीचे से पानी आता है समुद्र का, वो इसको ठंडा बनाए रखता है सतह को, और वो नॉर्मल कंडीशंस कहलाती हैं। जब ठंडा है सी सरफेस टेम्परेचर, ला नीना कंडीशंस। बट कई बार ऐसा देखा गया है कि ये जो ट्रेड विंड्स है ये स्लैकन कर जाती है, वीक पड़ जाती है। जब ये वीक हो जाती है तो क्या होता है, जो पानी था वहां जिस उसका सी सरफेस टेम्परेचर था थोड़ा ज्यादा था, वो हटा नहीं पाती और वो वहीं खट्टा रह जाता है। तो सामान्यतः जहां समुद्र का सतह का तापमान कम होना चाहिए था वो बढ़ जाता है। तो इसको कहते हैं एबनॉर्मल वार्मिंग ऑफ पैसिफिक सी ऑफ द कोस्ट ऑफ पेरू, यानी सामान्य से ज्यादा हो जाना सी सरफेस का टेम्परेचर का। और जब ये ऐसा होता है तो ये काफी सारे बदलाव लेके आता है कि जहां कहीं बारिश होती है पहले वहां सूखा पड़ने लगता है और जहां सूखा पड़ता है वहां बारिश होने लग जाती है, तो पूरे पैटर्न को। और दूसरी बात है ये तरह का टेली कनेक्शन है। टेली कनेक्शन का मतलब है कि किसी तरह की समुद्र में या वायुमंडल में होने वाली हलचल एक जगह पे बहुत दूर, हजार किलोमीटर दूर के मौसम को और वहां की प्रेशर को, टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करती है। तो एक तरह का ये टेली कनेक्शन है और 4 से 5 साल के बीच में आता है, पहले भी आ चुके हैं। और जब जब ये आता है तो जैसे जैसे अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में तो वाइल्ड फायर्स हो जाती हैं, हमारे यहाँ पे भी कभी कभार ये मौसम को, मतलब ये मॉनसून को प्रभावित कर देता है। क्योंकि ऐसे साल भी हुए हैं कि जब एल नीनो था मॉनसून खराब हुआ, और ऐसे साल भी हैं कि एल नीनो था और मॉनसून फिर भी ठीक था। और इस बार चर्चा हो रही है कि भाई ये जो है सुपर एल नीनो होने वाला है, हालांकि अभी जो है इतने ज्यादा तापमान नहीं बढ़े, 1 डिग्री के आसपास ही है तो ये ठीक है, मगर बोला जा रहा है, ऐसा प्रिडिक्शन किया जा रहा है कि शायद ये 3 डिग्री तक पार कर जाए, तो ऐसा होता तो ये सुपर एल नीनो होगा, और जब ऐसा हुआ तो शायद ये उसके नेगेटिव इम्पैक्ट मॉनसून पे ज्यादा होंगे। और इस सबको मौसम विभाग ने, एक बड़ी अच्छी बात है कि क्योंकि आजकल ये सारी प्रेडिक्शंस ग्लोबल स्तर पे होती हैं, WMO इसको वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेट करता है, तो ये सब सिग्नल पहले से दे दिए गए थे और मौसम विभाग ने भी इसको फैक्टर इन करा। और उसी को देखते हुए उनकी जो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है, उन्होंने इस बार कहा कि जो हमारा मॉनसून सीजन में हमें करीब करीब 115 सेंटीमीटर जो वर्षा मिलती है, लॉन्ग टर्म नॉर्मल जिसे कहते हैं, वो उसका सिर्फ 90% हमें मिलने वाला है, यानी कि 10% की कोई कमी जो है मौसम विभाग ने इसको फैक्टर इन कर लिया। इसको देखते हुए ने देखा भी कि थोड़ा सा, हालांकि केरल में 1 तारीख को, जून को आता है मानसून, ये 4 तारीख को आया। हाँ, मुंबई और महाराष्ट्र में और जो आसपास के इलाके वहां इसकी मानसून ऑनसेट की थोड़ी देरी जरूर हुई और शायद उसने कुछ एरियाज में सोइंग को प्रभावित किया होगा।
1: हरवीर जी, जब मौसम वैज्ञानिक एल नीनो की चेतावनी देते हैं तो एक आम किसान के खेत में इसका सीधा असर किस रूप में देखने को मिलता है? और आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि एल नीनो की चेतावनी के बाद वो कौन कौन सी फसलें होती हैं जिन पर सबसे ज्यादा खतरा मंडराने लगता है?
3: असल में देखिए, जो खरीफ सीजन है वो हमारे एग्रीकल्चर का एक तो पहला सीजन होता है जब कृषि का साल शुरुआत

0: करते हैं, खरीफ धन रबी। खरीफ का मानसून पर बहुत बड़ी निर्भरता है। हमारे देश में बहुत बड़ा क्षेत्रफल ऐसा है जो एक फसली है खेती जहाँ होती है, और वो इसलिए क्यों, जो वर्षा सिंचित जो क्षेत्र हैं वो भी खरीफ में कवर होते हैं, वो रबी में वहाँ बहुत जगह ऐसी होती है खेती नहीं होती है। और अब भी हमारा ये देखिए कि करीब 50% के आसपास ही हमारा जो हम कहते हैं कि अश्योर्ड इरिगेशन कवरेज जो है, जहाँ पर निश्चित रूप से सिंचाई की सुविधाएं जहाँ पर हैं अस्थायी रूप से, कि बारिश हो या ना हो पानी का इंतजाम फसल के लिए हो जाएगा। ऐसे में करीब करीब 50% जो हिस्सा है वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल इसमें है। और ये भी है कि जब इसके बारे में चर्चाएं इस बार शुरू हो गई, पहले से तैयारियां मीटिंग्स हो रही हैं मिनिस्ट्री में, एग्रीकल्चर में एनडीएमए की मीटिंग हो रही है और मिनिस्ट्री में भी हो रही है, तो वो चिन्हित किए गए कौन से ऐसे जिले हैं जहां डिस्ट्रेस बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि वो जो किसान इंतजार कर रहे थे कि हमें फसल बोनी है जब बारिश होगी, तो उनको इसके लिए दिक्कत हुई। और उसका नतीजा ये है कि देखिए जून में जैसे शर्मा जी ने बताया कि मानसून थोड़ा डिले आया, और उसके बाद फिर जब वेस्ट कोस्ट की तरफ आता है तो वो बहुत ही स्लो उसका प्रेशर था, तो बेसिकली वीक जिसे हम कहते हैं वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था, और बीच में बहुत बड़ा गैप आ गया था, एक ब्रेक जिसे कहते हैं वो आ गया। अब उसमें जब ये सब हिस्से आपके जो वेस्टर्न पार्ट है हमारा और इवन कुछ सेंट्रल है, वहां पर ये जो बारिश पर आधारित जो खेती है उसका काफी बड़ा हिस्सा है। तो अब नतीजा ये हुआ कि वहां पर जो किसान समझता था कि मुझे बुआई करनी है तो वो डिले हो। अभी जो लेटेस्ट डाटा अभी 5 तारीख तक के आए हैं उसमें खरीफ में जो एवरेज हमारा जो सोन एरिया होता है वो करीब 21% से पिछड़ा हुआ है, और इसमें जो मार पड़ी है उन फसलों पर पड़ी है जो थोड़ा सा जिनको मार्जिनल क्रॉप बोलते हैं, कि जो एश्योर्ड इरिगेशन में फार्मर उनको नहीं बोता और ये लगता है कि बारिश होगी तो बो देंगे, जिसमें दालें हैं तिलहन बड़े पैमाने पर है। तो ये जो नुकसान है हमें ये बड़ा है, इसकी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अलग तरीके से देखेगी, एग्रीकल्चर अलग तरीके से देखेगा, रिजर्व बैंक अलग तरीके से देखेगा। एक तो पहला तो स्टेप यही है कि एडवाइजरीज जो जारी है कि भाई किस तरीके से कौन सा फसल आपको अभी उगानी चाहिए, क्या शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप पे जाना चाहिए, क्या आपको जो कम अवधि की जो फसलें हैं थोड़ा देर से आप बोएं, जून में नहीं बो पाए, जुलाई 15 तक नहीं बो पाए, लेकिन फिर भी आप इस वैरायटी का इस्तेमाल करेंगे तो आप अच्छी उपज ले सकते हैं, या फिर आप फसल चक्र बदल दीजिए, ये फसल इसमें कम बारिश में हो सकती है। तो ये इस तरह की एडवाइजरीज पहले स्तर पर किसानों तक पहुंचती है, वो जो समाचार माध्यम है या सरकारी जो माध्यम है उनके जरिए जाता है, आपके जो कृषि विज्ञान केंद्र है उनके जरिए जाता है, तो वो सब एडवाइजरीज उस तरीके से, अब तो तमाम सारा प्राइवेट सेक्टर भी एक्टिव है एग्रीकल्चर में, उनके जरिए भी जाता है। तो ये तो एक तरीके से किसान को सूचना पहुंचाने का काम है कि आप अपना फैसला आप ले सकते हैं इस परिस्थिति में, आपको के लिए क्या उचित फैसला है। तो ये किसान के स्तर पर है और ये सरकार दोनों के बीच में ये एक तरीके का इंफॉर्मेशन का एक जो फ्लो है उसका बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि उस पे हमारा कोई अधिकार नहीं है, मतलब बारिश नहीं होगी कम होगी तो उसको तो नहीं कर सकते। हाँ, उसको मिटिगेट करने के लिए और कई सारे स्टेप्स जो है जो सरकार लेती है या जो कंसर्न मिनिस्ट्रीज लेती है वो फिर अगले कदम इसके बाद नेक्स्ट जो अगले स्टेज में शुरू होता है।
1: आनंद जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे और देश के बहुत सारे श्रोता और किसान भी समझना चाहेंगे कि क्या क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग, जो दो फैक्टर पिछले 20-25 वर्षों में बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं, क्या उनका भी एल नीनो की घटनाओं से सीधा संबंध है? जो डेटा है वो इस बारे में क्या कहानी कहता है?
2: ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज भी है, पर एक चीज पे हमें और ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे यहाँ जो क्लाइमेट वेरिएबिलिटी है ना वो इतनी ज्यादा है, और ये जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है ये थोड़ा एडेड प्रेशर है। मैं ये कहूंगा कि सारा नहीं, जो लोग मानते हैं सारा क्लाइमेट चेंज नहीं, 95% तो आपकी क्लाइमेट वेरिएबिलिटी, और क्लाइमेट वेरिएबिलिटी इतनी है, मैंने जैसे बताया कि 2002 में कितनी जबरदस्त पूरा जून में बारिश ही नहीं मिली आपको, सो नेचुरल वेरिएबिलिटी हमारी बहुत ज्यादा है, और ऊपर से ये अब एक्स्ट्रा प्रेशर हमारे ऊपर आ गया है। और लोगों का मानना है कि भाई जिस तरह से कि मतलब एटमॉस्फेयर की वार्मिंग हो रही है, हीट वेव्स हो रही है, वैसे ओशन भी वार्म कर रहे हैं, सो नेचुरली वहां पे भी वार्मिंग होगी तो शायद और एल नीनो स्ट्रांग हो जाए, वो उनका मानना है। बट मेरा फिर भी मानना है कि हमने इससे भी वर्स्ट सिचुएशन को झेला है, तो हमारी यदि तैयारी अच्छी होगी, हमारी वार्निंग अच्छी होगी, जिसे हम कहते हैं ना फोर वॉर्न्ड इज फोर आर्म्ड, आपने वार्निंग पहले से दे दी और आपने तैयारी करी है, कंटीजेंसी प्लान की आप महावीर जी बात कर रहे हैं तो बिल्कुल सही बात है। हमारी यदि 200 डिस्ट्रिक्ट जो है हमने चिन्हित कर दिए हैं जो कि एग्रीकल्चरली स्ट्रेस प्रोन है,
1: प्रभावित होंगे,
2: वो पहले से चिन्हित है। ICAR के बाद निकरा प्रोजेक्ट है, न्यू इनोवेशन इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, वो हमारे पहले से तैयारी है। 2500 के करीब हम लोगों के पास कहते हैं ड्राउट स्ट्रेस रिलेटेड जो है, फ्लड रिलेटेड जो है वेराइटीज हैं जो फ्लड में भी काम कर जाएंगी, ड्राउट हुआ तो

0: कैमरा अगले हफ्ते ऐसा होने वाला है, लॉन्ग रेंज फोरकास्ट ये है। तो अब सारे एक्सपर्ट बताएंगे फर्टिलाइजर अवेलेबल है, शॉर्ट ड्यूरेशन यदि बोना है तो क्या उसके बीज भी उपलब्ध है कि नहीं है। तो ये सब तैयारी रहती है, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड सब कुछ, सबकी तैयारी, पानी है रिजर्वायर में कितना है। एक समय आ गया था कि मुंबई में पीने का पानी की किल्लत होने वाली थी, मगर वो और एक डेफिसिट 20-21% पहुंच गया था मानसून का, वो शायद अब 10 के आसपास आ गया है, तो वो भी काफी कवरेज तो हुई है। तो मगर मेरा कहने मतलब है कि तैयारी सरकार की अच्छी है, आपके पास हर तरह की वैरायटी है, और साथ साथ जो मौसम पे आधारित खेती करनी है, जो हमारे क्रॉपिंग पैटर्न हो वो हमेशा ऐसे होने चाहिए कि जहाँ का एग्रो क्लाइमेट है अकॉर्डिंग नहीं है। ऐसा ना हो जैसे कि शुगर केन महाराष्ट्र लगा रहा है सेमी एरिड एरिया है, पैडी लगा रहा है कौन पंजाब सेमी एरिड एरिया, ये क्रॉप ह्यूमिड एरिया की क्रॉप है क्योंकि वहाँ पानी फ्री मिल रहा है उनको, बिजली फ्री है, तो वो इसलिए वो लगा रहे हैं और उसको प्राइस अच्छा मिलता है। मगर ऐसी जगहों पे लगाने हैं मिलेट्स, एक चीज। और दूसरी बात जो मौसम विभाग समय समय पे बताता है आपको, गुड वेदर प्रैक्टिसेस एंड बैड वेदर प्रैक्टिसेस। यदि आपका पानी बरस रहा है तो भैया इस समय हार्वेस्टिंग कर लो ना, बरसात से पहले से आपके सारे तालाब वालाब साफ करके उसकी कैपेसिटी बढ़ानी है हमको
1: जी।
0: तो वो करके तैयारी रखें अपनी। अच्छा फिर उसके साथ ये भी करें, बैड वेदर है जब बताया कि भाई अलिनो है इस बार, मानसून थोड़ा खराब होने का चांसेस है, तो हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: तो ये गुड वेदर कोड बैड वेदर कोड बिल्कुल बनी पड़ी है। तो उसके लिए कृषि मंत्रालय, मौसम विभाग, एनडीए में सारे जो हैं बिल्कुल आपस में उसमें रहते हैं, और समय समय पर क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप मीटिंग्स होके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से और सबको ये जानकारी दी जा रही है इस समय क्या करना है आपको। और सबसे बड़ी उसमें बात मैं कहूँगा कि सरकारों को थोड़ा सा ये मेरे को और स्ट्रेस ये देना पड़ेगा, हमें इरीगेशन जो है ना कैनाल इरीगेशन और दूसरे इरीगेशन को और बढ़ाना है। देखिए जो स्टेट्स पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न यूपी जिनमें इरीगेशन फैसिलिटी है या फिर ग्राउंड वाटर उनको मिल जाता है, वहाँ कभी फसल नहीं खराब होती। आप देख लीजिए वहाँ पे यदि बारिश कम हो जाए ना बल्कि फसल और अच्छी होती है क्योंकि धूप अच्छी मिल रही है, बीमारी नहीं होती वहाँ पर, फंगस नहीं आती है, और पानी जब चाहिए वो निकाल के सोई कर देते हैं। और ये भी ध्यान रख लीजिए क्रॉप को जैसे मान लीजिए 4 महीने की है तो 4 महीने पानी नहीं चाहिए
1: जी।
0: सिर्फ 4 और 5 क्रिटिकल स्टेजेस होती हैं, उन 5 क्रिटिकल स्टेजेस पे ही पानी चाहिए। और कई बार ऐसा भी देखा गया है वर्षा तो सामान्य है सामान्य से ज्यादा है, मगर वो क्या हुआ कि महीने के शुरू में मिल गई एंड में मिल गई और बीच में 3 हफ्ते नहीं मिली,
1: जब जरूरत थी तो नहीं मिली।
0: तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अब मौसम विभाग आज के इसमें आपको फोरकास्ट तो दे रहा है कि भाई मानसून की वर्षा कम होगी, मगर मेरा ही मानना है ऐसा भी तो हो सकता है कि 90% के 85 भी हो गई, और 85 भी इतनी है कि आपकी जो फसलें ज्यादातर जो धान और शुगरकेन को छोड़ दीजिए, बाकी को सिर्फ 500 मिलीमीटर वर्षा चाहिए। और यदि आपके समय समय पर मिल गई ये वर्षा तो आपकी फसल निकल जाएगी, मगर उसके साथ साथ किसानों को क्या करना है, किसान क्या कर रहा है, उसके पास एक लाइफ सेविंग इरीगेशन भी नहीं है तो वो तो जुआ खेल रहा है। एटलीस्ट 1 या 2 लाइफ सेविंग इरीगेशन तो रखे, जैसे 3 हफ्ते का पीरियड आया नहीं मिली वर्षा तो एक लाइफ सेविंग इरीगेशन यूज कर लिया, थोड़ी देर बाद उसको जरूर वर्षा मिलेगी। कभी ऐसा नहीं होता कि आपको 5 हफ्ते वर्षा मिलेगी, नहीं ऐसा नहीं होता कभी भी। तो ये तैयारी हमारी होगी तो हम किसी भी सिचुएशन को झेल सकते हैं, इससे भी वर्स्ट सिचुएशन हमने झेली है और इसको भी हम अच्छे से झेलेंगे।
1: हरवीर जी, जलवायु अनुकूलन क्षमता यानी क्लाइमेट रेजिलियंस की बात करते हैं, और आज जो हमारा चर्चा का विषय का टॉपिक है वो भी इसी पर आधारित है। सबसे पहले तो आपसे ये समझना चाहेंगे ये होता क्या है और व्यवहारिक रूप से किसान अपने खेत को जलवायु अनुकूल कैसे बना सकता है।
2: जो वेदर का जो एक पैटर्न है और क्लाइमेट, वो उसमें बड़े तेजी से बदलाव आ रहे हैं। एक तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बहुत बढ़ गए हैं, एक्सट्रीम हीट, सडनली वेरी हैवी रेनफॉल और ड्राई स्पेल, तो ये जो इंसिडेंट्स है ये सीधा क्लाइमेट चेंज का इंडिकेशन है और उसी से ये होता है जब अनयूजुअल इस तरह की घटनाएं होती हैं। अब इसमें एक तो पक्ष ये है कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो काम कर रहे हैं कि हम क्लाइमेट रिजिलिएंट क्रॉप यानी कि ऐसी प्रजातियां जिसमें ऐसा लचीलापन है सर्वाइव करने के लिए कि अगर दोनों चीजों में फ्लड में भी सर्वाइव कर जाए उस तरह की भी किस्में, और अगर उसको स्ट्रेस आता है उसमें भी वो सर्वाइव कर जाए कम पानी में कम न्यूट्रिशन में। ये इस तरह की प्रजातियां वैसे तो बहुत बड़े पैमाने पर ICAR और हमारे जो एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट्स हैं उन्होंने डेवलप की है, बट इसमें अब ये देखना पड़ेगा कि वो किसानों की पहुंच में कितना है। आप कहें कि हमने 2200 वैरायटी रिलीज कर दी, बट अगर किसान को यही नहीं पता कि इनमें से कौन सी वैरायटी ऐसी है जो आज की परिस्थिति में मेरे लिए उपयोगी है, और उससे भी आगे क्या उसका सीड उसे अवेलेबल है, वो कहाँ से अवेलेबल है, वो क्या किसी पब्लिक सिस्टम का जो सीड डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिस्टम है वो नेशनल सीड कॉरपोरेशन हो या कुछ कोऑपरेटिव के संस्थान है वो हो या फिर प्राइवेट जो कंपनीज है उनके जरिए या उस तरीके से उपलब्ध है क्या, और उसका एग्जैक्टली देखिए होता क्या है कि अभी भी ये टेंडेंसी है, और इसमें क्योंकि जब आप इनकम पैरिटी की बात करते हैं क्रॉप की, अल्टीमेटली

0: व्हाट इज एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर इज ऑल्सो ए बिजनेस. किसान के लिए वो एक व्यवसाय है, अपने सर्वाइवल का, अपने वेलबींग का. शर्मा जी कह रहे हैं कि पंजाब में जो है आपको धान बहुत ज्यादा नहीं उगाना चाहिए, बासमती उगाना चाहिए. गैर बासमती में हाई वैल्यू क्रॉप है. गैर बासमती आप ईस्टर्न इंडिया के लिए छोड़ दीजिए, वहां बहुत पानी है. लेकिन अब क्या है कि अगर वो वहां पर कॉटन ग्रो करता है, कॉटन में कम पानी चाहिए. लेकिन क्या है कि पिछले 10 साल 15 साल से हम लोग देख रहे हैं कि कॉटन की क्रॉप बहुत वल्नरेबल हो गई है पेस्ट एंड डिजीज के लिए. हम नई किस्में नहीं ला पा रहे हैं जो किसान को एश्योर करे कि इस बार इसको लगाइए, पानी भी बचेगा, आपकी आमदनी भी ज्यादा होगी. तो जब तक आप उसको एक कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं देंगे फार्मर को, और उसका पहला प्रायोरिटी है मेरी आमदनी कैसे हो. जैसे मिलेट्स की बात कही है, अगर आप मिलेट ग्रो करेंगे और उसके लिए मार्केट नहीं होगा, उसके लिए प्रोक्यूरमेंट का सिस्टम नहीं होगा, हमारे जो कंज्यूम करने वाले लोग हैं बड़े पैमाने पर उसको कंज्यूम नहीं करेंगे, तो फिर वो मिलेट के लिए उसको दाम कैसे मिलेगा. ये मल्टीपल चीज, जैसे मैंने कहा दालों का प्रॉब्लम है बट फिर भी नहीं ग्रो कर पा रहे फार्मर्स. तो यहाँ पर बहुत बड़ा रोल टेक्नोलॉजी का आता है. और बहुत सारी ऐसी क्रॉप हमारी है जहाँ पर अभी तक हमें टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू नहीं मिल पा रहा है, डिस्पाइट वर्ल्ड्स मोस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट रिसर्च सिस्टम इन एग्रीकल्चर. तो अब उसमें हमारे साइंटिस्ट की भी जिम्मेदारी बनती है. देखिए, किसान साइंटिस्ट नहीं हो सकता. दूसरे, हमारा जो एक्सटेंशन सिस्टम है, एक्सटेंशन का जो बड़ा रोल है वो बहुत बड़ा रोल है. एक्सटेंशन सिस्टम को लगातार रिफॉर्म करने की बात हो रही है. इस बजट में भी विस्तार की बात आई है. AI की बात हम लोग कर रहे हैं कि कैसे किसानों को बेहतर, ये सारा एक्सटेंशन वर्क है, उसको कैसे एक बेहतर जानकारी उपलब्ध हो. और ये राज्यों का विषय ज्यादा है एग्रीकल्चर. तो जो राज्य सरकारें हैं उनकी भूमिका इसमें बहुत ज्यादा हो जाती है. और वहां पर जो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर है या जो बाकी जो लोग हैं जो एक्सटेंशन में काम करते हैं, उनको मेरे ख्याल से ज्यादा सशक्त करने की और उनका नंबर बढ़ाने की जरूरत है. तो ये तैयारियां तभी किसान समझ पाएगा. दूसरे क्या है कि जैसे हमारा रेनफेड एरिया अथॉरिटी है, वो वाटरशेड सिस्टम चलाता है और उसके लिए एक अच्छा खासा बजट है. हमारा जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है उसमें वाटरशेड के लिए, तो ये उन इलाकों के लिए है जो ये ड्राउट प्रोन इलाके हैं. जैसे आपने कहा कि अगर बारिश नहीं हुई और एक सिंचाई भी उस वक्त उसको मिल गई तो क्रॉप सर्वाइव कर जाएगी. तो वहां पर जो वाटर बॉडीज हैं या पॉन्ड्स हैं या लेक्स हैं, उनमें चेक डैम बना के और पानी को रोका जाता है और फिर वो इक्विटेबली जो फार्मर्स हैं वहां के, बहुत जगह तो क्या है कि फार्मर्स के अपने कलेक्टिव्स और यूनियंस बनी हुई हैं, ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए हैं, वो आपस में तय कर लेते हैं प्रायोरिटी के आधार पर कब हमें इसका इस्तेमाल करना है. तो जो इस तरह के जो स्टेप्स हैं वो जिस तरह की परिस्थिति ड्राउट के टाइम पे आती है उसमें बहुत कारगर होते हैं, क्योंकि आपकी फसल को एक पानी चाहिए और आपके पास ऐसा ट्यूबवेल नहीं है, बोरवेल नहीं है कि आप इमीडिएटली सिंचाई कर सके. आप छोटे किसान हैं, हमारे 89% जो फार्मर हैं वो मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स हैं, उनका जो इन्वेस्टमेंट की जो कैपेसिटी है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में वो बहुत सीमित है. तो ऐसे में पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए काम करता है. हाँ, ये है कि पिछले कुछ वर्षों में कई चीजें हुई हैं, जैसे कि सोलर पंप का हुआ है, फिर हमने माइक्रो इरिगेशन पे फोकस किया है, माइनर इरिगेशन पे फोकस किया, वो सब इस तरीके के इलाकों के लिए है. और आप जो है कि कम पानी में टेक्नोलॉजी का जब इस्तेमाल करते हैं, जो ड्रिप है या स्प्रिंकलर इरिगेशन है, राजस्थान में बड़े पैमाने पर स्प्रिंकलर का इस्तेमाल होता है, फ्लड इरिगेशन नहीं होता हरियाणा पंजाब वेस्टर्न यूपी की तरह, क्योंकि उनको पता है कि पानी की एक एक बूंद की वैल्यू क्या है. तो ये जो चीजें हैं, ये सारा सिस्टम आपको इस तरह की परिस्थिति से लड़ने में मदद करता है. और इसमें ये भी बात है कि जैसे मैंने कहा कि किसानों को सही जानकारी, प्रशिक्षण और जो अवेलेबिलिटी है, वो न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी हो, फर्टिलाइजर की जब हम बात करते हैं, या बीमारी आ जाए तो जो एग्रोकेमिकल्स हैं उनकी हम बात करते हैं, और पानी. लेकिन पानी सबसे किसी भी फसल को आगे तक ले जाने के लिए, उसको तैयारी और उसके उत्पादन के लिए, वाटर इज द फर्स्ट रिसोर्स और फॉरमोस्ट, सबसे महत्वपूर्ण रिसोर्स है वो पानी है.
1: आनंद जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, अगर हम आकाशवाणी की बात करें तो आकाशवाणी की लोकप्रियता इसलिए भी है क्योंकि जहां सुविधाएं नहीं है वहां लोग आकाशवाणी को सुनते हैं. मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि कुछ किसान ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन है, जो AI के थ्रू ऐप को भी समझते हैं, मौसम वैज्ञानिक जो सूचनाएं देते हैं वो भी उन तक पहुंच रही है. जैसा कि हरवीर जी ने कहा कि 89% के आसपास छोटे किसान हैं और उसमें एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो अब भी तकनीक से दूर है. वहां तक मौसम विभाग मौसम की चेतावनी जानकारी पहुंचाने के लिए क्या कुछ नए कार्यक्रम शुरू कर रहा है या किया है, उसके बारे में थोड़े हमारे श्रोताओं को जानकारी दें.
2: बिल्कुल, इसमें हमारे मौसम विभाग ने एक ऐप बनाया है मेघदूत. उस मेघदूत में जो है मौसम की पूर्वानुमान होता है और मौसम पे आधारित कृषि सलाह होती है. क्योंकि देखिए, दो तरह की सलाह होती है, एक होता है पैकेज एंड प्रैक्टिस ऑफ खरीफ क्रॉप, रवि क्रॉप, कि इतनी खाद लगाना है, इतना इरिगेशन लगाना, वो एक नॉर्मल एडवाइजरी है। पर हम जो देते हैं एडवाइजरी, वो है वेदर बेस्ड एडवाइजरी, मौसम पे आधारित। यानी कि बारिश आने वाली है तो भैया इरिगेशन पोस्टपोन कर दीजिए, आपका पानी बच जाएगा, बिजली बच गई। मान लीजिए आपकी फसल में बीमारी लगी है, आपको कहते हैं स्प्रे करना है केमिकल, बारिश आने वाली है। मैं कहूंगा नहीं, अभी पोस्टपोन करिए, बारिश के बाद करना, नहीं तो आपका केमिकल बह जाएगा और आपका पैसा भी वेस्ट जाएगा और वो जाके ग्राउंड वाटर को पोल्यूट करेगा या आपके पॉन्ड को करेगा, फिश में जाएगा, आप फिश खाओगे, आपकी हेल्थ को कैंसर होगा, एनवायरमेंट को खराब करेगा। तो वो एक बड़ी अच्छी बात होगी। तो इसमें मेघदूत एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ हमारे पास वेबसाइट है, वेबसाइट पे भी सारी जानकारी रहती है। और आपने कहा फोन, फोन उससे भी मिलता है और उसमें भी आजकल ऐसा है कि आप यदि पढ़ नहीं सकते हैं तो आप सुन सकते हैं उसको, वॉइस में ला सकते हैं। और उसके और इम्पोर्टेंट बड़ी चीज है कि आप हर जैसे कि विलेज के कह लीजिए पंचायत लेवल पर कियोस्क खोल दें, जहां पे भाई एक एक्सपर्ट रहेगा, उसके पास कंप्यूटर है, वो आप कंप्यूटर पे किसान वहां चले जाएगा, वो देख के फटाफट उसको बता देगा जी मेरे यहाँ का वेदर क्या है, बता दीजिए फटाफट देख देख के, वो एक्सेस करके उसको सिंपल भाषा में बता देगा, कौन सी फसल एडवाइस करेगी वो भी बता देगा, कहाँ अच्छे दाम मिलेंगे वो भी बता देगा। तो ये जो एक्सटेंशन कियोस्क है, ये मुझे लगता है जिसे कहते ना, जैसे कि एक एक सेंटर जरूर रहने चाहिए इन एरिया में जहां पे किसान आके ये सब चीजों को वो कर ले एक। और उसके अलावा हमें और क्या करना है कि जो भी मौसम की जानकारी है और सलाह है, वो हर गांव के अंदर एक जो वहां का सरपंच होता है उसको जरूर भेजे, जीते हुए को, और एक हारा हुआ सरपंच उसको भी भेज दे, क्योंकि जीता वो अपने बंदों को देगा शायद दूसरे को ना दे, तो उसको भी दे दीजिए। तो इन दो के पास पहुंच गया तो सोच ले आपके गांव के सब लोगों के तो जानकारी पहुंच गई। तो यदि ये हम करते हैं, वेबसाइट भी है, रेडियो टीवी अखबार भी है, और साथ साथ ऐप भी है, वेबसाइट भी है, फोन भी है, और ये कियोस्क भी है। और सबसे बड़ा रोल जो है मैं आज जो मानता हूं वो है रेडियो का। एक समय ऐसा था जब हम बचपन में बड़े हो रहे थे तो रेडियो बहुत पॉपुलर था, टीवी अभी आया नहीं था, या आया भी था तो किसी के पास होता नहीं था। और फिर जब टीवी आया तो रेडियो की इम्पोर्टेंस कम हो गई। मगर मैं अब ये कह रहा हूँ, ये अब ये युग है जो रेडियो का युग है, कम्युनिटी रेडियो। तो छोटे छोटे कम्युनिटी रेडियो स्टेशन खोलने होंगे पूरे हमें हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, बल्कि अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे अलाउ कर दिया है। तो कम्युनिटी रेडियो खोलिए। और रेडियो भी कैसे आ गए आज की डेट में, जिसमें बिजली नहीं चाहिए, बैटरी नहीं चाहिए, हैंड वाइंडिंग है, आप पीछे हैंडल लगाए 60 बार घुमाइए घंटा चलेगा, और उसमें टोन अलर्ट भी है। यदि मौसम विभाग ने कोई वार्निंग दी है तो वो वार्निंग भी वो टू की आवाज करेगा कि भाई इसको ऑन करना है। तो इस तरह की जो आज का आ गई, तो मुझे लगता है कम्युनिटी रेडियो को पॉपुलराइज कराना है, लोगों को सरकारें फ्री बांटे रेडियो इनको, जिसमें बिजली नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, ऑल वेदर कम्युनिकेशन हो जाएगा आपका, कोई भी डिजास्टर हो उस समय भी ये रेडियो आपके काम आएंगे। तो मुझे लगता है ये सब चीजें हम करें तो हमें जो लास्ट माइल, मतलब आखिरी आदमी तक हमें पहुंचना, वो तो एक है ही है, उसके साथ साथ है क्रूशियल माइल कनेक्टिविटी। यानी कि इस समय यदि डिले हुआ मानसून तो कहां हुआ, महाराष्ट्र वाले इलाके में, आसपास के इलाकों में। तो उनको पहले से सूचित करना, भाई मानसून आपके यहाँ डिले है और इतने दिन का डिले होने वाला है, तो आप अभी रुक जाइए थोड़ा, एकदम सोइंग पे मत जाइए। या फिर वर्षा अभी थोड़ी सी मिली है तो कई बार क्या होता है कि मॉइस्चर आया पर इतना नहीं है कि आपको वो सर्वाइव करेगा लॉन्ग पीरियड में। आपने सोइंग तो कर दी और बाद में एक हफ्ते में उड़ गया वो मॉइस्चर, तो आपका जर्मिनेशन प्रभावित हो जाएगा। तो सोइंग रेन कब होंगी, तो वो भी मौसम विभाग बताते हैं, जो हम मौसम आधारित एडवाइजरी देते हैं, व्हेन टू सो, व्हेन टू हार्वेस्ट, व्हेन टू इरिगेट, हाउ मच टू इरिगेट, व्हेन टू स्प्रे केमिकल्स, ये सारी चीजें मौसम आधारित जो कृषि सलाह दी जाती है मौसम विभाग और कृषि मंत्रालय दोनों से मिलके, वो बहुत पॉपुलर हो रही है। तो मुझे लगता है वो सरकार को इसमें पूरा जोर देना चाहिए और इस सर्विस को हमें हर किसान तक पहुंचाना है, कैसे भी पहुंचाना है। और यदि हम ये पहुंचाते हैं तो डेफिनेटली हम प्रिपेयर होंगे, किसान प्रिपेयर है, और जैसा आपने कहा एक उसके लिए पूरा एक इकोसिस्टम तैयार करना है। एक्सटेंशन सर्विस बेहतरीन होनी चाहिए, कहाँ से फर्टिलाइजर मिलेगा, कहाँ से केमिकल मिलेगी, कहाँ से सीड मिलेगा, कहीं वो डुप्लीकेट तो नहीं ले जा रहा, उसको गलत बीज तो नहीं मिल रहा, कहीं वो सुनिश्चित करना होगा। और उसके प्राइस भी ऐसा करना, ये ना हो किसी वो ऐसे दुकानदार से ले जाए जो उसको 36% रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहा है, तो लो इंटरेस्ट पे ये सारी चीजें उन्हें मिले। और साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि एश्योर्ड इरिगेशन, और वो चार नहीं पांच नहीं, एटलीस्ट एक या दो भी आपके पास लाइफ सेविंग इरिगेशन होंगे तो फसल आपके निकल जाएगी।
1: हरवीर जी, कार्यक्रम के अंत की तरफ हम बढ़ रहे हैं, कुछ व्यवहारिक सवाल पर चर्चा कर लेते हैं। एलनीनो की बात हम कर रहे हैं, अगर एलनीनो के कारण भारत के कुछ हिस्सों में मानसून से कम वर्षा होती है तो आपकी क्या सलाह है किसानों को कि वो सिंचाई के किन वैकल्पिक माध्यमों को अपनाएं, अगर कुछ राज्यवार आप बता सकें तो।
0: नहीं देखिए, जो आपका जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है उसमें राजस्थान को आप छोड़ दें, पंजाब है, हरियाणा है, यूपी का बड़ा हिस्सा है, सिर्फ वेस्टर्न यूपी नहीं, अब ईस्टर्न यूपी और उधर भी कैनाल इरिगेशन है। मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर इरिगेशन में काम हुआ है, और हमारा जो ईस्टर्न इंडिया है वहाँ पर बोरवेल्स जो है। तो अब ये देखना पड़ेगा कि वो जो आपके सिंचाई के जो संसाधन है वो दुरुस्त हों, जब भी जरूरत हो आप उसका इस्तेमाल कर सकें, ये एक इम्पोर्टेंट बात है। दूसरे देखिए क्या है कि ऐसी परिस्थिति में

0: सरकारें किसानों की मदद करती रही हैं, उसमें यह है कि क्या अगर इवन आपका जो पावर सप्लाई है उसका कंस्ट्रेंट भी है तो भी आप इरिगेशन के लिए एक्स्ट्रा पावर उपलब्ध कराते हैं और उसका एलोकेशन किया जाए, पहले से प्लानिंग करके रखना चाहिए। उसी तरीके से कई जगह जहां कमजोर किसान है वो सरकार देखे किस तरीके से उसका उनको डिसीजन लेना है, लेकिन जब अगर बारिश कम होगी तो किसान की लागत बढ़ती है क्योंकि उसको सिंचाई के ऊपर अधिक खर्च करना पड़ता है। तो ऐसे में क्या उनको सिंचाई के लिए कुछ आर्थिक मदद स्पेशली उस टाइम के लिए दी जा सकती है? पहले भी दी जाती रही है, डीजल वगैरह के ऊपर सब्सिडी दी जाती रही है चाहिए, और मेरा मानना है कि सरकार ने अब समझ लिया है और काफी कुछ निर्भर करेगा। जैसे शर्मा जी ने बताया कि मानसून का क्या होता है, कि मानसून अगर 10% कम भी रहता है उसकी अहमियत क्या है, कि उसका जो हमारा मानसून का पीरियड है जून टू सितंबर, उस पूरी अवधि में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहा है और ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहा है। अगर ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है तो कोई मुश्किल नहीं है, और अगर पता लगा आपको जुलाई में बहुत बारिश हो गई उसके बाद अगस्त में आपके पास बारिश नहीं है, तो ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी और समय के हिसाब से जो हमारा विभाग है, कृषि विभाग है या सरकारों के जो सिंचाई विभाग है और जो ये तमाम सारे इन सबको विभागों को आपस में तालमेल बैठा कर कि किसान को कहाँ जरूरत है वहाँ उसको मदद करने की जरूरत है। और किसान भी अब ऐसा नहीं है, बहुत सारे अब बहुत चीजें बदली हैं, बदलाव कृषि में भी आया है, वो समझदार हैं, पढ़े लिखे भी हैं, चीजों को समझते हैं, टेक्नोलॉजी को भी समझते हैं और फैसले भी बेहतर तरीके से ले सकते हैं, तो एक अच्छा तालमेल बैठा है तो इस मुश्किल को पार कर सकते हैं।
1: जी हाँ, मौसम बदलेगा, चुनौतियां आएंगी और एलनीनो जैसी महाशक्तियां हमारी तैयारियों को परखेंगी भी, लेकिन इतिहास गवाह है कि भारत के किसान ने कभी हारना नहीं सीखा। विज्ञान की सटीक भविष्यवाणियां और कृषि के आधुनिक तौर तरीके अगर हमारे अनुभव के साथ मिल जाएं तो सूखी मिट्टी से भी सोना उपजाया जा सकता है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हम मौसम के बदलावों से डरे नहीं बल्कि अपनी रणनीति से उसे मात दें। आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए हरवीर जी आपका, आनंद जी आपका बहुत बहुत आभार।
2: धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: हम अपने तमाम श्रोताओं से बस यही कहना चाहते हैं कि बदलते दौर में सजग रहिए, वैज्ञानिक सलाह अपनाइए और अपनी खेती को सुरक्षित बनाइए। नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे अल नीनो के प्रभाव से निपटने के लिए कृषि और जलवायु को लेकर सुरक्षात्मक उपायों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्व अपर महानिदेशक आनंद शर्मा और कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: चर्चा का विषय है

आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम चर्चा का विषय है। अभी आप सुन रहे थे, ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 MHz पर।

रात के 10 बज रहे हैं और आज दिन बुधवार है, यानी महीने का दूसरा बुधवार। आइए सुनते हैं उड़िया कार्यक्रम।

मासिक उड़िया कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। सभी सुनने वालों को आने वाले रथ यात्रा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के इस अंक में सबसे पहले

0: आइए सुनते हैं वार्ता। विषय है रथ यात्रा महायात्रा। वार्ताकार हैं प्रतिभा माइती।
1: जय जगन्नाथ। श्रोता बंधु, मु प्रतिभा माइती आपनको सम्मुखरे महाप्रभु श्री जगन्नाथक प्रिय रथयात्रा विषय रे किछि कहिबाकु जाउछि। आमर पवित्र कलाभूमि उत्कल श्री जगन्नाथक बखेर धरि पालिटिछि पुरुषोत्तम क्षेत्र। ओडिशार कला संस्कृति नृत्य संगीत पर्वपर्वाणी खाद्यपेय चालीचलनी परि जनजीवन प्रतिटि पक्ष जगन्नाथंकर संस्कृति सह उत्प्रेत भावरे जड़ित। प्रति ओडिशार हृदयर अनिष्ठाता श्री जगन्नाथंकर रीतिनीति अनुसारे अनेक पर्वपर्वाणी ओडिशारे पालन करा जाए। एही सब पर्वपर्वाणी मध्यरु विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा एक मुख्य पर्व। ओडिशार इष्ट देवता बड़ ठाकुर महाप्रभु श्री जगन्नाथ केवल ओडिशार नुहे समग्र विश्वर विश्व देवता। से भक्त बछल भक्तटे जेपरी तार सबकिछि पछरे पकाइ धाई आसे प्रभु को दर्शन करिया पाई, सेही परी एही घोष यात्रा बड़ ठाकुर को श्री जगन्नाथ जाति धर्म वर्ण निर्विशेषरे निजर लक्ष लक्ष भक्त मान को भेटिया पाई निज बड़देउल छाड़ी चली आसती भक्त गहन को। बड़दाण्ड हो जाए धन्य चतुर्दिग घंट घंटी हुला हुली ओ करताली हो जाए पंकवित। कालिया सांत को रथर उपरे देखी भक्तर आखिरु झरी जाए आनंद अश्रु। भक्ति रे से गाई उठे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे। महामहिम जगतनाथ जगन्नाथंक पवित्र रथयात्रा प्रतिवर्ष आषाढ़ मास शुक्लपक्ष द्वितीया तिथि रे पालित हुए। जगन्नाथंक रथयात्रा पृथ्वी प्रसिद्ध। एही यात्रा देखिबाकु सारा पृथ्वीर विभिन्न स्थानरु लोक आसिथांति। एही यात्रा को श्री गुंडीचा ओ घोष यात्रा भी कुहा जाए। श्रोता बंधु, चालंतु जानिबा रथयात्रार उत्पत्ति विषय। पौराणिक मतवाद अनुजाई प्रथमे श्री जगन्नाथ सबर राजा विश्ववासुंक द्वारा नीलगिरि कंदररे रही नीलमाधव नामरे पूजा पाउथिले। राजा इंद्रदुम्न विद्यापतिंक सहायतारे कौशल क्रमे जगन्नाथंकु चोराई आनी पुरीरे श्री मंदिररे स्थापन करिथिले। विश्ववासु तांक आराध्य नीलमाधवक दर्शन बिना जीवन धारण करि पारिबे नाही बोली राजा इंद्रदुम्नक निकटरे गुहारी कले। सबर निम्न जाति संपन्न होइथिबारु श्री मंदिररे तांक दर्शन संभव नुहे बोली राजा इंद्रदुम्न कहिथिले। भक्त विश्ववासुंक हृदयर आवेदन श्री जगन्नाथ ग्रहण करी धर्मप्राणा राणी गुंडीचाकु स्वप्ना देशरे रथयात्रा उत्सव विधान निमन्ते निर्देश देथिले। ता फळरे विश्ववासु सनमत जाति वर्ण निर्विशेषरे समस्त तांकर दर्शन सुविधा लाभ करि आत्मसंतोष लाभ करिवे। मालव राजा इंद्रदुम्नक राणी एही यात्रा प्रचलन करिथिबा हेतु तांक नाम अनुसारे गुंडीचा यात्रा होयछि। प्रतिवर्ष आषाढ़ मास शुक्लपक्ष द्वितीया तिथि रे श्रीक्षेत्र पुरी धाम रे रथयात्रा अनुष्ठित हुए। रथयात्रा रे भगवान निज तांक भक्त मानक भल मंद बुझिबा पई सेमानक मध्य को चली आसंती। जाति धर्म वर्ण निर्विशेष रे भक्त ओ भगवान एकाकार होई सारा पृथ्वी को मानववाद समानता एवं विश्व भातृत्वर संदेश देथांति। घोष यात्रा रे समस्त समान एवं बड़ ठाकुर को दर्शन पूजा उपासना करिवार अधिकार समस्तंकर रहिछि। यहा समग्र पृथ्वी रे एक अनन्य उदाहरण जहाँ सर्व धर्म समन्वयर सूचना देथाय।

इसी के साथ आज का उड़िया कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थीं एस्थर चंपी। दीजिए अनुमति, नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे उड़िया कार्यक्रम। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FN 102.4 MHz पर।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा, बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ, 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
3: हेलो डॉक्टर,
4: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम।
3: हेलो डॉक्टर,
4: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 MHz पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657296044 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657296044 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
3: हेलो डॉक्टर,
5: मन की बात, प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
6: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा, मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
5: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
6: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
0: आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 MHz पर। रात के 10:30 में है, प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के आज के इस कार्यक्रम में श्रोताओं, हम आपको सुनवाएंगे उस्ताद अल्लाह रखा और उस्ताद जाकिर हुसैन का तबला वादन। सुनेंगे तबला लहरा जो कि 3 ताल में निबद्ध है। तो आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम।
7: तीन ताल पेशकार पंजाब में कैसे खुलता है, उस तरीके से शुरुआत करेंगे इसकी।

अब हम तीन ताल में खंड जाति तकसीम करेंगे कि जो हर मात्रा में पांच मात्रा आएगा।

0: traditional compositions that have been handed down from teacher to student and then from his student to his student over the past many hundred years of tabla tradition. And these fixed compositions have special names like Gat, Paran, Toda, Tihai, Chakkardar, Bedam Chakkardar, and there are many types of Gats and Parans that are first recited or sung to give their beauty and then they are played on the tabla.
1: Gat chota palla ka bhi hota hai, jo sam tu sam bhi gat hoti hai, aur tihaiya bhi hota hai sam tu sam, phir chakkardar bhi tihaiya sam tu sam hota hai. अब मैं चौपली आपके सामने पेश करता हूँ. धान कतक दिन तक तक धन दिन तक तक धित धित धित कतक दिगिन धा ता धान कतक दिगिन धात धात धा कतक दिगिन धात धात धा दान कतक धिन तक तक धन ता धिन तक तक धित धित धित कतक दिगिन धात धात धा कतक दिगिन धात धात धा कतक दिगिन धात धात धा दान कतक धिन तक तक धन तन तक धिन तक तक धित धित धित कनक दि धात धात धान कतक दिगिन धात धात धा कतक दिगिन धात धात धा वा दान कतक धिन तक तक धन तक धिन तक धित धित धित धात धात धा कतक धात धात धा कतक

Dagger,

शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में श्रोताओं आज आप सुन रहे थे उस्ताद अल्लाह रखा और उस्ताद जाकिर हुसैन का तबला वादन। आपने सुना तबला लहरा जो कि तीन ताल में निबद्ध था। और अब ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 MHz पर। रात के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी की रात दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया की मंत्री क्लेयर ओनिल ने प्रधानमंत्री की अगवानी की, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मेलबर्न में सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने श्री मोदी का स्वागत किया। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मेलबर्न में आज प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने AR रहमान की प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। वे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय समुदाय से मिलने का भी अवसर मिलेगा, जो भारतीय ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार है। प्रधानमंत्री तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबावो सुबियांतो के साथ योग्यकार्ता में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबानन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति प्राबावो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। भारत और रूस ने आज संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, यूरेशियन समूह और शंघाई सहयोग संगठन सहित बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित हुई। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सभा अल खालिद अल सभा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र के घटनाक्रमों पर अपने विचार साझा किए। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में किसानों के हितों की रक्षा के लिए खोपरा और तोतापुरी आम की खरीद को मंजूरी दे दी है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और उन्हें कम कीमत पर फसल बेचने की मजबूरी से राहत मिलेगी। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 87,000 मीट्रिक टन से अधिक खोपरा खरीदने को मंजूरी दी है। इसके अलावा बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत 96,000 मीट्रिक टन से अधिक तोतापुरी आम की खरीद भी की जाएगी। मंत्रालय के अनुसार इस निर्णय से किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश की कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकती है। उन्होंने कहा कि एआई के उपयोग से प्रत्येक किसान सालाना लगभग 5,000 रूपये की बचत कर सकता है। नई दिल्ली में आज 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए डॉ सिंह ने कहा कि कृषि स्टार्टअप भारत के कृषि क्षेत्र का भविष्य है। उन्होंने सरकार, उद्योग, अनुसंधान संस्थानों और किसानों के बीच बेहतर सहयोग पर बल दिया। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट की महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा और मार्ता कोस्त्युक ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने एलिस मर्टिन्स को और यूक्रेन की मार्ता कोस्त्युक ने जैस्मिन पाउलिनी को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

रात के 11:10 हो रहे हैं। संपन्न होती है अब हमारी आज की ये सभा। एफएम के इसी आवृत्ति पर कल प्रातः 5:55 पर अपनी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।